चिंता सगल बिसारी, कर्मस्तक गुरु पूरे तरेओ, मन जीतो जग सारी, तृप्त अगाए रहे हृदय अंतर, डोलन ते अब चूके, अखुट खजाना सतगुर दिया, तोट नहीं रे मूके, अचरज एक सुनो रे भाई, गुरे ऐसी बूझ बुझाई, लाहे परदा ठाकर जो पेटे हो, तो बिसरी तात पराई, कहो ना जाई एहो अचंभव, सो जाने जिन चाखिया, कहो नानक सच पये बिगासा, गुर निधान हृदय लै राखिया, गौड़ी माला महला पंजवा, उबरत राजा राम की सरनी, सर्ब लोक माया के मंडल, गिर गिर परते तरनी रहाओ, सास्त सिमरत बेद बीचारी, महापुरखन इउं कहिया, बिन हर भजन नाही निस्तारा, सूख ना किन्हू लहिया, तीन पवन की लक्ष्मी जोरी, बूजत नाही लहरे, बिन हर भगत कहां थित पावे, फिर तो पहरे पहरे, अनक बलास करत मन मोहन, पूरन होत ना कामा, जलतो जलतो कबहू ना बूजत, सगल बिरथे बिन नामा, हर का नाम जपो मेरे मीता, एह सार सुख पूरा, साध संगत जन्म मरन निवारे, नानक जन की तूरा, गौड़ी माला महला पंजवा, मोको एह बिद को समझावे, करता हुए जनावे रहाओ, अनजानत किस इन्ह कमानो, जप तप कशु ना साधा, दह दिस लै इहो मन दौरायो, कमन कर्म कर बांदा, मन तन धन भूम का ठाकुर, हौं इसका इहो मेरा, परम मोह कस सूझस नाई, इहे पैखर पए पैरा, तब इहो कहां कमावन परिया, जब इहो कछु ना होता, जब एक निरंजन निरंकार प्रभ, सब किस आपे करता, अपने कर्तव्य आपे जाने, जिन इहो रचन रचाया, कहो नानक करन हार है आपे, सतगुर परम चुकाया, गौड़ी माला महला पंजवा, हर बिन अवर क्रिया बिरथे, जप तप संयम कर्म कमाणी, एहे ओरै मूसे रहाओ, बरत नेम संयम मह रहता, तिनका आड़ ना पाया, आगे चलन और है भाई, ऊहा काम ना आया, तीर्थ नाए अर धरनी भ्रमता, आगे ठहर ना पावे, ऊहा काम ना आवे, एहे बिद, ओह लोगन ही पति आवे, चतर बेद मुख बचनी उचरे, आगे महल ना पाईए, बूझे ना ही एक सुधाखर, ओह सगली चाख चखाईए, नानक कहतो एहो बीचारा, जे कमावे सो पार ग्रामी, गुर सेव हो अर नाम त्याव हो, त्याग हो मन हो गुमानी, गौड़ी माला पंजवा, माधो हर हर हर मुख कहिए, हम ते कशु ना होवे स्वामी, ज्यो राखो हो त्यो रहिए रहाओ, क्या किस करे के करने हारा, क्या इस हाथ बिचारे, जित तुम लाव हो तित ही लागा, पूरन खसम हमारे, करो कृपा सर्ब के दाते, एक रूप लेव लाव हो, नानक की बेनंती हर पह, अपना नाम जपावो।

मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, एहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महला पंजवा।

मारै सुख वसा, सच शब्द निशान रहाव। सबे गल्लां जातियां सुन कै चुप किया, कद ही सुरत ना लदिया माया मोहड़िया। दे बजारत सारता से अखी डिठड़िया, कोई जे मूर्ख लोभिया मूल ना सुनी कहया। इकस दोहों चौहों क्या गणी, सब इकत साध मुठी। एक अध नाए रसियड़ा का विरली जाए बुठी। भगत सच्चे दर सोहंदे आनंद करह दिन रात, रंग रत्ते परमेश्वर है जन नानक तिन बल जात। गौड़ी महला पंजवा मांझ, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। आठ पहर आराधिया पूरन सतगुर ज्ञान रहाव। जित घट वसै पार ब्रह्म सोई सुहावा थाव। जम कंकर ने

नारायण दयो गुर, गुर सच्चा सिरजनहार, गुर तुठे सब किछ पाया, जन नानक सद बलिहार। गौड़ी माज महला पंजवा, हर राम राम राम रामा, जप पूर्ण होए कामा रहा। राम गोबिंद जपेंदिया हुआ मुख पवित्र, हर जस सुनिए जिस ते सोई भाई मित्र। सब पदार्थ सब फला सर्व गुणा जिस माहे, क्यों गोविंद मनो विसारी है जिस सिमरत दुख जाए। जिस लड़ लगे जीवी है भवजल पई है पार, मिल साधु संग उधार होए मुख उजल दरबार। जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रास, नानक उबरे नाम जप दर सच्चे साबास। गौड़ी बाज महला।

और साध सब फिक्किया तन मन फिक्का होय, बिन परमेश्वर जो करे फिट सो जीवन सोय। अंचल गह कह साध का तरना एहो संसार, पार ब्रह्म आरादी है उदरै सब परवार। साजन बंद समित्र सो हर नाम हिरदय दे, औगण सब मटाए कह पर उपकार करे। माल खजाना थे हो कर हर के चरण निदान, नानक जाचक दर तेरे प्रभ तुदनो मंगे दान। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी महला नौवां, साधो मन का मान त्यागो काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अहनस भागो रहाओ सुख दुख दोनों सम कर जान। और मान अपमाना हरख सोग ते रह अतीता, तिन जग तत पछाना। उस्तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाना, जन नानक एहो खेल कथन है तिन्हू गुरमुख जाना। गौड़ी महला नौवां, साधु रचना राम बनाई, एक बिनसै एक अस्थर मान, अचरज लखियो ना जाई रहा। काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूरत बिसराई, झूठा तन साचा करमा न्यू

रहियो राम सरनाई। गौड़ी महल्ला नौवां, प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, अहनस मगन रहे माया में, कहो कैसे गुण गावे रहाओ। पूत मीत माया ममता स्यो, एहे विद आप बंधावे, मृग तृष्णा ज्यो झूठो इहो जग, देख तास उठ धावे। भुगत मुक्त का कारण स्वामी, मूड़ता ही बिसरावे, जन नानक कोटन में को भजन राम को पावे। गौड़ी महला नौवां, साधो इहो मन गहियो ना जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है, जाते थिर न रहाई रहाओ। कठिन क्रोध घट ही के भीतर, जेहे शुद्ध सब बिसराई,

तौ सब बिद बने आई गौड़ी महला नौवा। साधु गोविंद के गुण गावो मानस जन्म अमोलक पायो बिरथा काहे गवावो रहाओ। पतत पनीत दीन बंद हर सरन ताहे तुम आवो गज को त्रास मिट्यो जेह सिमरत तुम काहे बिसरावो। ताज अवमान मोह माया पुन भजन राम चित लावो नानक कहत मुक्त पंत एहो गुरमुख हुए तुम पावो। गौड़ी महला नौवा को माई भूल्यो मन समझावै वेद पुराण साध मग सुन कर निमख ना हर गुण गावै रहाओ। दुर्लभ देह पाए मानस की बिरथा जन्म सरावै माया मोह महा संकट बन तास्यों रुच उपजावै अंतर बाहर सदा संग प्रभ तास्यो नेहो ना लावै। नानक मुक्त ताहे तुम मानो जेहे कट राम समावै। गौड़ी महला नौ साधो राम सरन बिसरामा वेद पुराण पढ़े को एह गुण सिमरे हर को नामा रहाव। लोभ मोह माया ममता फुन औ बिखियन की सेवा हरख सोग परसै जे नाहिन सो मूरत है देवा। सुर्ग नरक अमृत बिख एस

प्राणी गौड़ी महल्ला नौवा मन रे कहां भयो तै बौरा अहनस औद कटै नहीं जाने भयो लोभ संग होरा रहाओ जो तन तै अपनो कर मान्यो हर सुंदर ग्रह नारी इन मैं कछ तेरो रे नाहिन देखो सोच बिचारी रत्न जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी निमख ना लीन भयो चरणन सियो बिरथा औद सरानी कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावै और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावै गौड़ी महला नौवा नर अचेत पाप ते डर रे दीन दयाल सगल भय भंजन सरन ताहे तुम पार रे रहाओ वेद पराण जास गुण गावत तां को नाम ही है मो धर रे पावन नाम जगत मैं हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे मानस देह बहुर नह पावै कछु उपाओ मुक्त का कर रे नानक कहत गाए करना मैं भव सागर कह पार उत्तर रे राग गौड़ी अष्टपदिया महला पहला गौड़ी गुआर री एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद निद सिद्ध निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी विमल मजार गुर की मत जिए आई कार इन बिद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मलाया निर्मल बाणी भरम चुकाया लाल पए सूहा रंग माया नदर पई बिख थाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जागया शब्द रवे मन हर स्यो लागया रस संग्रह बिख पर हर त्यागया पाए बसे जम का पौ भागया साध रहे बादम अहंकारा चित हर सिहोरा ता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोई न देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी राचो हर नाए सिखिया दीखिया भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज घर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति माहे सुमाना लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना नह पंडित नह चतुर सियाना।

बरी गुरबूझ बुझाई मन दे लिया रहस गुण गाई जैसा घर बाहर सो तैसा बैस गुफा मैं आखों कैसा सागर डूंघर निरपो ऐसा मुए को कहो मारे कौन न डरे को कैसा डर कवन शब्द पछाने तीने पौन जिन कहया तिन कहन बखानिया जिन बूझया तिन सहज पछानिया देख बीचार मेरा मन मानिया कीरत सूरत मुक्त एक नाई तही निरंजन रहे समाई निज कर व्याप रहे निज ठाई पुस्तत करह केते मुन प्रीत तन मन सूचै साच सोचीत नानक हर पज नीता नीत गौड़ी गुआरी महला पहला ना मन मरे न कार्य होय मन वस दूता दुरमत दोय मन माने गुरते एक होय निर्गुण राम गुण वस होय आप निवार बिचारे सोए रहाव मन भूलो बहु चितै विकार मन भूलो सिर आवै भार मन माने हर एक अंकार मन भूलो माया घर जाए काम गुरु दूर है ना ठाए हर भज प्राणी रसन रसाए गैवर हैवर कंचन।

मेल मलाई गुण संग्रह औगण शब्द जलाई गुरमुख नाम पदार्थ पाए बिन नावे सब दुख निवास मनमुख मूड माया चेतवास गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखे आस मन चंचल धावत फुन धावे साचे सूचे मैल ना भावे नानक गुरमुख हर गुण गावे गौड़ी ग्वार री महला पहला हौ मैं करत्या नह सुख होए मन मत झूठी सच्चा सोए सगल बगूते भावे दोए सो कमावे तुर लिखिया होए ऐसा जग देखिया जुआरी सब सुख मांगे नाम बिसारी रहाओ अदिष्ट दिसै ता कहया जाए बिन देखे कहना बिथा जाए गुरमुख दिसै सहज सुभाए सेवा सुरत एक लिवलाए सुख मांगत दुख आगल होए सगल वकारी हार परोए एक बिना झूठ।

सहज सुभाय गुरमति नाम हृदय वसाय साची बाणी हर गुण गाय तन मह साचो गुरमुख भाव नाम बिना नाही निज ठाव प्रेम परायण प्रीतम राव नदर करे ता बूझै नाव माया मोह सर्ब जंजाला मनमुख को चील कुशत बिकराला सतगुर सेवे चूकै जंजाला अमृत नाम सदा सुख नाला गुरमुख बूझै एक लिवलाए निज करवासै साच समाए जम्मण मरना ठाक रहाए पूरे गुरते एह मत पाए कथनी कथों ना आवै ओर गुर पुछ देखिया नाही दर होर दुख सुख भाणे तिसै रजाए नानक नीच कह लिवलाए गौड़ी महला पहला दूजी माया जगत चित वास काम क्रोध अहंकार बनास दूजा

होए। तरन गगन नह देखो दोए, नारी पुरख सबाई लोए। रव सस देखो दीपक उजियाला, सर्व निरंतर प्रीतम बाला। कर कृपा मेरा चित लाया, सतगुर मोह को एक बुझाया। एक निरंजन गुरमुख जाता, दूजा मार शब्द पछाता। एको हुक्म वरतै सब लोई, एक सते सब ओपत होई। राह धोवै खसम एको जान, गुर कै शब्द हुक्म पछान। सगल रूप वर्ण मन माही, कहो नानक एको सलाही। गौड़ी महला पहला, अध्यात्म कर्म करे तां साचा। मुक्त भेद क्या जाने काचा, ऐसा जोगी जुगत बीचारे। पंच मार साच उर धारे रहाओ, जिसकै अंतर साच वसावे। जोग जुगत की कीमत पावे, रव सस एको ग्रह उद्याने। करनी कीर्त कर्म समाने, एक शब्द एक भिख्या मांगे। ज्ञान ध्यान जुगत सच जागे, तै रच रह ना बाहर जाए। कीमत कौन रह लिव लाए, आपे मेले परम चुकाए। गुर प्रसाद परम पद पाए, गुर की सेवा शब्द विचार। हों मैं मारे करनी सार, जप तप संयम पाठ पुराण। कहो नानक अपरम परमान, गौड़ी महला पहला। खिमा गही व्रत सील संतोखं, रोग ना व्यापै ना जम दुखं।

0: निरपव जोगी निरंजन त्यावे अनदिन जागे सच लिवलावे सो जोगी मेरे मन पावे काल जाल ब्रह्म अग्नि जारी जरा मरण गत गर्भ निवारी आप करै पितरी निस्तारी सतगुर सेवे सो जोगी होए पैर अच रह सो निरपो होए जैसा सेवै तैसो होए नर निह केवल निरपो नाओ अनाथा नाथ करे बल जाओ पुनरप जन्म नाही गुण गाओ अंतर बाहर एको जाने गुर कै शब्दे आप छाने
1: साचै शब्द दर निसाने
0: शब्द मरै तिस निज कर वासा आवै न जावै चूकै आसा गुर कै शब्द कमल परगासा जो दीसै सो आसन रासा काम क्रोध बिख भूख प्यासा नानक बिरले मिलै उदासा गौड़ी महला पहला ऐसो दास मिलै सुख होई दुख विसरै पावै सच सोई दर्शन देख पई मत पूरी अठसठ मज्जन चरना धूरी रहाव नेत्र संतोखे एक लिवतारा जेवा सूची हर रस सारा सच करनी अब अंतर सेवा मन तृप्ता सिया अलख अपेवा जह जह देखो तह तह साचा बिन बूझे झगरत जग काचा गुर समझावै सोजी होई गुरमुख विरला बूझै कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बूझे पशु भये बेताले गुर कहया अवर नहीं दूजा किस कहो देख करो अन पूजा संत हेत प्रभ त्रि भवन धारे
1: आत्म चीना सो तत बिचारी
0: साच हृदय सच प्रेम निवास प्रणवत नानक हम ता के दास गौड़ी महला पहला ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया वेद की विपत पड़ी पछतानिया जह प्रभ सिमरे तही मन मानिया ऐसा गर्भ बुरा संसार है जिस गुर मिले तिस गर्भ निवारे रहाओ बाल राजा माया अहंकारी जगन करे बहु पार अफारी बिन गुर पूछे जाए प्यारी हरी चंद दान करे जस लेवै बिन गुर अंत ना पाए अपेवै आप भलाए आपे मत देवै दुर्मत हरनाक्ष दुराचारी प्रव नारायण गर्भ प्रहारी प्रहलाद पुदारी कृपा धारी भूलो रावण मुग्ध अचेत लूटी लंका शीस समेत गर्भ गया बिन सतगुर हेत सहस बाहु मद कीट महखासा हर नाक्ष ले नखो बिदासा दैत संघारे बिन भगत अभ्यासा जरा संद काल जमन संघारी रक्त बीज काल नेम बिदारी दैत संघार संत निस्तारी आपे सतगुर शब्द बिचारी दूजे पाए दैत संघारे गुरमुख साच भगत निस्तारे बूढ़ा दुर्योधन पत खोई राम ना जानिया करता सोई जन को दुख पचै दुख होई जन्मे जय गुर शब्द ना जानिया क्यों सुख पावै परम पलानिया एक तिल भूले बहोर पछतानिया कंस केस चंडूर ना कोई राम ना चीनिया अपनी पत खोई बिन जगदीश ना राखै कोई बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए गुरमत धर्म तीर जहर नाए नानक नाम मिलै गुण गाए गौड़ी महला पहला चोआ चंदन अंक चढ़ावो पाठ पटंबर पहर हंडावो बिन हर नाम कहां सुख पावो क्या पहरो क्या ओढ़ दिखावो बिन जगदीश कहां सुख पावो रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला लाल निहाली फूल गुलाला बिन जगदीश कहां सुख पाला नैन सलोनी सुंदर नारी
1: खोड़ शिंगार करे अत प्यारी
0: बिन जगदीश भजे नित खुआरी दर कर महला सेज सुखाली अहनस फूल बिछावे माली बिन हर नाम सो देहे दुखाली हैवर गैवर नेजे वाजे लश्कर ने बखवासी पाजे बिन जगदीश झूठे देवाजे सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बलाम ताज कुल है सिर शत्र बनाव बिन जगदीश कहा सच पाव खान मलूक कहावो राजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द ना सवरस काजा हौमै ममता गुर शब्द वसारी गुरमत जानिया हृदय मरारी प्रणवत नानक सरन तुमारी गौड़ी महला पहला सेवा एक न जान से अवरे परपंच ब्याद त्यागे कवरे भाई मिले सच साचे साचरे ऐसा राम भगत जन होई हर गुण गाए मिले मन धोई राव ऊंदो कवल सगल संसार है दुर्मत अगल जगत पर जार है सो उबरै गुर शब्द बीचार।

ब्राह्मण हितकारी, क्रोध बनासै सगल विकारी, पत मत खोवै नाम वसारी, पर कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदै लपटाए, गुरमुख छूट सहर गुण गाए, ज्यों तन विधवा पर को देई, काम दाम चित पर वस सेई, बिन पेर त्रिपत ना कबहू होई, पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा, वेद प्राण पढ़ै सुन खाटा, बिन रस राते मन बहु नाटा, ज्यों चातरक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस पी त्रिपतासा, गौड़ी महला पहला, हठ कर मरै न लेखै पावै, वेस करै बहु भस्म लगावै, नाम विसार बहुर पछतावै, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम बसार सह जम दुख रहाओ, चोआ चंदन अगर कपूर, माया मगन परम पद दूर, नाम बसारे है सब कूड़ो कूर, नेजे बाजे तखत सलाम, अदकी कृष्णा व्यापै काम, बिन हर जाचे भगत ना नाम, वाद अहंकार नाही प्रभ मेला, मन दे पावह नाम सुहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला, बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोहित सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट, किसको वाह वाह जे वाट दिखावे, किसको वाह वाह जे शब्द सुनावे, किसको वाह वाह जे मेल मलावे, वाह वाह तिसको जिसका एहो जियो, गुर शब्दी मत अमृत पियो, नाम वडाई तुद पाणे दियो, नाम बिना क्यों जीवा माए, अन दिन जपत रहो तेरी सरनाए, नानक नाम रत्ते पत पाए, गौड़ी महला पहला, हौ मैं करत भेखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत विरले मन मानिया, हौ हौ करत नहीं सच पाईए, हौ मैं जाए परम पद पाईए रहाओ, हौ मैं कर राजे बहुतावह, हौ मैं खपह जन्म मर आवह, हौ मैं निवरै गुर शब्द विचारै, चंचल मत त्यागै पंच संघारै, अंतर साच सहज घर आवह, राजन जान परम गत पावह, सच करनी गुर परम चकावै, निरपो कै घर ताड़ी लावै, हौ हौ कर मरना क्या पावै, पूरा गुर भेटे सो झगड़ चकावै, जेती है तेती केहो नाही, गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही, हौ मैं बंधन बंद पवावै, नानक राम भगत सुख पावै, गौड़ी महला पहला, प्रथमे ब्रह्मा काले घर आया, ब्रह्म कमल पयाल ना पाया, आज्ञा नहीं लीनी भरम भलाया, जो उपजै सो का

वरी आकाश पताला गुरमत नाम ना विसरै सहजे पत पाईए अंतर शब्द निदान है मिल आप गवाईए नदर करे प्रभ अपनी गुण अंक समावै नानक मेल ना चूकई लाहा सच पावे गौड़ी महला पहला गुर प्रसादी बूझले तो हुए नबेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द ना छूटी है देखो विचारा जे लख कर्म कमावे बिन गुर अंधियारा रहाओ अंधे अकली बाहरी क्या तिन स्यो कही है बिन गुर पंथ ना सूझई कित बिद निर्बही है।

अपनो नहीं पाया। मीठे को कौड़ा कह, कड़ुए को मीठा, राते की निंदा करह, ऐसा कल मैं दीता। चेरी की सेवा करह, ठाकुर नहीं दिस, पोखर नीर वरोली है, माखन नहीं रिस। इस पद जो अर्थ आए ले, सो गुरु हमारा, नानक चीन आप को सो अपर अपारा। सब आपे आप वर्तदा, आपे परमाया, गुर किरपा ते बूझी है, सब ब्रह्म समाया। राग गौड़ी ग्वारी महला तीजा, अष्टपदिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पाओ, परमे भूले आवो जाओ। मनमुख सूतक कबह न जाए, जिचर शब्द न पीजे हर कह नाए रहाओ। सबो सूतक जेता मोह आकार, मरमर जम्मे वारो वार। सूतक अगन पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खाए। सूतक कर्म ना पूजा होए, नाम रत्ते मन निर्मल होए। सतगुर सेवै सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न खाए। सास्त सिमरत सोध देखो कोय, विण नामे को मुक्त न होए। जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल मह गुरमुख उतरस पार। साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रहै समाय। गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा। हर जियो राखो हिरदय उर तारा, गुरमुख सोभा साच द्वारा। पंडित हर पढ़ तजोह विकारा, गुरमुख भोजन उतरोह पारा। रहाओ गुरमुख विचो हौमै जाए, गुरमुख मैल ना लागे आए। गुरमुख नाम वसै मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच होई। गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रत्ते सुख होई। अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो हो सुने ना कोई। गुरमुख समझो हो सदा सुख होई, मनमुख डंप बहुत चतराई। जो किछ कमावे सो थाए ना पाई, आवे जावे तौर ना काई। मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बागजियो लाए बह नित ध्याना। जम पकड़िया तब ही पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई। गुर प्रसादी मिले हर सोई।

एहु संसारा नित तीर्थ नावे न जाए अहंकारा बिन गुर भेटे जम करे खुआरा सो जन साचा जे हूं मैं मारे गुर कै शब्द पंच संघारे आप तरह सगले कुल तारे माया मोहे नटबाजी पाई मन मुख अंध रहे लपटाई।

फिर अहंकारी आप ना चीन बाजी हारी कापड़ पहर करे चतुराई माया मोहे अत परम पलाई बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई नाम रत्ते सदा बैरागी गिरही अंतर साच लिवलागी नानक सतगुर सेवह सेवड भागी गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा तिस ते उपजे देव मोह पयासा त्रै गुण परमे नाही निज करवासा हम हर राखे सतगुरु मलाया अन दिन भगत हर नाम दिरड़ाया रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला पड़वाद बखाण है सिर मारे जमकाला तापना चीन है बन्न है पांड पराला मनमुख अज्ञान कुमारग पाए हर नाम बसारिया बहु कर्म दिरड़ाए पवजल डूबे दूजे पाए माया का मोहताज पंडित कहावे बिख्या राता बहुत दुख पावे जम का गल जेवड़ा नित काल संतावे गुरमुख जम काल नेड़ ना आवे हौ मैं दूजा शब्द जलावे ना मेरा ते हर गुण गावे माया दासी भगतां की कार कमावे चरनी लागे ता महल पावे सद ही निर्मल सहज समावे हर कथा सुनह से तनवंत दिसह जुग माही तिनको सब निवह अन दिन पूज कराही सहजे गुण रवह साचे मन माही पूरे सतगुर शब्द सुनाया त्रै गुण मेटे चौथे चित लाया नानक हौ मैं मार ब्रह्म मलाया गौड़ी महला तीजा।

ताए साच ना छपै जे को रखै छुपाए ज्ञानी बूझ सहज सुपाए गुरमुख साच रहिया लिभ लाए हमें माया शब्द जलाए मेरा प्रभ साचा मेल मलाए सतगुरु दाता शब्द सुनाए धावत राखै ठाक रहाए पूरे गुर ते सोजी पाए आपे करता सृष्ट सिरज जिन गोई तिस बिन दूजा अवर ना कोई नानक गुरमुख बूझै कोई गौड़ी महला तीजा नाम अमोलक गुरमुख पावे नामो सेवे नाम सहज समावे अमृत नाम रसना नित गावे जिसनु कृपा करे सो हर रस पावे अनगिन हिरदय जपो जगदीसा गुरमुख पावो परम पद सूखा रहाओ हिरदय सूख पया परगास गुरमुख गावे है सच गुण तास दासन दास नित होवे दास ग्रह कटंब मह सदा उदास जीवन मुक्त गुरमुख को होई परम पदार्थ पावे सोई त्रै गुण मेटे निर्मल होई सहजे साच मिले प्रभ सोई मोह कटंब स्यों प्रीत ना होई जां हिरदय वसिया सच सोई गुरमुख मन भेदिया अस्थिर होई।

सब जग महलोए गुरमुख बाणी मीठी लागी अंतर बिगसे अन दिन लिव लागी सहजे सच मिलिया प्रसादी सतगुर पाया पूरे वड भागी हौ मैं ममता दुर्मत दुख नास जब हृदय राम नाम गुणतास गुरमुख बुद्ध प्रगटी प्रभ जास जब हृदय रविया चरण निवास जिस नाम दे सोई जन पाए गुरमुख मेले आप गवाए हृदय साचा नाम वसाए नानक सहजे साच समाए गौड़ी मोहल्ला तीजा मन ही मन सवारिया पै सहज सुपाए शब्द मन रंगिया लिवलाए निज कर वस्या प्रभ की रजाए सतगुर सेवया जाए अभमान गोविंद पाई है गुणी निदान रहाओ मन बैरागी जा शब्द पौ खाए मेरा प्रभ निर्मला सब तै रहया समाए गुर कृपा ते मिले मलाए हर दासन को दास सुख पाए मेरा हर प्रभ इन बिद पाया जाए हर कृपा ते राम गुण गाए त्रिग बहु जीवन जित हर नाम ना लगे प्यार त्रिग सेज सुखाली कामन मोह गुबार तिन सफल जन्म जिन नाम आधार त्रिग त्रिग ग्रह कटंब जित हर प्रीत ना होए सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए हर नाम बिना मैं अवर ना कोए सतगुर ते हम गत पत पाई हर नाम ते आया दुख सगल मटाई सदा आनंद हर नाम लिव लाई गुर मिले हमको शरीर सुध पई हम मैं तृष्णा सब अग्न बुझई बिनसे क्रोध खिमा गह लई हर आपे कृपा करे नाम देवे गुरमुख रतन को बिरला लेवे नानक गुण गावे हर अलख अपीवे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी बैरागुण महला तीजा सतगुर तेजो मोह फेरे तेवे मुख बुरे दिसन अन दिन बदे मारियन फिर वेला ना लहन हर हर राखो कृपा तार सत संगत मिलाए प्रभ हर हृदय हर गुणसार रहाओ से भगत हर भाम दे जो गुरमुख पाए चलन आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन जिसदा पिंड प्राण है तिसकी सिरकार ओहो क्यों मनो विसारी है हर रखिए हृदय धार नाम मिले है पत पाई है नाम मन्ने है सुख होए सतगुर ते नाम पाई है कर्म मिले प्रभ सोए सतगुर ते जो मोह फेरे ओए भ्रम दे ना टकन तरत असमान ना चलई विच विस्ता पए पचन एहो जग परम पलाया मोह ठगौली पाए जिन्ना सतगुर भेटिया तिन नेड़ ना पिटै माए सतगुर सेवन सो सोहणे हौ मैं मैल गवाए शब्द रत्ते से निर्मले चलहे सतगुर पाए हर प्रभ दाता एक तू तू आपे बख्श मलाए जन नानक शरणागति ज्यों भावे तिवें छडाए राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा करहले एक ओंकार सतगुर प्रसाद करहले मन परदेसिया क्यों मिलिया हर माए गुर भाग पूरे पाया गल मिलिया प्यार आए मन करहला सतगुर पुर

मन करहला अत निर्मला मल लागी हूं मैं आई परतख पीर घर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाए मन करहला मेरे प्रीतमा हर हृदय पाल पलाए उपाय किते ना लभई गुर हृदय हर देखाए मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रहन हर लिव लाए कर जाए पावह रंग महली गुर मेले हर मिलाए मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभ तजाए पाखंड लोभी मारी है जम डंड दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगती मल लह जाए मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन करहला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगाह पहनाया हर आप लया गल लाए मन करहला गुर मन्या गुरमुख कार कमाए गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए गौड़ी महला चौथा मन करहला विचारिया विचार देख संभाल बन फिर थके बनवासिया फिर गुरमत हृदय निहाल मन करहला गुर गोविंद संभाल रहाओ मन करहला विचारिया मनमुख फाथिया महा जाल गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम संभाल मन करहला मेरे प्यारिया सत संगत सत गुर भाल सत संगत लग हर त्याई है हर हर चले तेरे नाल मन करहला वडभागिया हर एक नदर निहाल आप छड़ा

काल अंतर निदान मन करहले भ्रम पवह बाहर पाल गुरपुरख पूरा पेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल रंग रतड़ी मन करहले हर रंग सदा समाल हर रंग कदे ना उतरे गुर सेवा शब्द समाल हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल वडभागी गुरमुख पाया जन नानक नाम समाल राग गौड़ी गवारी महला पंजवां अष्टपदियां एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद जब इहु मन मह करत गुमाना तब इहु बावर फिरत बेगाना जब इहु हुआ सगल कीरीना तातेर मैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मशकीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको इहु जान समंदा तब सगले इस मेलह फंदा मेर तेर जब इन्ह चुकाई ताते इस संग नहीं बैराई जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल भारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किस कर माने पेदा तब ते दुख दंड अर खेदा जब इन एको एकी बूझिया तब ते इसनो सब किस सूझिया जब इह तावे माया अर्थी नह त्रिपतावे नह ते सलाथी जब इसते इह होयो जौला पीछे लाग चली उठ कौला कर किरपा जो सतगुर मिलियो मन मंदर मह दीपक जलियो जीत हार की सोजी करी तो इस कर की कीमत परी करन करामन सब किश एक है आपे बुद्ध विचार विवेक है दूर ना नेरे सब कै संगा सच सलाहन नानक हर रंगा गौड़ी महला पंजवा गुर सेवा ते नामे लागा तिसको मिलिया जिस मस्तक भागा तिसकै हिरदै रविया सोए मन पन सीतल निश्चल होए ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहां उहां जो काम तेरे रहाओ जास जपत पौ अपदा जाए धावत मनुआ आवे ठाए जास जपत फिर दुख ना लागे जास जपत एह हों मैं भागे जास जपत बस आवह पंचा जास जपत हृदय अमृत संचा जास जपत एह तृष्णा बुझे जास जपत हर दरगाह सिजे जास जपत कोट मिटह अपराध जास जपत हर होवह साद जास जपत मन शीतल होवे जास जपत मल सगली खोवे जास जपत रतन हर मिले बहुर न छोड़े हर संग हिले जास जपत कई बैकुंठ वास जास जपत सुख सहज निवास जास जपत एह अग्न ना पोहत जास जपत एहो काल ना जोहत जास जपत तेरा निर्मल माथा जास जपत सगला दुख लाथा जास जपत मुश्किल कशु ना बने जास जपत सुन अनहत तुने जास जपत एह निर्मल सोए जास जपत कमल सीधा होए गुर सुभ दृष्ट सब ऊपर करी जिसका हृदय मंत्र दे हरी अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा कहो नानक जिस सतगुर पूरा गौड़ी महला पंजवां गुर का शब्द हृदय अंतर तारे पंच जना स्यों संग निवारे दस इंद्री कर राखे वास ताके आत्मै होए परगास ऐसी दृढ़ता ताके होए जाको दया मया।

जपना। सहजे भोजन सहजे भाव, सहजे मिट्यो सगल दुराव। सहजे हुआ साधु संग, सहज मिलियो पार ब्रह्मन संग। सहजे ग्रह में सहज उदासी, सहजे दुबदा तन की नासी। जाके सहज

सहज कथा मह आत्म रसिया तां कै संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे ऋण चुनकार सुहाया तां कै कार पार ब्रह्म समाया सहजे जाको परयो कर्मा सहजे गुर भेट्यो सच धर्मा जां कै सहज भया सो जाने नानक दास तां कै कुर्बान गौड़ी महला पंजवां प्रथमे गर्भ वास्ते तरिया पुत्र कलत्र कटंब संग जुरिया भोजन अनक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करहंगे बपरे तमन अस्थान जो कबह ना तरे तमन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ इंद्रपुरी मैं सर पर मरना ब्रह्मपुरी निह चल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रैगुण माया बिनस बिताला गिर तर धरन गगन अर तारी राव सस पवन पावक नीरारी दिन सरैन बरत अर पेदा सासत सिमरत बिन सिंगे बेदा तीरथ देव देहुरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती धोती डंडौत प्रसादन भोगा गमन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुर्क अर हिंदू पस पंखी अनक जोन जिंदू सगल पासार दिसै पासारा बिन सजाए गो सगल अकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निहचल सच थाना तहा संगत साध गुण रसै अनपो नगर तहा सदवसै तह पौ परमा सोग न चिंता आवन जामन मृत ना होता तह सदा आनंद अनहत आखारी भगत वसह कीर्तन आधारी पार ब्रह्म का अंत न पार कौन करे ता का विचार कहो नानक जिस कृपा करे निश्चल थान साध संग तरे गौड़ी महला पंजवां जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसह वडियाई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोई जे दुबदा मार गवावे इसह मार राज जोग कमावे रहाव जो इस मारे तिसको पहो नाही जो इस मारे सो नाम समाहे जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझै जो इस मारे सो दरगाह सिजै जो इस मारे सो तनवंता जो इस मारे सो पतवंता जो इस मारे सोई जति जो इस मारे तिस होवै गति जो इस मारे तिसका आया गनी जो इस मारे सो निश्चल धनी जो इस मारे सो वड भागा जो इस मारे सो अन दिन जागा जो इस मारे सो जीवन मुक्ता जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता जो इस मारे सोई सो ज्ञानी जो इस मारे सो सहज त्यानी इस मारी बिन थाए ना परे कोट कर्म जाप तप करे इस मारी बिन जन्म ना मिटे इस मारी बिन जमते नहीं छुटे इस मारी बिन ज्ञान ना होई इस मारी बिन झूठ ना धोई इस मारी बिन सब किछ मैला इस मारी बिन सब किछ जौला जाको भये कृपाल कृपा निद तिस भई खलासी होई सगल सिद्ध गुर दुबदा जाकी है मारी कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी गौड़ी महला पंजवा हर स्यो जुरे ता सबको मीत हर स्यो जुरे ता निश्चल चीत हर स्यो जुरे ना व्यापै काड़ा हर स्यो जुरे ता हुए निस्तारा।

आस नीच कुल सुने है, तिसकै संग खिन मह उदर है। कोट मज्जन जाकै सुन नाम, कोट पूजा जाकै है ध्यान। कोट पुन सुन हर की वाणी, कोट फला गुरते बिद जानी। माने अपने मह फिर चेत, बिनस जाहे माया के हेत। हर अबना

जाकै काम ना जो है दूत, जाकै काम तेरा वड गमर, जाकै काम होवै तू अमर, जाके चाकर को नहीं दान, जाके चाकर को नहीं बान, जा

भांत, जांकी दृष्ट हुए सदा निहाल, मन मेरे करता की काल, ना को चतर ना ही को मूड़ा, ना को हीन ना ही को सूरा, जित को लाया तित ही लागा, सो सेवक नानक जिस भागा, गौड़ी महला पंजवा, बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी, त्यों जीव है साकत नाम बिसारी, एक निमख जो सिमरन मह जिया, कोट दिन सलाख सदा थिर थिया रहाव, बिन सिमरन त्रिग कर्म करास, काग बतन बिस्टा महवास, बिन सिमरन पय कुकर काम, साकत बेसुआ पूत नाम, बिन सिमरन जैसे सींग सतारा, बोलह कूर साकत मुख कारा, बिन सिमरन घर दब की न्याई, साकत थान पृष्ठ फराई, बिन सिमरन कुकर हर काया, साकत लोभी बंद ना पाया, बिन सिमरन है आत्म काती, साकत नीच तिस कुल नहीं जाती, जिस भया कृपाल तिस सतसंग मलाया, कहो नानक गुर जगत तराया, गौड़ी महला पंजवा, गुर कै बचन मोहे परम गत पाई, गुर पूरै मेरी पैज रखाई, गुर कै बचन त्यायो मोहे नाव, गुर प्रसाद मोहे मिलिया थाव रहाव, गुर कै बचन सुन रसन वखाणी, गुर किरपा ते अमृत मेरी बाणी, गुर कै बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप, गुर कै बचन मिटिया मेरा परम, गुर कै बचन पेख्यो सब ब्रह्म, गुर कै बचन कीनो राज जोग, गुर कै संग तरिया सब लोग, गुर कै बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर कै बचन पाया नाउ निद, जिन जिन कीनी मेरे गुर की आसा, तिसकी कटिया जम की पासा, गुर कै बचन जागिया मेरा कर्म, नानक गुर भेटिया पार ब्रह्म, गौड़ी महला पंजवा।

गुर की रेण नित मज्जन करूं, जन्म जन्म की हम मैं मल हरूं, किस गुर को चलावूं पाखा, महा अग्न ते हाथ दे राखा, किस गुर कै ग्रह ढोवूं पानी, जिस गुर ते अकल गत जानी, किस गुर कै ग्रह पीसो नीत, जिस प्रसाद वैरी सब मीत, जिन

था। गौड़ी महल्ला पंजवां, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देव, नाम बिना त्रिग त्रिग असने।

हरी रस भोग सुख सुपने नहीं तन मह रोग नाम त्याग करे अनुकाज बिनस जाए झूठे सब पाज नाम संग मन प्रीत ना लावे कोट कर्म करतो नरक जावे हर का नाम जिन मन ना अरादा चोर की न्याई जम पुर बादा लाख अडंबर बहुत बिसथारा नाम बिना झूठे पासारा हर का नाम सोई जान ले कर कृपा नानक जिस दे गौड़ी महला पंजवा आद मद जो अंत न बाहै सो साजन मेरा मन चाहे हर की प्रीत सदा संग चाले दयाल पुरख पूर

सुन सुन पंत डराओ बहुत पैहारिया, मैं तकी ओट संता लेहो उभारिया, मोहन लाल अनूप सर्ब साधारिया, गुर निव निव लागो पाए देहो दिखारिया, मैं किए मित्र अनेक इकस बलिहारिया, सब गुण किस ही नाही हर पूर भंडारिया, चहो दिस जपिए नाओ सूख सवारिया, मैं आही ओड़ त्योहार नानक बलिहारिया, गुर काढ़ियो कुजा पसार मोह कुपारिया, मैं जीतियो जन्म अपार बहुर ना हारिया, मैं पायो सर्ब निदान अकथ कथारिया, हर दरगाह शोभावंत बहां लुडारिया, जन नानक लद्दा रतन अमोल अपारिया, गुर सेवा भौजल करिए कहो पुकारिया, गौड़ी महला पंजवा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, नारायण हर रंग रंगो जप जेवा हर एक मंगो रहाओ, ताज हों मैं गुर ज्ञान भजो मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसै सो संग ना गयो साकत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहियो कोट मदे किने गुरमुख लहियो, हर संतन कर नमो नमो नौ निद पाव है अतुल सुखो, नैन अलोवो साध जनो हृदय गावो नाम निधो, काम क्रोध लोभ मोह तजो जन्म मरण दोहों ते रहियो, दुख अंधेरा करते मिटियो गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो, जिन सेव्या सो पार परियो जन नानक गुरमुख जगत तरियो, महला पंजवा गौड़ी हर हर गुर गुर करत भरम गए, मेरे मन सब सुख पायो रहाओ, बल तो जल तो तौकिया गुर चंदन सीत लायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दी पायो, पावक सागर गहरू चर संतन नाव तरायो, ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पूजा अपायो, पौ खंडन दुख भंजनो भगत वचल हर नायो, अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृथ संत उटायो, निर्गुण यारे की बेनती देहो दर्स हर रायो, नानक सरन तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो, गौड़ी महला पंजवा रंग संग बिखिया के भूगा, इन संग अंध न जानी हौ संचो हौ खातता, सगली अवध बेहानी रहाओ, हौ सूरा प्रधान हौ को नाही मुझे समानी, जो बनवंत अचार कुलीना मन में हुए गुमानी, ज्यों उलझायो बाद बुद्ध का मरत्या नहीं बिसरानी, पाई मीत बंदप सके पाछे तिन्हू कौ संपानी, जित लागो मन बासना अंत साई प्रगटानी, अहम बुद्ध सुच कर्म कर एहे बंधन बंधानी, दयाल पुरख कृपा करो।

हर के गुण सारे हिन पल रह न सकै जियो बिन हर प्यारे बिन हर प्यारे रह न साकै गुर बिन महल न पाईऐ जो गुर कह सोई पर कीजै तिसना अग्न बुझाईऐ हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवै सुख न पाए नानक सा धन मिलै मलाई जिसनो आप मलाए धन रैन सुहेलड़िए जियो हर स्यो चित लाए सतगुर सेवे भाओ करे जियो विचों आप गवाए विचों आप गवाए हर गुण गाए अन दिन लागा भाओ सुन सखी सहेली जी की मेली गुर कै शब्द समाओ हर गुण सारी तां कंत प्यारी नामे तरी प्यारू नानक कामण नाह प्यारी राम नाम गल हारू तन एकलड़ी जियो बिन नाह प्यारे दूजे भाए मुठी जियो बिन गुर शब्द करारे बिन शब्द प्यारे कौन दुत्तर तारे माया मोहे खुआई कूड़ बगुती तां फिर मुक्ती सा तन महल न पाई गुर शब्दे राती सहजे माती अन दिन रह समाए नानक कामण सदा रंग राती हर जियो आप मलाए ता मिलिए हर मेले जियो हर बिन कवण मलाए बिन गुर प्रीतम आपने जियो कौन भरम चुकाए गुर भरम चुकाए इउं मिलिए माए ता सा तन सुख पाए गुर सेवा बिन कोर अंधार बिन गुर मग न पाए कामण रंग राती सहजे माती गुर कै शब्द विचारी नानक कामण हर वर पाया गुर कै भाए प्यारी गौड़ी महला तीजा फिर बिन खरी निमाणी जियो बिन फिर क्यों जीवा मेरी माई फिर बिन नींद ना आवै जियो कापड़ तन ना सुहाई कापर तन सुहावै जां फिर भावै गुरमती चित लाईऐ सदा सुहागण जां सतगुर सेवे गुर कै अंक समाईऐ गुर शब्दै मेला तां फिर रावी लाहा नाम संसारी नानक कामण नाह प्यारी जां हर के गुण सारी सा धन रंग माणे जियो अपने नाल प्यारे एहनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे गुर शब्द विचारे हमें मारे इन बिद मिलो प्यारे सा धन सुहागण सदा रंग राती साचे नाम प्यारे अपने गुर मिल रही है अमृत गही है दुबदा मार निवारे नानक कामण हर वर पाया।

कूड़ मुट्ठी कूड़ियारी, कूड़ निवारी गुरमत सारी, जुए जन्म ना हारी। गुर शब्द सेवे सच समावे, बिचों होमे मारी। हर का नाम हृदय बसाए, ऐसा करे सिंगारू, नानक कामन सहज समाणी, जिस साचा नाम आधारू। मिल मेरे प्रीत मां जियो, तुद बिन खरी निमाणी, मैं नैणी नींद ना आवै जियो, भावै अन्न ना पानी। पानी अन्न ना भावै, मरियै हावै, बिन फिर क्यों सुख पाईऐ। गुर आगै करो बिनंती, जे गुर पावै, ज्यो मिलै तिवें मिलाईऐ। आपे मेल लए सुख दाता, आप मिलिया घर आए, नानक कामन सदा सुहागण, ना फिर मरे ना जाए। गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस बेदी जियो, हर कै सहज सुपाए, मन मोहन मोहे लिया जियो, दुबदा सहज समाए, दुबदा सहज समाए, कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए। एहो शरीर कूड़ कसत भरिया, कल ताई पाप कमाए। गुरमुख भगत जित सहज धुन उपजै, बिन भगती मैल ना जाए। नानक कामन पिरह प्यारी, विचों आप गवाए। कामन पिर पाया जियो, गुर कै पाए प्यारे, रैण सुख सुती जियो, अंतर उर तारे। अंतर उर तारे मिलिया प्यारे, अन दिन दुख निवारे। अंतर महल पिर रावे कामन, गुरमती विचारे। अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे। नानक सच मिली सुहागण, गुर कै हेत अपारे। आव हो दया करे जियो, प्रीतम यत प्यारे। कामन बिनो करे जियो, सच शब्द सिंगारे। सच शब्द सिंगारे हमे मारे, गुरमुख कार्ज सवारे। जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझै गुर बिचारे। मनमुख काम व्यापी, मोहि संतापी, किस आगे जाहि पुकारे। नानक मनमुख थाउ ना पाए, बिन गुर अत प्यारे। मुंद एयाणी भोली निगुणिया जियो, फिर अगम अपारा। आपे मेल मिलिया जियो, आपे बख्शन हारा। अवगुण बख्शन हारा, कामन कंत प्यारा। कट कट रहे आसमाई, प्रेम प्रीत पाए भगती पाईऐ। सतगुर बूझ बुझाई, सदा आनंद रह दिन राती, अन दिन रह लिवलाई। नानक सहजे हर वर पाया, सा तन नौ निद पाई। गौड़ी महला तीजा, माया सार सबल वरतै जियो, क्यों कर दुत्तर तरिया जाए। राम नाम कर बोहे था जियो, शब्द खेवट विच पाए। शब्द खेवट विच पाए, हर आप लंघाए। इन बिद दुत्तर तरियै, गुरमुख भगत प्राप्त होवै। जीवतियां इउं मरियै, जिन मह राम नाम किलविख काटे, पए पवित्र शरीरा। नानक राम नाम निस्तारा, कंचन पए मनूरा। स्त्री पुरख काम व्यापे जियो, राम नाम की बिद नहीं जानी। मात पिता सुत भाई खरे प्यारे जियो, डूब मोए बिन पानी। डूब मोए बिन पानी, गत नहीं जानी। हम मैं तात संसारे, जो आया सो सब को जासी। उभरे गुर विचारे, गुरमुख होवे राम नाम बखाने। आप तरे कुल तारे, नानक नाम बसे घट अंतर, गुरमत मिले प्यारे। राम नाम बिन को थिर नाही जियो, बाजी है संसारा। दृढ़ भगत सच्ची जी।

सेवा सुरत भगत एह साची विचों आप गवाई है। हम मत हीन मूरख मुगद अंधे सतगुर मार्ग पाए नानक गुरमुख शब्द सहावे अन दिन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो जुग जुग भगत प्यारे। जुग जुग भगत प्यारे हरे आप सवारे आपे भगती लाए आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए। आपे गुण दाता अब गुण काटे हिरदय नाम वसाए। नानक सद बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए। गौड़ी महला तीजा।

कर आव हो नाह प्यारी। हों माने अर्पी सब ताने अर्पी, अर्पी सब देसा हों सेरे अर्पी तिसमीत प्यारे। जो प्रभ दे संदेसा अर्पया ता सीस सुथान गुर पह, संग प्रभु दिखाया खिन माहे सगला दुख मिटिया। मनो चिंदिया पाया दिन रहन रलिया करै कामण, मिटे सगल अंदेसा बिनवंत नानक कंत मिलिया। लोड़ ते हम जैसा मेरा मन आनंद भया जियो, बजी वधाई कर लाल आया प्यारा। सब तिखा बुझाई मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर, सखी मंगल गाया सब मीत बंदप हरख उपजिया। दूत थाऊ गवाया अनहत वाजे बजे है कर्म है, फिर संग सेज विछाई बिनवंत नानक सहज रह। हर मिलिया कंत सुखदाई गौड़ी महला।

जह साध संत इकत्तर होवे है तहां तुझे त्यावहि कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा बिनवंत नानक दर्श प्यासी मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली मोहन तू मान है एक जी अवर सबराली मान है ता एक अलेख ठाकुर जिन्ह सब कल धारिया तुद बचन गुर कै वस किया आदि पुरख बनवारिया तू आप चलिया आप रहिया आप सब कल धारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक सरन तुम्हारिया। मोहन तुद सत संगत ध्यावै दर्श ध्याना मोहन जम नेर ना आवै तुद जपहै निधाना जम काल किनको लगै नाही जो एक मन त्यावे मन बचन कर्म जे तुद आराध है से सबे फल पावे मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्श सुगियाना बिनवंत नानक राज निश्चल पूरन पुरख भगवाना। मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे तारिया जहान लहिया अभमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुद नो धन कहया तिन जम नेड़ ना आया बेअंत गुण तेरे कथे ना जाही सतगुर पुरख मरारी बिनवंत नानक टेक राखी जित लग तरिया संसारी। गौड़ी महला पंजवां सलोक पतत असंख पनीत कर पुनः पुनः बलिहार नानक राम नाम जप पाव को तिन किल बिख दाहनहार। संत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधु त्याए मना मरार मुकंदे कटिए काल दुख फादु दुख हरन दीन सरन श्री तहर चरण कमल अराधिय जम पंत बिखड़ा अग्न सागर निमक सिमरत साधिय कल मलै दहता शुद्ध करता जिन सरैन अराधु बिनवंत नानक करहु कृपा गोपाल गोविंद माधु। सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वच्छल बिरदाया भगत वच्छल पुरख पूरन मन है चिंदिया पाईए ताम अंध कूप ते उधार है नाम मन वसाईए। सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अनक भगती गाया बिनवंत नानक करहु कृपा पार ब्रह्म हर राया। चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व कला जिन तारी करुणा में समरथ स्वामी कट कट प्राण आधारी। प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगम अपारू सरन जोग समरथ मोहन सर्व दुख बिदारू। रोग सोग सब दुख बिन सह जपत नाम मरारी बिनवंत नानक करहो कृपा समरथ सब कल तारी। गुण गाओ मना अचुत अबनासी सब ते ऊच दयाला बिसंबर देवन को एक है सर्व करे प्रतपाला प्रतपाल महादयाल दाना दया तारी सब किस है। काल कंटक लोभ मोह नासे जी जा कै प्रभ बसे सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूर्ण काला बिनवंत नानक इच पुन्नी जपत दीन दयाला। गौड़ी महला पंजवा सुन सखिए मिल उदम करेहा मनाए लह हर कंत मान त्याग कर भगत ठगौरी मोह है साधु मंत। सखी वास आया फिर छोड़ ना जाई एह रीत भली भगवंत। नानक जरा मरण पै नरक निवार
पनीत करे तिस जनते। सुन सखिए एह भली बिनंती, एहो मतांत पकाइए, सहज सुपाए अपाद रहत हुए, गीत गोविंद गाइए। कल कलेश मिटे हैं ब्रह्म नास हैं, मन चिंदिया फल पाइए, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, नानक नाम ते आइए। सखी इश करी नित सुख मनाई, प्रभ मेरी आस पुजाए, चरण प्यासी दर्श बैरागण, देखो थान सबाए। खोज लहो हर संत जना संग, समर्थ पुरख मलाए, नानक तिन मिलिया सुर जन सुख दाता, से वड भागी माए। सखी नाल वसा अपने नाह प्यारे, मेरा मन तन हर संग लिया, सुन सखिए मेरी नींद पली, मैं आपनड़ा फिर मिलिया। प्रम खोयो शांत सहज स्वामी, प्रगास भया कौल खिलिया, वर पाया प्रभ अंतर जामी, नानक सुहाग ना टलिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गौड़ी बावन अखरी महला पंजवां सलोक। गुरुदेव माता गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंदप सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेस, गुरुदेव मंत नरोदरा, गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतत पवित करा, गुरुदेव आदि जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूड़ पापी जित लग तरा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा सलोक। आप है किया कराया, आप है करमै जोग, नानक एको रब रहया, दूसर होवा ना होग पौड़ी। ओं साध सतगुर नमस्कारन, आद मद अंत निरंकारन, आपह सुन आपह सुख आसन, आपह सुनत आप ही जासन, आपने आप आपह उपायु, आपह बाप आप ही मायु, आपह सूखम आपह अस्थूला, लखी न जाई नानक लीला, कर कृपा प्रभु।

पावई। ओ अंग गुरमुख कियो अकारा, एक है सूत पुरो मनहारा। पिन पिन त्रै गुण बिस्थार, निर्गुण ते सरगुण दृष्टार। सगल पांत कर करह अपायो, जन्म मरण मन मोह बढ़ायो। दूहू भांत ते आप नरारा, नानक अंत न पारा वारा। सलोक से साहा भगवंत से, सच संपै हर रास। नानक सच सोच पाई है, तेहे संतन कै पास। पवड़ी ससा सत सत सत सो, सत पुरख ते भिन्न ना को। सो सरन परै जिह पायं, सिमर सिमर गुण गाए सुनायं। संसय परम नहीं कछ व्यापत, प्रगट प्रताप ताहू को जापत। सो साधु एह पहुंचन हारा, नानक ता कै सद बलिहारा। सलोक धन तन कहां पकारते, माया मोह सब कूर। नाम बिहूने नानका, होत जात सब तूर। पवड़ी तद्दा तूर पनीत तेरे जनुआ, तन तेऊ जे रुच या मनुआ। तन नहीं बाछ सुरजना आछ, अच प्रिय प्रीत साध रज राच। धंदे कहा व्यापहता हूं, जो एक शाद अन कत ना जाहू। जा कह ही है दियो प्रभ नाम, नानक साध पूर्ण भगवान। सलोक अनक भेख अर ज्ञान ध्यान, मन हठ मिलियो ना कोय। कहो नानक कृपा पई, भगत ज्ञानी सोए पौड़ी। गंगा ज्ञान नहीं मुख बातों, अनक जुगत शास्त्र कर पातों। ज्ञानी सोए जाकै दृढ़ सो, कहत सुनत कस जोग ना हो। ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाकै, उसन सीत समसर सब ताकै। ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी, नानक जाको कृपा तारी। सलोक आमने आए सृष्ट मह, बिन बूझे पस ढोर। नानक गुरमुख सो बुझे, जा कै भाग मथोर। पौड़ी या जुग मह एक को आया, जन्मत मोहयो मोहनी माया। गर्भ कुंट मह उर्द तप करते, सास सास सिमरत प्रभ रहते। उर्ज परे जो छोड़ छडाना, देवनहार मन है बिसराना। तारु कृपा जिसह गुसाई, इत उत नानक तिस बिसरहो नाही। सलोक आवत हुक्म बनास हुक्म, आग्या पिन्ना कोए। आमन जाना ते मिटै, नानक जिहे मन सोए। पौड़ी एऊ जी बहुत गर्भवासे, मोह मगन मीठ जो न फासे। इन माया त्रै गुण बस कीने, आपन मोह कटे कट दीने। ए साजन कछ कहो उपाया, जाते तरो बिखम एह माया। कर कृपा सतसंग मलाए, नानक तां कै निकट ना माए। सलोक किरत तमावन शुभ अशुभ, कीने तिन प्रभ आप। असे आपन हों हों करे, नानक बिन हर कहां कमात। पौड़ी ये कह आप करावन हारा, आपे पाप पुन बिस्थारा। या जुग जित जित आपे लायो, सो सो पायो जो आप दुआयो। वाका अंत ना जाने को, जो जो करे सो फुन हो। ये कहते सगला बिस्थारा, नानक आप सवार नहारा। सलोक राच रहे बनता बनोद, कुसुम रंग बिख शोर। नानक ते सरनी परो, बिन सजाए मैं मोर। पौड़ी रे मान बिन हर जह रचो, तह तह बंधन पाहे। जेह बिद कतु ना छूटी है, साकत तेऊ कमाहे। हौ हौ करते कर्म रत,

मोहे न बुझ सो प्रभ सदहु संग लेखै गणत ना छूटिय काची भीत ना सुध जिसै बुझाए नानका तेह गुरमुख निर्मल बुद्ध सलोक टूटे बंधन जास के होआ साधु संग जो राते रंग एक कह नानक गूढ़ा रंग पौड़ी रारा रंग हो या मन अपना हर हर नाम जप हो जप रसना रे रे दरगाह कह ना को आओ बैठ आदर शुभ देव वाह महली पावह तू बासा जन्म मरन नह हुए बनासा मस्तक कर्म लिखियो तुर जाकै हर संपै नानक करता कै सलोक लालच झूठ विकार मोह व्यापत मूड़े अंध लाग परे दुर्गंध स्यो नानक माया बंद पौड़ी लल्ला लपट बिखै रस राते अहम बुद्ध माया मद माते या माया मैं जन्मै मरना ज्यो ज्यो हुक्म त्यों त्यों करना को ऊन न को पूरा को सुगर न को मूरा जित जित लाभ तित तित लगना नानक ठाकुर सदा अलिपना सलोक लाल गोपाल गुबे

नानकै हाथ समरथ ते कारण करनै जोग नानक ते उस्तत करो याहू कियो संयोग सलोक टूटे बंधन जन्म मरन साध सेव सुख पाए नानक मनो ना बिसरै गुण निध गोबिंद राय पौड़ी टहल करहो तौ एक की जाते बिरथा ना कोय मन तन मुख ही है बस।

रसिया ठाकुरे अपने जो जन पाया नानक उवा का मन सीतलाया। श्लोक दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ पौड़ी। डड्डा डेरा एहो नहीं जह डेरा तह जान वा डेरा का संयम गुर कै शब्द पछान। या डेरा को श्रम कर खाल जाका तसु नहीं संग चाल वा डेरा की सो मित जान जाको दृष्ट पूर्ण भगवान। डेरा निश्चल सच साध संग पाया।

नानक उबरे जप हरी साध संग संबंध पौड़ी टड्डा ढूंढत कह फिरो ढूंढन या मन माहे संग तुहारे प्रभु बसै बन बन कहां फराहे तेरी ताहो साध संग हम बुद्ध बिकराल सुख पावो सहजे बसो दर्शन देख निहाल तेरी जामै जम मरे गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपटत रह हों हों आवे जाए तहत तहत अब टह परे साध जना सरनाए दुख के फाहे काटिया नानक लिए समाए सलोक जह साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत ना हो ना तू नह छुटह निकट ना जाइयो दूत पौड़ी नाना रण ते सीधी है आत्म जीत कोवे हों मैं अनस्यो लर मरे सो सोबा दू होए मणि मटाए जीवत मरे गुर पूरे अपदेश मनुआ जीतै हर मिले तेहे सूर तन वेस ना को जाने अपनो एक है टेक आधार रैन दिनस सिमरत रह सो प्रभ पुरख अपार रेण सगल या मन करे एऊ कर्म कमाए हुक्मै बूझै सदा सुख नानक लिखिया पाए सलोक तन मन तन अर्पो तिसै प्रभु मलावै मोहे नानक भ्रम पहु काटियै चूकै जम की जोह पौड़ी तत्ता तांस्यो प्रीत कर गुण निध गोबिंद राय फल पावह मन बांछते तपत तुहारी जाय त्रास मिटै जम पंथ की जास बसै मन नाव गत पावह मत हुए परगास महली पावह ठाव ताहू संग ना धन चलै ग्रह जोबन नहराज संत संग सिमरत रहो एह तुहारे काज ताता कछु ना हुई है जो ताप नवारे आप प्रतपालै नानक हमह आपह माई बाप सलोक थाके बहु बिद काल ते कृपत न तृष्णा लाख संच संच साकत मुए नानक माया ना साथ पौड़ी थत्था तिर को नहीं काए पसारु पाम अनक बंच बल छल करहु माया एक अपाव थैली संच हो श्रम करहु थाक परहु गवार मन कै कामना आ गई अंते अवसर बार हित पावहु गोबिंद भजहु संत है की सिख ले हो प्रीत करहु सद एक स्यों या साचा असनेह कारण करन कराम नु सब विद एक हाथ जित जित लाभ हो तित तित लग है नानक जंत अनाथ सलोक दासा एक निहारिया सब कछ दे मनहार सास सास सिमरत रह नानक दर्श आधार।

श्रद्धा तावत तौ मिट संत संग होए बास तुरते कृपा करो आप तौ होए मनह परगास तन साचा तेऊ सच साहा हर हर पूंजी नाम बसाहा धीरज जस सोभा ते बनिया हर हर नाम श्रवण जेह सुनिया गुरमुख जेह कट रहे समाई नानक तेह जन मिली वडाई सलोक नानक नाम नाम जप जपिया अंतर बाहर रंग गुरपुरै अपदेसिया नरक नाहे साध संग पौड़ी नन्ना नरक परहै ते नाही जाकै मन तन नाम बसाही नाम निधान गुरमुख जो जपते बिख माया मह ना हुए खपते नन्ना कारना होता ता कहो नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो निद निधान हर अमृत पूरे तह बाजे नानक अनहद तूरे सलोक पात राखी गुर पार ब्रह्म ताज परपंच मोह विकार नानक सो अरादी है अंत न पारा वार पौड़ी पप्पा परमित पार न पाया पतत पावन अगम हर राया होत पनीत कोट अपराधू अमृत नाम जप है मिल साधु परपंच त्रोहो मोह मिटनाई जाको राखो आप गुसाई पात शाह सत्तर सिर सो नानक दूसर अवरना को सलोक फाहे काटे मिटे गवन फतह पही मन जीत नानक गुर ते थित पाई फिर न मिटे नित नीत पौड़ी फफा फिरत फिरत तू आया दुर्लभ देह कल युग मह पाया फिरया अवसर चरै नहाता नाम जप हो तो कटिया है फासा फिर आवन जान ना होई एक जप हो जप सोई

दुख संपै बहु भोग रस नानक साध रुआल पौड़ी बब्बा ब्रह्म जानत ते ब्रह्मा वैष्णो ते गुरमुख सुच धर्मा वीरा आपन बुरा मटावै ताहू बुरा निकट नहीं आवै बांधियो आपन हों हों बंदा दोष देत आगह को अंधा बात कीत सब रही सियानक जिसै जनाब हो सो जानै नानक सलोक पै पंजन अग दूख नास मनह अराध हरे संत संग जिह रिद बसियो नानक ते ना भ्रमे पौड़ी पब्बा परम मटावो अपना या संसार सगल है सुपना परमेश्वर नर देवी देवा परमे सिद्ध साधक ब्रह्मेवा परम परम मानुख डहकाए दुत्तर महा बिखम एह माए गुरमुख भ्रम पै मोह मटाया नानक तेह परम सुख पाया। सलोक माया डोलै बहु विधि

मत पूरी प्रधान ते गुर पूरे मन मंत जिह जान्यो प्रभ अपना नानक ते भगवंत पौड़ी मम्मा जाहू मर्म पछाना भेटत साध संग पतियाना दुख सुख अवाकै समत बिचारा नरक सुरग रहत अवतारा ताहू संग ताहू निरलेपा पूर्ण घट घट पुरख बसेखा वा रस मैं वाहू सुख पाया नानक लिप्त नहीं तेह माया। सलोक यार मीत सुन साजन हो बिन हर शूतन नाहे नानक तेह बंधन कटे गुर की चरणी पाहे। पवड़ी जैया यतन करत बहु विदिया एक नाम बिन कह लो सिदिया याहू जतन कर होत छटारा वाहू जतन साध संगारा या उबरण धारै सब को वाहे जपे बिन उबर ना हो याहू तरन तारन समराता राख लेहो निर्गुण नरनाथा मन बच क्रम जेह आप जनाई नानक तेह मत प्रगति आई। सलोक रोस न काहू संग करहो अपने आप विचार होए निमाना जग रहो नानक नदरी पार पौड़ी रारा रेन होत सब जाकी ताज अवमान छुट्टै तेरी बाकी रण दर्ग है तो सीजै भाई जो गुरमुख राम नाम लिवलाई रहत रहत रह जाहे बेकारा गुर पूरे कै शब्द अपारा राते रंग नाम रस माते नानक हर गुर की नींदाते। सलोक लालच झूठ बिखै ब्याद या देही महबास हर हर अमृत गुरमुख पिया नानक सूख निवास पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहु दुख दर्द ते मिटै खनाहु नाम औखद जे हृदय हतावै ताहे रोग सुपने नहीं आवै हर औखद सब घट है भाई।

वासुदेव सर्वतर में ऊन न कतहू ठाए, अंतर बाहर संग है नानक काए दुराए पौड़ी, ववा वैर न करिय काहू, घट घट अंतर ब्रह्म समाहू। वासुदेव जल थल में रविया, गुर प्रसाद विरले ही गविया, वैर विरोध मिटे ते मनते, हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते, वर्ण चिहन सगल है ते रहता, नानक हर हर गुरमुख जो कहता। श्लोक हौ हौ करत बेहानिया, साकत मुगद अजान, रड़क मोए ज्यो त्रिखावन, नानक किरत कमान पौड़ी। अड़ाड़ा अड़ाड़ मिटे संग साधु, कर्म तर्म तत नाम अराधु, रूड़ो जेहे बसे रिद माही, वा की डाड़ मिटत बिन साही। अड़ाड़ करत साकत गावारा, जेहे ही है हम बुद्ध बेकारा, अड़ाड़ा गुरमुख अड़ाड़ मटाई, निमख माही नानक समझाई। श्लोक साधु की मन ओट गहो, उकत सियान पत्याग, गुर दीखिया जेहे मन बसै, नानक मस्तक भाग पौड़ी। ससा शरण परे अबहारी, शास्त्र सिमरत वेद पुकारी, सोधत सोधत सोध बिचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। सास सास हम भूलन हारे, तुम समरत अगनत अपारे, शरण परे की राख दयाला, नानक तुमरे बाल गोपाला। सलोक खुदी मिटी तब सुख भये,

जो किन मैं ऊने सुबर पराहू खरा निमा ना होत परानी अन दिन जापै प्रभ निर्वाणी भावै खसम ता वा सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता असंख खते खिन बख्शन हारा नानक साहिब सदा दयारा। सलोक सत कहो सुन मन मेरे सरन पर हो हर राय उक्त सियानप सगल त्याग नानक लय समाए पौड़ी ससा सियानप छाड़ आना हिकमत हुक्म ना प्रभ पतियाना सहस भांत करह चतुराई।

0: माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन गुरुदेव बंधप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश गुरुदेव मंत नरोधरा गुरुदेव शांत सतबुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरुज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतत पवित्र करा गुरुदेव आदि जुगादि जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप उधरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूढ़ पापी जित लग तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा इह सलोक आद अंत पढ़ना
1: गौड़ी सुखमनी।

हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाय। हर सिमरन भये सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौहों कुंट जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन वह आप निरंकारा। कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर्द दुख भंजना, कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो। नानक के प्रभ साथ अष्टपदी।

संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रते रंग एकै नानक जन कै बिरत बिबेकै हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परै ना भंग हर का नाम जन

जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग केते तरे पार जात एहो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम।

दुर्त सब नसै, संत का संग बड पागी पाई, संत की सेवा नाम ते आई, नाम तुल कछ अवर ना होए, नानक।

पूज सनाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमे बहु रतना शरीर कटाए होमे कर राती वर्त नेम करे बहु भांति नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे महा उदासत पीसर पीवे अग्न माहे होमत परान कनक असव है विर भूम दान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावे तौ पी हों मैं मैल न जावे हर के नाम समसर कछ नाही नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ देह छुटै गर्भ गमान न मन ते हुटै सोच करै।

अपमान। आप सुकौ जो जाने नीचा, सो गनिय सब ते ऊंचा। जाता मन हुए सगल की रीना, हर हर नाम तिन घट घट कीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, एक है सगल सृष्ट साज।

सगल कटाको देव हुदान कर्ण कराम नहार स्वामी सगल कटाके अंतर जामी अपनी गत मित जानो आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर ना जान सकोए सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करम सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम मह उदम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी।

सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गह लेहो ओढ़ निबिहावे, कहां बजारत दूजै डोरा, निस कहिए तो समझै पूरा, कहां बिसन पद गावे गोंग, जतन करे तो पी सुर भंग।

दृढ़ कर्मा न मन है प्रतीत, काल न आवे मूले चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ बकार महालोभ त्रोह, याहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले हो आपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा मह सूख कनेरे, कोई ना जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सगल समगरी तुमरे सूतर धारी।

लपट रहे हो तह अंध अंधार, बताऊ स्यो जो लावे ने ताको हाथ न आवे के, मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई, मिथ्या तन धन कुटुंब।

मिथ्या रथ हस्ती असव वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रोह मोह अभमान मिथ्या आपस ऊपर करत गमान अस्थिर भगत साध की सरन नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हसत पर धर्म को हिरह मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रियर उपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बकार को धाव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब भये सफल देहे नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आर जा।

जाए। गोविंद भजन बिन बिरते सब काम, ज्यो किरपन के नरारथ दाम। तन तन ते जन जे घट बस्यो हर नाम, नानक ता कै बल बल जाम। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंध लावत। जन नहार प्रभु परबीन, बाहर भेख ना काहू पीन। अवर अपदेस है।

रहत, सब कछ जाने आत्म की रहत, जिस भावै तिस लए लड़ लाई, थान थन अंतर रहे आसमाय, सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जप नानक हरी। सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिन सजाए अहमेव, नानक प्रभ शरणागति। कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी, जेह प्रसाद छत्ति अमृत खाहे, तिस ठाकर को रख मन माहे। जेह प्रसाद सुगंधत तन लाव है, तिस को सिमरत परम गत पाव है। जेह प्रसाद बस है सुख मंदर, तिसै त्याहे सदा मन अंदर। जेह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पैर सिमरहो तिस रसना। जेह प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याहिय त्यावन जोग। जेह प्रसाद पाठ पटंबर हंधावै है, तिसै त्याग कत अवर लुभावै है।

सोए। आप जपाए जपै सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। प्रभु कृपा ते हुए प्रगास, प्रभु दया ते कमल बिगास। प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभु दया ते मत उत्तम होए। सर्ब निदान प्रभु तेरी मया, आपो कछु न किन्हु लया। जित जित लाभ हो तित लगहै हर नाथ, नानक इनकै

जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटै अभिमान साध कै संग प्रगटै सुज्ञान साध कै संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होत नबेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वरनै कौन परानी नानक साध की शोभा प्रभ माहे सुमानी साध कै संग अगोचर मिलै साध कै संग सदा पर फुलै साध कै संग आवह बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कतहु धावै साध संग अस्थित मन पावै।

जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी संगल की रीना, आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी कीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइए, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजह महेश्वर। नानक।

पावै भगवती भगवंत भगत कारंग सगल त्यागै दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साद संग पापा मल खोवै जिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै बिसन परीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबोधै राम नाम आत्म मह सोधै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो

कार अष्टपदे कई कोट होए पुजारी, कई कोट अचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थ वास्ती, कई कोट बन भ्रम है उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आ

कई कोट भय अभमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अभिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्भ को हिरह, कई कोट पर दुख न करह, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पात्र बिरख निपजाय, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखियतर, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसास, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जन, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण जीवे, कई कोट जख किनर पसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, सब ते नेरे सब हूं ते दूर, नानक आप अलिपत रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहु जोनी फिर है, कई कोट बैठते ही खाए, कई कोट काल है थक पाए, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किस प्रभ कह हाते, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ कौ खोजंते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिलियो प्रभ अविनाश, कई कोट मांग है सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खानी अरखंड, कई

पूरन ब्रह्म प्रगास अपनी बनते आप बनाई नानक जीवै देख बडाई इसका बल नाही इस हाथ करन करावन सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावै सोई फुन थियो कबहू ऊंच नीच मह बसै कबहू सोग हरख रंग हसै कबहू निंद चिंद व्योहार कबहू ऊब आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आत्म लाम।

पर राजा कबहु भिखारी नीच का साजा कबहु अपकीर्त मह आवे कबहु भला भला कहावे ज्यों प्रभ राखे तिव ही रहे गुर प्रसाद नानक सच कह कबहु होए पंडित करे बखियान कबहु मोन धारी लावे ध्यान कबहु तट तीर्थ इशनान कबहु सिद्ध साधक मुख गया।

ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए बिसराम। नानक प्रभ कै सद कुर्बान, सलोक सुखी बसै मशकीनिया। आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी। जिसकै अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत सुवान। जो जाने मैं जो बनवंत, तो होवत बिष्टा का जंत। आपस कहो कर्मवंत कहावे, जन्म मरै बहु जोन प्रमावै।

आप अहंकारी धर्मराय तिस करी खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटे अब महान सूजन नानक दरगाह प्रवान कोट कर्म करे हों तारी श्रम पावे सगले बिरथारी अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरगाह कहो कैसे गवे आपस कहो जो भला कहावे तिसह भलाई।

तब इसको सुख नाही कोई। जब एह जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लग निश्चल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माई,

को उठ धावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनक भोग बिख्या के करे नह तृप्तावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राज्य सुपन मनोरथ बिरथे सब काज्य नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी तिसे प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करन हार इसके हाथ कहां विचार जैसे

नानक जो तिस पावै सोई ठिया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजै ना आसा, संत का दुखी

कर हर कर्म सर्वण हर कथा हर दरगाह नानकी उज्जन मथा बड़ भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार ते तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछान इत उत की ओह सोजी जान नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्ह निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजै किसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओह हर जन रहत अन दिन कीर्तन केवल बखियान गृहस्थ मैं सोही निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसह ना लागह दुख जिस को हर प्रभ मन चित आवे सो संत सहेला नहीं दुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक कहो किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया।

ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਨਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ

नानक सो जन सदा अरोग ज्यों मंदर को थमै थमन त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन ज्यों पाखाण नाव चढ़तरै प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै।

संग मिल जोत प्रगटावे, दिन संतन की बाँचो तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूरख काहे बिन लाइए, पुरब लिखे का लिखिया पाइए, दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तो किसह चितार, जो कछ करे सोई सुखमान, पूला काहे फिर है अजान, कौन बस्त आई तिरे संग, लपट रहे हो रस लोभी पतंग, राम नाम जप हिरदे माहे, नानक पत सेती घर जाहे, जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया, ताज अभमान ले।

या जंजाल तन तन कह सब कोए मुख पूजल हर दरगाह सोए इहो व्यापार विरला व्यापार है नानक तां कह सद बलिहार है चरण साध के तोय तोय पियो अर्प साध को अपना जियो साध की तूर करो इशनान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा वडभागी पाइए साध संग हर कीर्तन गाइए अनक बिघन ते साधु राखै हर गुण गाए अमृत रस चाखै ऊट गही संत है दर आया सर्ब सुख नानक ते पाया मृतक कौ जीवाल नहार भूखे कौ देवत आधार सर्व निधान जाकी दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाहे सब किस तिस का ओह करने जोग तिस बिन दूसर हुआ ना होग जप जन सदा सदा दिन रैणी सब ते ऊच निर्मल एह करनी कर कृपा जिस कौ नाम दिया नानक सो जन निर्मल किया जाकै मन गुर की प्रतीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत भगत भगत सुनिया केह लोय जा कै हृदय को होय सच करनी सच ता की रहत सच हृदय सतमुख कहत साची दृष्ट साचा आकार सच वरतै साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन

राज मह राज, जोग मह जोगी, तप मह तपीसर, ग्रस्त मह भोगी, त्याए त्याए भगत है सुख पाया, नानक तिस पुरख का किने अंत ना पाया, जाकी लीला की मित नाहि, सगल देव हारे

तरहां चलत करे खिन माहे, पूर रहे ओ पूर्ण सब ठाए, नाना विद कर बनत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब घट तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवै नानक हर नाओ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरियां सब भवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवन करके

अपने सेवक की आप पात राख है, ताकी गत मित कोए ना लाख है। प्रभ के सेवक को ना पहुंचे, प्रभ के सेवक उचते उच्चे, जो प्रभ अपनी सेवा लाया। नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया, नीकी कीरी मह कल राख है, पसम करे लश्कर कोट लाख है। जिसका शासन काटते आप, तां को राखत दे कर हाथ, मानस जतन करत बहु भांत, तिसके करतब बिरथे जात। मारे ना राखे अवर ना कोए, सर्व जिया का राखा सोए। काहे सोच करह रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख वडाणी। बारंग बार बार प्रभ जपिए, ई अमृत इह मन तन तृपिए। नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किस अवर नाही।

समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सद काम बोलो हो जस जेह बाद नरात प्रभ अपने जन कीनी दात करह भगत आत्म कै चाए प्रभ अपने स्यो रह समाए जो होवा होवत सो जान प्रभ अपने का हुक्म पहचान तिस की महिमा कौन बखानो तिस का गुण कह एक न जानो आठ पैर प्रभ बसै हजूरे कहो नानक से ही जन पूरे मन मेरे तिन की ओट ले मन तने अपना तिन जन दे जिन जन अपना।

नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सत गुर तिस का नाम तिस कै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाव अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उच्चरै।

0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पाओ बिन सह पूर्ण होए आस, भगत भाई आत्म परगास, तित कर जाए बसै अबनासी, कहो नानक काटी जम फासी,
1: तत विचार कह जन साचा,
0: जन्म मरै सो काचो काचा, आवागमन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग सरन गुरदेव, यो रतन जन्म का हुए उदहार, हर हर सिमर प्राण अधार, अनक अपाव न छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद बिचारे, हर की भगत करहु मन लाए, मन बंछत नानक फल पाए।

रहत गत पावहु, सार भूत सत हर को नाव, सहज सुपाए नानक गुण गाव, गुण गावत त्रि उत्तर सुमैल, बिन सजाए हो मैं बिख फैल, होहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम संभाल, चाड़ सियान पसगली मना, साध संग पावह सच धना, हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहा सुख दरगाह जयकार, सर्ब निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख।

मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हरियाप पूर्ण पूर रहो प्रभ व्याप अनक विस्थार एक ते पये एक अराध परासत गए मन तन अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिरत

करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपै सो हुए पनीत, भगत पाए लावे मन हीत, हम निर्गुण आर नीच अजान, नानक तुमरी सरन पुरख भगवान, सर्व बैकुंठ मुक्त मुख पाए, एक निमक हर के गुण गाय, अनक राज भोग बडियाई, हर के नाम की कथा मन पाई, महो भोजन कापर संगीत, रसना जपती हर हर नीत, पली सो करनी सो बातनवंत।

अष्टपदी जब अकार एहु कस ना दृष्टेता पाप पुन तब कह ते होता जब धारी अपन सुन समात तब बैर विरोध किस संग कमात जब इस का वर्ण चिहन ना जापत तब हरख सोग कहो किसे व्यापत जब अपने आप पार ब्रह्म तब मोह कहां किस होवत परम आपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस को गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत धरे तब कमन नडार कमन कत डरे आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहां बनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रभेका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपने आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा।

अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कमन माए बाप मित्र सुत भाई, जह सर्व कला आपह प्रवीन, तह वेद कतेव कहां को चीन, जब आपन आप आप उरतारे, तौ सगन अप सगन कहां बीचारे, जह अपनी ऊच अपने आप नेरा, तह कौन ठाकुर कौन कहिए तेरा, बिस्मन बिस्मरहे बिस्माद, नानक अपनी गत जान हो आप, जह अशल अशेद अभेद समाया, ऊहां किसै व्यापत माया,

आपह तनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपह कौतुक करे अनद चोज आपह रस भोगर निरजोग जिस भावे तिस आपन नाए लावे जिस भावे तिस खेल खिलावे बेशमार अथाह अगंत अतुल।

अष्टपदी आप कथै आप सुनने हार आप है एक आप विस्थार जान तिस भावै तां सृष्टि अपाई अपने

दृष्ट दर्शन पेठत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसै सो होत निहाल ताकै निकट ना आवत काल अमर पये अमरा।

देखन सब ब्रह्म संत जना कह हृदय सब धर्म संत जना सुनह शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी एह रह सत बचन साधु सब कह जो जो होए सोई सुख मान करन करावन हार प्रभ जान अंतर बसे बार पी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावै ता करे विस्थार तिस भावै ता एकंकार अनक कला लखी नह जाय जिस भावै तिस लये मलाय कवन निकट कवन कहिया दूर आपे आप आप भरपूर अंतरगत जिसे आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए।

किन्हें कछ करा, आप भला कर तूत आत्मी की, आपे जाने अपने जी की, आप साच धारी सब साच, ओत पोत आपन संगराज, ताकि गत मित कही ना जाए।

हस्तपदी पूरे गुर का सुन अपदीस पार ब्रह्म निकट कर पीख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगल सागर तरहो हर धन के परले हो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार हेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक नवार उधार हो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वह नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल यह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोकह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक कुदरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरन ही आए कर कृपा प्रभ आप मलाए।

समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग में।

सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै। जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाई, साध शरण नानक ते आई। जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, तिस जन आवै।

आप तजुहु गोबिंद भजुहु पाओ भगत प्रवेश लाभ मिले तो टाहिरे हर दरगाह पतवंत राम नाम धन संचवे साच साहा भगवंत उठत बैठत हर भजुहु साधु संग परीत नानक दुरमत छुट गई।

नानक संत निर्मल पए जिन मन वसया सोए पौड़ी तृतीया त्रै गुण बिखै फाल कब उत्तम कब नीच नरक सुर्ग भ्रम तो घणो सदा संगारे नीच हरख सोग सहसा संसार हौं हौं करत बिहाय जिन किए तिसह ना जाननी चित

दुख दार्द अपवित्रता नासह नाम आधार सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला हुए नानक सादर वाल। सलोक पंच बकार मन में बसे राचे माया संग साध संग हुए निर्मला नानक प्रभ कै रंग पौड़ी। पंचम पंच प्रधान ते जे जान्यो परपंच कुसुम बास बहुरंग कणो सब मिथ्या बलबंच। नह जापै नह बूझियै नह कछ करत बिचार स्वाद मोह रस भेदियो अज्ञान रचियो संसार। जन्म मरण बहु जून भ्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार नह सिमरियो मन ना बिचार विवेक। पाओ भगत भगवान संग माया लिपत नारंच नानक बिरले पाई है जो नारच है परपंच। सलोक खट शास्त्र ऊचो कह अंत न पारावार भगत सो है गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार। पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथ है अनेक उत्तम ऊचो पार ब्रह्म गुणयंत ना जान है सीख। नारद मुन जन सुख ब्यास जस गावत गोविंद रस गीदे हर स्यों बीदे भगत रचे भगवंत। मोह मान भ्रम बिन सेऊ

ताहिर साध संग लिवलाई खाट खजाना गुण निदहरे नानक नाम ते आई सलोक संत मंडल हर जस कथ है बोल है सत सुभाय नानक मन संतोखी है एकस स्यों लिवलाय पौड़ी सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार संत संगत मह पाई है अंत ना पारावार आप तजो हो गोबिंद भजो हो शरण पर हो हर राय दुख हरे पव जल तरे मन चिंदे आप फल पाए आठ पहर मन हर जपै

पीत जो हर की मत दे नानक तिस बलिहार ने हर हर नाम जपे सलोक आठ पहर गुन गाई है तजी है अवर

अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निद सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल परगास सदा आनंद निर्मल रीत निरोधर मंत सगल धर्म पवित्र इशनान सब मह ऊच बसेख ज्ञान हर हर भजन पूरे गुर संग जप तरिय नानक।

सार्य नरक स्वर्ग अवतार पौड़ी नौमी नवे सिदर अपवीत हर नाम ना जप है करत विपरीत पारत्रय रम है बक है साध निंद कर्म न सुनही हर जस बिंद फिर है पर दर्भ उदर कहताई अग्न ना निवरै तृष्णा ना बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमह अभागे सलोक दस जिस खोजत मैं फिरे हो जत देखूं तत सोए मन बल

मन मह चितवे पूर्ण भगवंत हस्त चरण संत टहल कमाइए नानक यो संजम प्रभ कृपा पाइए।

कौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम इंद्री बस कर सोहो हर नाम मन संतोख सर्ब जी दया इन बिद वर्त संपूर्ण भया धावत मन राखे एक ठाई मन तन शुद्ध।

बिनसे सगल जंजाल पौड़ी द्वादशी दान नाम स्नान हर की भगत करो ताजमान हर अमृत पान करो साध संग मन तृप्ता से कीर्तन प्रभ रंग कोमल बाणी सब कौ संतोख है पंच भू आत्मा हर नाम रस पोख है गुर पूरे ते एह निश्चौ पाइय नानक।

राम पतत उदारन मन बसे नानक छूटे नाम पौड़ी त्रौदशी तीन ताप संसार आवत जात नरके अवतार हर हर भजन न मन मह आयु सुख सागर प्रभ निमुख न गायु हरख सोग का देह कर बांधेउ दीर्घ रोग माया असाध्यु दिने विकार करत श्रम पायु नैनी नींद सुपन बरड़ायु हर बिसरत होवत एह हाल सरन नानक प्रभ पुरख दयाल। श्लोक चार कुंट

पौड़ी चौदह चार कुंट प्रभे आप सगल भवन पूर्ण प्रताप दसे दिशा रव्या प्रवेक तरन आकाश सब मह प्रभ पीक जल थल बन पर्वत

हूँ मैं छुट्टी, सिमरत हर को नाम, शरण गही पार ब्रह्म की, मिटिया आवागमन, आप तरिया कुटुंब स्यों, गुण

नानक सुख विश्राम सलोक पूर्ण कभो ना ढोलता पूरा किया प्रभे आप दिन दिन चढ़े सुआया नानक होत ना घाट पौड़ी पूर्णमा पूर्ण प्रवेक करण कारण समरथ जी जंत दयाल पुरख सभी ऊपर जा का हाथ।

बाद श्लोक महला चौथा सतगुरु पुरख दयाल है जिसनो समत सब कोई एक दृष्ट कर देखदा मन भावनी ते सिद्ध होए सतगुर विच अमृत है हर उत्तम हर पद सोए नानक कृपा ते हर त्याई है

लाहा हर धन खटिया गुरमुख शब्द विचार होमे मैल बिख उतरे हर अमृत हर उरतार सब कारज तिनके सिद्ध है जिन गुरमुख कृपा तार नानक जो तुर मिले से मिल रहे हर मेले सिरजनहार पौड़ी तू सच्चा साहेब सच है सच सच्चा गोसाई तुदनो सब त्याई दी सब लगे तेरी पाई तेरी सिफत सवाल्यो स्वरूप है जिन कीती तिस पार लंघाई।

मेरे मन पहाया सच्चे मेरे साहिबा सच्चे सच नाया। श्लोक महला चौथा। मन अंतर हो मैं रोग है भ्रम भूले मन मुख दुर्जना नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सज्जना। महला चौथा। मन तन रत्ता रंग सियो गुरमुख हर गुण तास जन नानक हर सर।

तुद जे वड होए सो आखी तुद जेहा तू है पढ़ी तू घट घट एक वरतदा गुरमुख परगड़ी तू सच्चा सब सुदा खसम है सब दू तू चढ़ी तू करह सो सच्चे होए सी ता कायत करिए। श्लोक।

सतगुर सुख वसन महला चौथा जिने अंदर प्रीत पिरम की ज्यों बोलन तिवें सोहन नानक हर आपे जानदा जिन लाई प्रीत पिरन पौड़ी तू करता आप भुल है भुलन विच नाही तू कर है सो सच्चे भला है गुर शब्द बुझाही तू करन कारण समर्थ है दूजा को नाही तू साहिब अगम दयाल है सब तुद त्याही सब जी तेरे तू सब सदा तू सब छिड़ाही। सलोक महला चौथा। सुन साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगन गुर तुठे सजन मेलिया जन नानक सुख सुवन महला चौथा। सतगुरु दाता दयाल है जिसनो दया सदा हुए सतगुर अंदरों निर्वैर है सब देख ब्रह्म एक सोए निर्वैरा नाल जे वैर चलाएं दे तिन विचों किस्तिया ना कोई सतगुर सबना दा

नानक करता सब किछ जानदा, जिदू किछ गुजा ना होए पौड़ी, जिसनो साहिब वड्डा करे सोई वड जानी, जिस साहिब भावै तिस बख्श लए, सो साहिब मन पाणी, जे को ओस दी रीस करे सो मूड अजानी, जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवै गुण आख बखाणी, नानक सच्चा सच है बुझ सच समाणी, सलोक महला चौथा हर सत निरंजन अमर है, निर्भउ निरवैर निरंकार, जिन जपया एक मन एक चित, तिन लथा हुमै भार, जिन गुरमुख हर आराध्या तिन संत जना जयकार, कोई निंदा करे पूरे सतगुरु की, तिसनो फिट फिट कहे सब संसार, सतगुरु विच आप वरतदा हर आपे रखन हार, तन तन गुरु गुण गावंदा तिसनो सदा सदा नमस्कार, जन नानक तिन को वारिया जिन जपया सिरजन हार, महला चौथा आपे धरती साजियन आपे आकाश, विच आपे जंत उपायन।

वर्तै नित कर कर देखै चलत सुभाय। महला चौथा एक मन एक वर्तदा जित लगै सो थाए पाए। कोई गल्ला करे कनेरियां जे घर वत होवै साई खाए। बिन सतगुरु सोजी ना पवै अहंकार ना विचों जाए। अहंकारियां नो दुख भुख है हथ तड है घर घर मगाए। कूड़ ठगी गुजी ना रहे मलम्मा पाज लह जाए। जिस होवै पूर्व लिखिया तिस सतगुर मिले प्रभ आए। ज्यो लोहा पारस भेटी है मिल संगत स्वर्ण होए जाए। जन नानक के प्रभ तू तनी ज्यो भावे तिवें चलाए। पौड़ी जिन हर हिरदय सेविया तिन हर आप मलाए। गुण की सांझ तिन स्यों करी सब अवगण शब्द जलाए। अवगण विकण पल्लरी जिस दे सो सच्चे पाए। बलिहारी गुरे अपने जिन अवगण मेट गुण प्रगट आए। वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए। सलोक महला चौथा सतगुर विच वड्डी वड्याई। जो आन दिन हर हर नाम ते आवै हर हर नाम रमत सुच संजम। हर नामे ही त्रिपतावै हर नाम तान हर नाम देवान। हर नामो रख करावै जो चेत लाए पूजे गुरमूरत सो।

सतगुरु की सेवा निर्मली निर्मल जन होए सो सेवा काले जिन अंदर कपट वकार झूठ वे आपे सच्चै वख कड्डे जजमाले सच्यार सिख बह सतगुर पास कालन कूड़ियार ना लभनी कितै थाए पाले जिन्ना सतगुर का आया।

मन आवे अध विच फिरे मन मुख विचारा गल्ली क्यों सुख पावे जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुर की सो कूड़ी आवे कूड़ी जावे जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता ता सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवे ता अपिओ पीवे शब्द गुर केरा सब काला अंदेसा भरम चुकावे सदा आनंद रहे दिन राती जन नानक अन दिन हर गुण गावे महला चौथा गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम त्यावे उदम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृत सर नावे उपदेश गुरु हर हर जप जापे सब किल विख पाप दोख लह जावे फिर चढ़ै दिवस गुरबाणी गावे बहिंदियां उठदियां हर नाम त्यावे जो सास ग्रास त्याए मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन भावे जिसनो दयाल हुए मेरा स्वामी तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की जो आप जपे अवरह नाम जपावे पौड़ी जो तुद सच त्याई दे से विरले थोड़े जो मन चित एक अराध दे तिनकी बरकत खाही असंख करोड़े तुदनो सब त्याई दी से थाए पए जो साहिब लोड़े जो बिन सतगुर सेवे खांदे पैन दे से मोए मर जम्मे कोड़े ओए हाजर मिठा बोल दे बाहर विस कढ़ मुख कोले मन खोटे दइये विछोड़े सलोक महला चौथा मल जूई भरिया नीला काला खिदोलड़ा तिन वे मुख वे मुखे नो पाया पास ना देही कोई बहन जगत मह गुहू पर सगवी मल लाए मन मुख आया पराई जो निंदा चुगली नो बेमुख करके भेजिया उथे पी मुह काला दोहां बेमुखां दा कराया तड़ सुनिया सबत जगत विच भाई बेमुख सुने नफरे पौली पौंदी फावा हुए कै उठ घर आया अगे संगती कुड़मी बेमुख रलना ना मिले ता बहुती भतीजी फिर आन घर पाया हलत पलत दोवें गए नित भुखा कूके तिहाया तन तन स्वामी करता पुरख है जिन न्याओ सच बह आप कराया जो निंदा करे सतगुरु पूरे की सो साचै मार पचाया एहो अखर तिने आखिया जिन जगत सब उपाया महला चौथा साहिब जिसका नंगा भुखा होवे तिसदा नफर कित्थों रज खाए जे साहिब कै घर वत होवे सो नफरै हाथ आवे अणहोंदी कित्थों पाए जिसदी सेवा कीती फिर लेखा मंगी सा सेवा औखी होई नानक सेवा करो हर गुर सफल दर्शन की फिर लेखा मंगे ना कोई पौड़ी नानक विचार है संत जन चार वेद कहंदे भगत मुख है ते बोल दे से वचन हवंदे प्रगट पहारा जापदा सब लोक सुनंदे सुख ना पायन मुगद नर संत नाल खहंदे ओए लोचने उन्ना गुणे नू ओए अहंकार सुनंदे ओए विचारे क्या करहें जां भाग तुर मंदे जो मारे तिन पार ब्रह्म से किसे ना संदे वैर करहें निर्वैर नाल धर्म ने आए पचंदे जो जो संत सरापिया से फिर है पवंदे पेड़ मडाहू कटिया तिस डाल सुकंदे सलोक महला चौथा अंतर हर गुरु त्याईंदा वड्डी वड्याई तुस दित्ती पूरे सतगुरु कटै नाही एक तिल किसे दी कटाई सच साहेब सतगुरु कै वल है ता झक झक मरै सब लोकाई निंदकां के मुंह काले करे हर करतै आप वधाई ज्यों ज्यों निंदक निंद करहें
त्यों त्यों नित नित चढ़ै सुवाई।

रखै हलत पलत सब तिसका गया नित झहियां पाए झगू सुटे झकदा झड़ पया नित अपाव करे माया धन कारण अगला धन भी उड गया क्या ओह खट्टे क्या ओह खावै जिस अंदर सहसा दुख पया निर्वैरै नाल जे वैर विचाए सब पाप जगतै का तिन सिर लया ओस अगै पिछे ढोई नाही जिस अंदर निंदा मुहे अंब पया जे सोइने नो ओह हाथ पाए तां खेहू से तीर हल गया जे गुर की सरनी फिर ओह आवै तां पिछले औगण बख्श लया जन नानक अन दिन नाम त्याया हर सिमरत किल विख पाप गया पौड़ी तू है सच्चा सच तू सब तू ऊपर तू दीवान जो तुद सच त्याईंदे सच सेवन सच्चे तेरा मान ओना अंदर सच मुख उजले सच बोलन सच्चे तेरा तान से भगत जिन्नी गुरमुख सा लाहिया।

से फिटे गुर अंगद कीते कूड़ियारे गुर तीजी पीढ़ी वेचारिया क्या हाथ एना वेचारे गुर चौथी पीढ़ी टिकया तिन निंदक दुष्ट सब तारे कोई पुत सिख सेवा करे सतगुरु की तिस कारज सब सुवारे जो इच्छा सो फल पाए सी पुत धन लक्ष्मी खड़ मेले हर निस्तारे सब निधान सतगुरु विच जिस अंदर हर उर तारे सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत ललारे जन नानक मांगै धूड़ तिन जो गुरसिख मित प्यारे महला चौथा जिनको आप दे बड़ियाई जगत भी आपे आन तिनको पैरी पाए डरिया ता जे किश आप दू कीचै सब करता अपनी कला वधाए देखो भाई एहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का जिन अपने जोर सब आन निवाए अपने भगतां की रख करे हर स्वामी निंदकां दुष्टां के मुंह काले कराए सतगुर की वड्याई नित चढ़ै सवाई हर कीरत भगत नित आप कराए अन दिन नाम जपो गुर सिखो हर करता सतगुर करी वसाए सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो हर करता आप मुंहो कढ़ाए गुरसिखा के मुंह उजले करे हर प्यारा गुर का जयकार संसार सबत कराए।

सच साहा हमारी सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रभ वणजारे थारे सच सेव है सच वणंज लह गुण कथ है निरारे सेवक भाए से जन मिले गुर शब्द सुवारे तू सच्चा साहब अलख है गुर शब्द लिखारे। सलोक महला चौथा जिस अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवी भला ओस दे आखे कोई ना लगे नित उजाड़ी पुकारे खला जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या ओस दा सब गया नित चुगली करे अनहोंदी पराई मुंह कढ ना सके।

जिन नाम अरादिया आप करिया जिन्नी दिथा तिन्ना लए छडाई हर सतगुर मेलो दया कर जन नानक धोए पाए पौड़ी सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उर धारिया सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बेख मारिया जान दिथा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा घुम वारिया गुरमुख जिता मनमुख हारिया सलोक महला चौथा कर किरपा सतगुर मेलियोन मुख गुरमुख नाम त्याए सी सो करे जे सतगुर भाव सी गुरपूरा करी वसाए सी जिने अंदर नाम निधान है तिनका पहु सब गवाए सी जिन रखन को हर आप होए होर केती चाख चाख जाए सी जन नानक नाम त्याए तू हर हलत पलत छोड़ाए सी महला चौथा गुर सिखा कै मन पाउंदी गुर सतगुर की वडियाई हर राखो पैज सतगुरु की नित चढ़े सुआई गुर सतगुर कै मन पार ब्रह्म है पार ब्रह्म छडाई गुर सतगुर तान दी बाण हर तिन सब आन निवाई जिन्नी दिठा मेरा सतगुर पाओ कर तिनके सब पाप गवाई।

उठा सतसंगत में हर उस्तत है संग साधु मिले प्यारिया वे पुरख प्राणी धन ज्ञान है उपदेश कर है पर उपकारिया हर नाम दृढ़ाव है हर नाम सुनाव है हर नामे जग निस्तारिया गुर वेखण को सब कोई लोचे नवखंड जगत नमस्कारिया तुद आपे आप रखिया सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया तू आपे पूज है पूज कराव है सतगुर को सिरजन हारिया कोई बिछड़ जाए सतगुरु पासो तिस काला मुह जम मारिया तिस अगे पिछे ढोई नाही गुरसिखी मन विचारिया सतगुरु नो मिले से ही जन उबरे जिन हिरदय नाम समारिया जन नानक के गुरसिख पुत हो हर जपे हो हर निस्तारिया महला तीजा हो मैं जगत भलाया दुरमत बिख्या बेकार सतगुर मिले ता नदर होए मनमुख अंध अंधियार नानक आपे मेल लय जिसनो शब्द लाए प्यार पौड़ी सच सच्चे की सिफत सलाह है सो करे जिस अंदर भिजे जिनी एक मन एक अराध्या तिनका कंध ना कबहू सिजे तन तन पुरख साबास है जिन सच रसना अमृत पिजे सच सच्चा जिन मन भामदा से मन सच्ची दरगाह लिजे तन तन जन्म सचियारिया मुख उज्जल सच करिजे सलोक महला चौथा साकत जाए निवह गुर आगे मन खोटे कूड़ कूड़ आरी जा गुर कह उठो मेरे भाई वह जाहे कुसर बगलारी गुर सिखा अंदर सतगुर वरत चुन कड्डे लड्डो वारे कोई अगे पिछे बह मुह सुपाइन ना रलनी खोटे आरे ओना दा भख सो ओथे नाही जाए कूड़ लहन भेडारे जे साकत नर खवाई है लोची है बिख कड्डे मुख उगलारे हर साकत सेती संग ना करियो हो उए मारे।

रवे हों बलिहारी तिनको जे अन दिन सच लवे जिन मन पन सच्चा भामदा से सच्ची दरगाह गवे जन नानक बोले सच नाम सच सच्चा सदा नवे सलोक महला चौथा क्या सवना क्या जागना गुरमुख ते परवान जिन्ना सास ग्रास ना विसरे से पूरे पुरख प्रधान करमी सतगुर पाई है अन दिन लगे ध्यान तिनकी संगत मिल रहा दरगाह पाई मान सौंदे वाहो वाहो उच्च रह उठदे पी वाहो करेन नानक ते मुख उजले जे नित उठ संभालेन महला चौथा सतगुर सेविया अपना पाई नाम अपार भौजल डुबद्या कढ़ लए।

ए जन भगत है सच सच्चा जिनी आराध्या जिन गुरमुख खोज टंडोलिया तिन अंदरों ही सच लादिया सच साहेब सच जिनी सेविया काल कंटक मार तिनी साध्या सच सच्चा सब दू वड्डा है सच सेवन से सचर लादिया सच सच्चे नू साभास है सच सच्चा सेव फलादिया सलोक महला चौथा मनमुख प्राणी मुगद है नामहीन परमाय बिन गुर मनुआ ना टिकै फिर जूनी पाय हर प्रभ आप दयाल होहे ता सतगुर मिलिया।

जित सतगुर का मन मन्ने, जहां सतगुर का मन मन्निया ता पाप कसम्मल पन्ने, अपदेश जे दिता सतगुरु सो सुनिया सिखी कन्ने, जिन सतगुर का पाणा मन्निया तिन चढ़ी चवगण वन्ने, एह चाल नराली गुरमुखी गुर दीखिया सुन मन भिन्ने, सलोक महला तीजा जिन गुर गोपिया अपना तिस ठौर ना ठाओ, हलत पलत दोवें गए दरगाह नाही थाओ, ओह वेला हथ ना आवई फिर सतगुर लगे पाए, सतगुर की गणत कुसी है दुखे दुख विहाय, सतगुर

दुर्मत अहंकारी अंतर क्रोध जुए मातहारी कूड़ कसात ओह पाप कमावे क्या ओह सुने क्या आख सुनावे अन्ना बोला खोए उजड़ पाए मनमुख अंधा आवे जाए बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास उतै सच वरतदा कूड़े आरा चित उदास ओए वल छल कर झत कढ दे फिर जाए बह कूड़े आरा पास विच सच्चे कूड़ ना गड़े मन वेखो को निरजास कूड़े आर कूड़े आरी जाए रले

अंग जोट। सलोक महला चौथा। तपा न होवे अंदरो लोभी, नित माया नो फिरे जज मालिया। अगों दे सद्या सतै दी भिख्या लए नाही, पिछों दे पछताए कै आण तपै पुत विच बहालिया। पंच लोग सब हसन लगे, तपा लोभ लहर है गालिया। जिथै थोड़ा धन वेखै तिथै तपा पिटै नाही, धन बहुतै डिठै तपै धर्म हारिया। भाई एहो तपा ना होवी बगला है।

गुमान करहै मूड़ गुमानिया विस खादी मरिए आए लगे नी देह थोड़े ज्यो पक्का खेत लुनिए जेहे कर्म कमावंदे तेवे हो पणिए।

वैर करन निर्वैर नाल धर्म ने आए पचंदे जो जो संत सरापिया से फिर है पवंदे पेड़ मडाहू कटिया तिस डाल सुकंदे। श्लोक महला पंजवा गुरु नानक हर नाम दरड़ाया भन्नन कण समरथ प्रभ सदा संभाल है मित्र तू दुख सबाया लथ। महला पंजवा खुदया वंत न जानी लाज को लाज कबोल नानक मांगे नाम हर करके।

के पूरै सतगुर भावै गुर सिखा अंदर सतगुरु वरतै जो सिखा नू लोचै सो गुर खुशी आवै सतगुर आखै सो कार कमावन सो जप कमावै।

काम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुहे जेवड़ तू वड वड्डे। जिस तू मिल है सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े। जिसनो तू आप मलाईंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े। तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे। ज्यों पावै त्यों रख तू सच्चिया नानक मन आस तेरी वड वड्डे। सुध गौड़ी की वार महला पंजवां राय कमाल दी मौज दी की वार की धुन उपर गावणी।

अठे पैर भौंदा फिरे खामन संधड़ै सूल दोजक पौंदा क्यों रहे जा चेतना होए रसूल पौड़ी तिसै सरे वो प्राणी हो जिसदा नाव पल्लै ऐसै रहो सहेलिया अगे नाल चलै घर बंद हो सच धर्म का गड थम अहलै ओट लै हो नारायण दीन दुनिया चलै नानक पकड़े चरण हर किस दरगाह मल्लै सलोक महला पंजवा जाचक मंगै दान दे प्यारिया देवन हार दा तार मैं नित चितारिया नखोट न जाई मूल अतुल भंडारिया नानक शब्द अपार तिन सब किश सारिया महला पंजवा सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक पौड़ी उथे अमृत वंडी है सुखिया हर करने जम कै पंथ ना पाई है फिर ना ही मरने जिसनों आया प्रेम रस

माने अंदर तरनी सलोक महला पंजवा सतगुर पूरै सेवै दुखां का होए नास नानक नाम अरातै कारज आवै रास महला पंजवा जिस सिमरत संकट छुटै आनंद मंगल बिचराम नानक जपिया सदा हर निमक न बिसरो नाम पौड़ी तिनकी शोभा क्या गणी।

जिस तुस देवै आप जित खादै मन तृप्तिऐ नानक साहिब दात पौड़ी लाहा जग मैं से खटहै जिन हर धन रास दुतिया भाव न जाननी सच्चे दी आस निश्चल एक सरेविया होर सब विनाश पार ब्रह्म जिस विसरै तिस बिरथा सास कंठ लाए जन रखिया नानक बल जास। श्लोक महला पंजवां पार ब्रह्म फरमाया मीह गुठा सहज सुपाए अन तन बहुत उपजिया रिथमी रजी तिप्त अगहाय सदा सदा गुण उच्चरै दुख दालद गया बिलाय पूर्व लिखिया पाया मिलिया तिसै रजाय परमेश्वर जी वालिया नानक तिसै त्याय। महला पंजवां जीवन पद निर्वाण।

ज्ञान रंग रूप रस बाद के करह परानिया जिस पलाए आप तिस कल नहीं जानिया रंग रते निर्वाण सच्चा गावही नानक सरन द्वार जे तुद भावही पौड़ी जम्मन मरन ना तिनको जो हर लड़ लागे जीवत से परवान हुए हर कीर्तन जागे साध संग जिन पाया से वड भागे नाए विसरिया त्रिग जीवना टूटे कच धागे नानक धूड़ पनीत साध लख कोट पिरागे।

यह दिशा जल पर्वत बन राए जिथे डिठा मृत को हिल बेठी आए पौड़ी जिस सर्व सुखा फल लोड़ी है सो सच कमावो नेड़े देखो पार ब्रह्म एक नाम त्यावो।

पौड़ी सब निदान घर जिसद हर करे सो होवै जप जप जीव है संत जन पापा मल धोवै चरण कमल हिरदय वसह संकट सब खोवै गुर पूरा जिस भेटी है मर जन्म ना रोवै प्रभ दर्श प्यास नानक घणी किरपा कर देवै सलोक डखना महला पंजवां भोरी परम वंजाए प्रिय मोहब्बत हिक।

सारी पौड़ी रसना उचरै हर श्रवणी सुने सो उदरै मित्ता हर जस लिखें लाए भावनी से हस्त पविता अठ सठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता संसार सागर ते उदरे बिख्या गढ़ जिता नानक।

तन फुटन जिन्ना साहि विसरै महला पंजवा प्रेतोह की तुन देवता तिन करनै हारे सबे सिख उभारियन प्रभ काज सवारी निंदक पकड़ पछाड़ियन झूठे दरबारी नानक का प्रभ वड्डा है।

राम जल पाया, राम उदक तन जल तबुझाया, रहाउ मन मारन कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत ना पाइए, जेह पावक सुर नर है जारी।

तर वर हौ पंखी आहे मंद भागी तेरो दर्शन नाहे। तू सतगुर हौ नौ तन चेला कह कबीर मिले अंत की बेला। गौड़ी कबीर जी जब हम एको एक कर जानिया।

माया रत बहु रूप रचाही, तिनको दया सुपने पी नाही। चार चरण कह बहु आगर, साधु सुख पावे कल सागर। कहो कबीर बहु काय करीजै, सर्बस छोड़ महारास पीजै।

चतराई ना चतर भुज पाई रहाउ पर हर लोभ अरलोकाचार पर हर काम क्रोध अहंकार कर्म करत बदे अहमेव मिल पाथर की कर ही सेव कहो कबीर भगत कर पाया भोले पाए मिले रघुराया गौड़ी कबीर जी गर्भवास मह कुल नहीं जाती ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती कहो रे पंडित बामन कब के हुए बामन कह कह जन्म मत खोए रहा जौ तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया तुम कत ब्राह्मण हम कत सू

कबीर जी, अंधकार सुख कबह ना सोई है, राजा रंक धू मिल रोई है, जौ पै रसना राम ना कहबो, उपजत बिनसत रोवत रहबो रहाओ, जस देखिए तरवर की छाया, प्राण गए कहो कां की माया, जस जंती मह

इस परचाए परच रहो एस गौड़ी कबीर जी जो जन परमित परमन जाना बातन ही बैकुंठ समाना ना जाना बैकुंठ कहां ही जान जान सब कह तहां ही रहाओ कहन कहावन नह पति आई है तो मन माने जाते हों मैं जई है जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग होए नहीं चरण निवास कहो कबीर एह कहिए काहे साध संगत बैकुंठ आहे गौड़ी कबीर जी उपजै निपजै निपज समाज।

तौ कीजै जौ आपन जीजै। मैं ना मरूं मरबो संसारा, अब मोहे मिलियो है जे आवनहारा रहाऊ। या देही परमल महकंदा, ता सुख बिसरे परमानंदा। कुवटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज परे मत हारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुवटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म किए बहुरंगा। ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए रहाओ। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी। साकत मर है संत सब जीव है।

सुगंध बसाई कहत कबीर चेतरे अंधा सत राम झूठा सब धंधा गौड़ी कबीर जी तिपदे चार तुके जमते उल्ट भये है राम दुख बिन से सुख कियो विश्राम बैरी उल्ट भये है मीता साकत उल्ट सुजन भये चीता अब मोहे सर्ब कुशल कर मानिया शांत भई जब गोविंद जानिया रहाउ तन मह होती कोट अपाद उल्ट भई सुख सहज समाध।

जी तिप दे कंचन स्यो पाई है नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल, अब मोहे राम अपना कर जानिया।

केवल राम भगत निज भागी गौड़ी कबीर जी जेह मरना सब जगत तरासिया सो मरना गुर शब्द परगासिया अब कैसे मरूं मरन मन मानिया मर मर जाके जिन राम ना जाने।

गौड़ी कबीर जी कत नहीं ठौर मूल कत लाव खोजत तन मह ठौर ना पाव लागी होए सो जाने पीर राम भगत अनियाले तीर रहाओ एक पाए देखो सब नारी क्या जानो सह कौन प्यारी कहो कबीर जाके मस्तक भाग सब पर हर ताको मिले सुहाग गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकुर पहाई मुक्त अनंत पुकार।

कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, क्या बस जो बिख दे महतारी। गौड़ी कबीर जी बिन सत सती होए कैसे नार, पंडित देखो हृदय बिचार। प्रीत बिना कैसे बदे स्नेह, जब लग रात तब लग नहीं नेह। रहाओ साहन सत करे जी अपने, चोर मैये को मिले ना सुपने। तन मन तन ग्रह

तिनकै सद बलिहारै जाउ। सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो भाई मेरे मन भावै रहाउ। जेहे कट राम रहया भरपूर, तिनकी पग पंकज हम धूर।

मेरी पाठी, संच महारस तन भया काठी, वाको कही है सहज मतवारा, पीवत राम रस ज्ञान बिचारा रहाउ, सहज कलालन जो मिल आई, आनंद माते अन दिन जाई, चीनत चीत निरंजन लाया, कहो कबीर तो अनुभव पाया, गौरी कबीर जी मन का सुपहो मन व्यापी, मन है मार कमन सिद्ध थापी।

तुझह ले तारू खिचह ता प्रेम कै चावक मारो कहत कबीर भले असवारा वेद कतेव ते रह निरारा गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए तेह मुख देखत लू कट लाए एक दुख राम राय काटो मेरा अग्न दह अर गर्भ बसेरा रहाओ काया बेगूती बहु विद भांति को जारे को गढ़ ले माटी।

तारा कह कवना राम जपत तन जर की ना जाए राम नाम चित रहे आसमाए रहाओ काको जरै काहे होए हान नटवट खेल।

35 राग गौड़ी ग्वार री अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुख हम हो ना मांगिया पावे बिछिया अजहो सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाउ इस सुख ते सेव ब्रह्म डराना सो सुख हम हो साच कर जाना सनकादक नारद मुन सिखा तिन भी तन में।

जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को राव रहे कबीरा, गौड़ी गुआर रे अहनस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध भय लिव लागे रहाउ, साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प तार तारे।

कौन को पुरख कौन की नारी, या तत लेहो शरीर बिचारी। कह कबीर ठग स्यों मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया। अब मोको भय राजा राम सहाई, जन्म मरण कट परम गत पाई रहाउ। साधु संगत दियो रलाई, पंच दूत ते लियो छडाई। अमृत नाम जपो जप रसना, मोल दास कर लीनो अपना।

बुझिया अंगियार मन संतोख नाम आधार जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी जत पेखो तत अंतर जामी अपनी भगत आप ही दृढ़ाई पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई।

होइ। उठत बैठत सूतक लागे, सूतक परै रसोई। फासन की बिद सब को जाने, छूटन की एक कोई। कह कबीर राम हृदय बिचारे, सूतक तिनै ना होई। गौड़ी झगड़ा एक नबेरो राम, जो तुम अपने जन सौ काम रहाओ। यो मन बड़ा के जा सो मन मानिया, राम बड़ा।

आप गए और नहु खो वह आग लगाए मंदर में सो वह अवर्ण हस्त आप है काने तिनको देख कबीर लजाने राग गौड़ी बैरागन कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद जीवत पितर न माने को मुए श्राद कराही पितर भी बपरे कहो क्यों पावे है कौआ कूकर खाही मोको कुशल बतावो कोई कुशल कुशल करते।

कहत कबीर अकुल नहीं चेतिया, दिखिया स्यों लपटाना गौड़ी, जीवत मरै मरै फुन जीवै, ऐसे सुन समाया, अंजन माहे निरंजन रही है, बहुड़ ना पवजल पाया, मेरे राम ऐसा खीर बलोई है, गुरमत मनुआया स्थिर राखो, इन बेद अमृत पियोई है रहाओ, गुर कै बाण बजर कल छेदी, प्रगटिया पद परगासा, सकत अंधेर जेवड़ी भ्रम चूका, निहचल शिव कर बासा, तिन बिन बाण तनख चढ़ाई है, एहो जग बेदिया भाई, दह दिस बूढ़ी पवन चलावै, जोर रही लिवलाई, उन मन मनुआ सुन समाना, दुबदा दुरमत भागी, कहो कबीर अनभव एक देखिया, राम नाम लिवलागी, गौड़ी बैरागण तिप दे, उल्टत पवन चक्कर खट भेदे, सुरत सुन अनरागी, आवै ना जाए मरै ना जीवै, तास खोज बैरागी, मेरे मन मन ही उल्ट समाना, गुर प्रसाद अकल पही अवरै, नातर था बेगाना रहाओ, निवरै दूर दूर फुन निवरै।

तिन तैसी झल देखी गौड़ी तह पावस सिंध धूप नहीं सहिया तह उत्पत परलो नाही जीवन मृत ना दुख सुख व्यापै सुन समाद दो तह नाही सहज की अकथ कथा है निरारी तुल नहीं चढ़ै जाए ना मकाती हल्की लगे ना भारी रहाऊ अर्ध उर्द दो तह नाही रात दिन सतह नाही जल नहीं पवन पावक फुन नाही सतगुर तहा समाही अगम अगोचर रह निरंतर गुर कृपा ते लहिए कहो कबीर बल जाओ गुर अपने सत संगत मिल रही है गौड़ी पाप पुन दोए बैल बसाही पवन पूंजी परगासियो तृष्णा गुण भरी घट पीतर इन बिद टांड बसाहयो ऐसा नायक राम हमारा सगल संसार कियो बनजारा रहाऊ काम क्रोध दोए भये जगाती मन तरंग बटवारा पंच तत् मिल दान नवेर है टांडा उतरियो पारा कहत कबीर सुनो रे संतो अब ऐसी बन आई घाटी चढ़त बैल एक थाका चलो गोन छिटकाई।

कहो डडिया बंद है धन खड़ी पाहू घर आए मुकलाऊ आए रहाऊ ओहो जे दिसै खूहड़ी कौन लाज वहारी लाज घड़ी स्यों टूट पड़ी उठ चली पनेहारी साहिब हुए दयाल कृपा करे अपना कार्य सवारे तां सुहागन जानी गुर शब्द बीचारे किरत की बांधी सब फिरै

कबीरा गौड़ी जोगी कह है जोग पल मीठा अवरना दूजा भाई रुंडित मुंडित एक है शब्दी एक है सिद्ध पाई हर बिन भरम भलानी अंधा जाप है जाओ आप छुटकावन ते बांधे बहु।

एक है बड हम ही जिसे बुझाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है सतगुरु मिले अंधेरा चूके इन विद मानक लही है तज बावे दाहने बेकारा हर पद दृढ़ कर।

किस नाही पांच तात तह नाही एड़ा पिंगला सुखमन बंदे ए अवगण कत जाही तागा टूटा गगन बिनस गया तेरा बोलत कहां समाई।

पिंड तह नाही रचनहार तह नाही जोड़नहारू सदा अतीता एह कही है किस माही जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे जब लग होए बिनासी का को ठाकुर का

महाव, खंड ब्रह्मांड मह सिंही मेरा बटुआ, सब जग पसमा धारी, ताड़ी लागे त्रिपल पलटी है, टूटे हुए पसारी, मन पवन दोए तुम्बा करी है, जुग जुग सारद साजी, थिर पई तंती टूटस नाही, अनहद किंगरी बाजी, सुन मन मगन पए है पूरे, माया डोल ना लागी, कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं, खेल गयो बैरागी, पौड़ी गाज नाव गाज दास गाज इक्कीस पुरिया एक तनाई, साठ सूत नव खंड बहत्तर पाठ लगो अधिकाई, गई बनावन माहो कर छोड़े जाए जलाहो रहाओ, गजी ना मिनिये तोल ना तुलिये, पांचन सेर अढ़ाई, जो कर पांचन बेग ना पावे, चगर करे करहाई, दिन की बैठ खसम की बरकस।

नतर रही उरझाई, छोड़ पसार इहां रहो बपुरी, कहो कबीर समझाई गौड़ी। एक जोत एका मिली, किंबा हुए मोहोए, जित घट नाम ना उपजे, फूट मरे जन सोए। सांवल सुंदर रामैया, मेरा मन लागा तो हे रहाओ, साध मिले सिद्ध पाई है,

आई गौड़ी जेते जतन करत ते डूबे भाव सागर नहीं तारियो रे कर्म धर्म करते बहु संयम हम बुद्ध मन जारियो रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो बिसारियो रे हीरा लाल अमोल जन्म है कौडी बदले हारियो रे रहाओ तृष्णा त्रिखा भूख भ्रम लागी हृदय नाए बिचारियो रे उन मत मान हिरियो मन माही गुर का शब्द ना।

देव गौड़ी अगन ना दह पवन नहीं मगन कस कर नीर ना आवे राम नाम धन कर संचौनी सो धन कत ही ना जावे हमरा धन माधो गोविंद धरनी धर यह सार धन कही है जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा सो सुख राज ना लही है रहाओ इस धन कारण शिव सन कादिक खोजत भय उदासी मन मुकंद जिहवा नारायण परे ना जम की फासी निज धन ज्ञान भगत गुरदीनी तास समत मन लागा जलत अंब थंब मन धावत परम बंधन पहु भागा कह कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी तुम कर लाख कोट असव हसती हम कर एक मुरारी गौड़ी ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की लुभद ना त्याग दयो जो जो कर्म किए लालच स्यो ते फिर ग्रह परयो भगत बिन बिरथे जन्म गयो साध संगत भगवान भजन बिन कहीं ना सच रहे ओ रहाओ ज्यों उद्यान कुसम पर फुल्लत किन्ह ना कराओ लयो तैसे भ्रमत अनेक जोन मह फिर काल हयो या धन जोगन अर सुत दारा देखन कौ जो दयो तिन्ही माहे अटक जो उर्जे इंद्री परेर लयो औद अनल तन तिनको मंदर चहु दिस ठाट ठयो कह कबीर पै सागर तरन को मैं सतगुर ओट लयो गौड़ी।

तन तन सब रस गोविंद तोरा रहाउ। इस माटी मह पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया। किन्हू लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी। कह कबीर एक नीम उसारी, किन मह बिन सजाए अहंकारी। गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। दीन दयाल परोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाउ। जा तिस भावै ता हुक्म मनावै, इस बेड़े को पार लंघावै। गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चूक गई फिर आमन जानी। कहो कबीर भज सारग पानी, उरवार पार सब एको दानी। गौड़ी नौवां जोन छाड़ जो जग मह आयो, लागत पवन खसम बिसरायो। जियरा हर के गुना गाओ रहाओ, गर्भ जोन मह उर्द तप करता। तौ जठर अगन मह रहता, लख चौरासी जोन भ्रम आयो। अब के छुटके ठौर ना ठायो, कहो कबीर भज सारग पानी। आवत दिसै जात ना जानी, गौड़ी पूर्वी सुर्ग बास ना बांछी। दरिया ना नरक निवास, होना है सो होई है। मन है ना की जय आस, रमैया गुण गाइय जाते पाइय परम निदान। रहाउ क्या जप क्या तप संजमो, क्या वर्त क्या स्नान। जब लग जुगत ना जानिए, भाओ भगत भगवान। संपै देख ना हरखिए, विपत देख ना रोए। ज्यों संपै त्यों विपत है, विद ने रतिया सो होए। कह कबीर अब जानिया, संतन हृदय मझार। सेवक सो सेवा भले, जेह घट बसै मरार। गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं, खिंच ले जिन पार।

पद कारण हर की भगत करी जय एक आधार नाम नारायण हरस नाराम रवि जय राग गौड़ी ग्यारवा आस पास घन तुरसी का बिरवा माज बना रस गाऊं रे वाका स्वरूप देख मोही ग्वारन मोको छोड़ ना आऊ ना जाहू रे तो हे चरण मन लागो सारंग धर सो मिले जो बड़ भागो रहाउ बिंद्राबन मन हरन मनोहर कृष्ण चरावत गाऊ रे जाका ठाकुर तुही सारिंग धर मोहे।

साधु परम प्रगट हुए नाचो हो या माया के डांडे सूर के सन्मुख रन ते डरपे सती के सांचे पांडे डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सिद्ध पाई है लीनो हाथ संदौरा रहाओ काम क्रोध माया के लीने या

नाम पदार्थ मन बसाइए हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपरे निंदक धोए निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माहे हमारा चीत निंदक सो जो निंदा हो रे हमरा जीवन निंदक लो रे निंदा हमरी प्रेम प्यार निंदा हमरा करे उदार जान कबीर को निंदा सार निंदक डूबा हम उतरे पार राजा राम तू ऐसा निरपहु तरन तारन राम राया रहाओ जब हम होते तब तुम नाही अब तुम हो हम नाही अब हम तुम एक भये है एक देखत मन पति आही जब बुद्ध होती तब बल कैसा अब बुद्ध बल ना खटाई कह कबीर बुद्ध हर ली मेरी बुद्ध बदली सिद्ध पाई गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बांधी बस्त अनूप बीच पाई कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे करते बार ना लाई अब मन जागत रहो रे पाई गाफल होए कै जन्म गवायो चोर मुस्से घर जाई रहाओ पंच पहरुआ दर मह रहते तिनका नहीं पतियारा चेत सुचेत चेत हुए रहो तव लै परगास उजारा नौ कर देख जो कामन भूली बस्त अनूप ना।

जास गुण गाव है तास बस है मूरी प्राणा न रहाउ हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मित गगन मंडल में त्या नाना विखै रोग पै बंधन भागी मन निज कर सुख जा नाना एक समत रत जान मान प्रभ दूसर मन है ना आनाना चंदन बास पये मन बासन त्याग घटियो अभमान हाना जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है था नाना तेहे बड भाग बस्यो मन जाकै कर्म प्रधान मथा नाना काट सकत शिव सहज परगासियो।

बावन अक्षर लोक त्रै सब कछ इन ही माहे ये अखर खिर जाहिंगे ओए अखर इन मह नाहे जहां बोल तह अक्षर आवा जह अबोल तह मन ना रहावा बोल अबोल मद है सोई जस ओह है तस लख ना कोई लह लहू तो क्या कहूं कहूं ता को पकार बटक बीज में रब रहे हो जाको तीन लोक बिस्थार अलह लहंता भेद शै कश कश पायो भेद उल्ट भेद मन बेदेओ पायो अपंग अशेद तुरक तरीकत जा

आद मैं जाना लिख अर मिटै ताहि न माना ओंकार लखै जो कोई सोई लख मिटना ना होई कक्का किरण कमल मह पावा सस बगास संपट नहीं आवा हर जी तहां कुसम रस पावा कह कहां कह का समझावा खखा एह खोड़ मन आवा खोड़े छाड़ ना दह दिस तावा खसमह जान खिमा कर रह तो हुए निखियो अखै।

यह है शत्रपत पासा शाक के ना रहो छाद के ना आसा रे मन मैं तो सिन सिन समझावा ताहे शाद कत आप बंधावा जज्जा जो

परवाना। कत झख झख और न समझावा, झगर किए झगरो ही पावा। नया निकट सो घट रहे हो, दूर कहां तज जाए। जां कारण जग ढूंढ्यो, नेरो पायो ताहे। तटा बिकट घाट घट माही, खोल कपाट महल के ना जाही।

अर्दह उर्दह मंज बसेरा, अर्दह चाड उर्द जो आवा, तो अर्दह उर्द मिलिया सुख पावा। नन्ना निस दिन निरखत जाई, निरखत नैन रही रतवाई। निरखत निरखत जब जाए पावा, तबले निरख है निरख मलावा। पप्पा अपार पार नहीं पावा, परम ज्योत स्यों परचो लावा। पांचो इंद्री निग्रह करी, पाप पुन दो निर्वरी। फफा बिन फूलह फल हुई,

पावा, बिंद है बिंद ना बिचरन पावा, बंदो होए बंदगी गह, बंदक होए बंद सुदल है, पब्बा भेद है भेद मलावा, अब पवो पान परोसो आवा, जो बाहर सो पीतर जानिया, पया भेद पूपत पहचानिया, मम्मा मूल गहया मन माने, मरमी हुए सो मन को जाने, मत कोई मन मिलता बिल मावे, मगन पयाते सो सच पावे, मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों कह कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई, एहो मन शक्ति एहो मन सियो, एहो मन पंच तत् को जियो, एहो मन ले जो उन मन रह, तो तीन लोक की बातें कह, जैया जो जान तो दुर्मत, हन कर बस काया गाँव, रण रूतो भाजे नहीं, सूरो थारो नाव, रारा रस निरस कर जानिया, होए नरस सो रस पहचानिया, एह रस छाडे ओह रस आवा, ओह रस पिया एह रस नहीं पावा, लल्ला ऐसे लिव मन लावे, अंत न जाए।

एहो अर ओहो जब मिले तब मिलत ना जाने कोई। सत्सा सो नीका कर सुध हो घट परचा की बात नरुद्ध हो। घट परचै जो उपजै पाओ पूर रहया तह त्रे पौन राओ। खखा खोज परै जो कोई जो खोजै सो बहुर ना होई। खोज बूझ जो करै बिचारा तो भव जल तरत ना लावै बारा। सत्सा सो सह सेज सवारै सोई सही संदेह निवारै। अल्प सुख छाड परम सुख पावा तब एह त्री ओह कंत कहावा। हा हा होत हुए नहीं जाना जब ही हुए तबह मन माना। है तो सही लख जो कोई तब ओही ओह एहो ना होई। न्यो न्यो करत।

काटता जाए। अकुल निरंजन एक पाय, तृतीया तीने सम कर लियावे, आनंद मूल परम पद पावे, साध संगत उपजे विश्वास, बाहर भीतर सदा परगास। चौथ है चंचल मन को गहो, काम क्रोध संग कबहु ना बहो।

हर प्रेम सुधा रस पीवै कोए, जरा मरण दुख फेर ना होए। छठ खट चक्कर शहु दिस धाय, बिन परचै नहीं थिरा रहाय। दुबदा मेट खिमा गह रहो, कर्म धर्म की सूल ना सहो।

एकादशी एक दिस तावै तो जोनी संकट बहुर ना आवै शीतल निर्मल भया शरीरा दूर बतावत पाया नीरा बारस बारह उगवै सूर एनस बाजे अनहद तूर देखिया तिहू लोक का पियो अचरज भया जीव ते सियो तेरस तेरह अगम्ब खान अर्ध उर्द विच सम पहचान नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान चौदस चौदह लोक मजार रोम रोम मह बसह मरार सत संतोख का धरहु ध्यान कथनी कथिया ब्रह्म ज्ञान पुण्यो पूरा चंद आकाश पसरह कला सहज परगास आदि अंत मद होए रहे आथीर सुख सागर में।

रीत पंच चोर की जाने रीत कर छोड़े बाहर जिन जाई नातर खरार सहराय बुधवार बुध करे प्रगास हृदय कमल मह हर का बास गुर मिल दो एक सम धरै उर्द पंकल।

माहि हैनस कसमल तो वह नाहि सो किरत सहारै सो एह ब्रत चढ़ै अन दिन आप आप स्यो लड़ै सुरखी पांचो राखै सबै तो दूजी दृष्ट ना पैसै कवै थावर थिर कर राखै सोए जोत दी वटी घट मह जोए बाहर भीतर भया प्रगास तब हुआ सगल कर्म का नास जब लग घट मह दूजी आन तौ लो महल न लाभ जान रमत राम।

योगी एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवा पाहन तारियले राम कहत जन कस ना तरे रहाउ तारी ले गनका बिन रूप कुबजा ब्याज अजामल तारियले करन बदक जन तेउ मुक्त भये हौ बाल बाल जिन राम कहे दासी सुत जन बिदर सुदामा उगर सैन कौ राज दिए जापहीन तापहीन कुलहीन क्रमहीन नामे के स्वामी तेउ तरे राग गौड़ी रवदास जी के पदे गौड़ी गुआर रि एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भांति।

प्रसाद कूप भरियो जैसे दादरा कस देश बदेश ना बूझ ऐसे मेरा मन बिख्या बमोहया कश आरा पार ना सूझ सगल भवन के नायका एक छिन दर्श

मोसौ को न कह समझाय, जाते आवागमन बिलाय रहाउ। बहु विद धर्म निरूपी है, करता दिसै सब लोए, कवन कर्म ते छूटी है, जेह साजे सब सिद्ध होए। कर्म अकर्म बिचारी है, संका सुन वेद पुराण, संसा सद हिरदय बसै, कौन हिरै अभमान। बाहर उदक पखारी है, घट भीतर बेबिद बेकार, शुद्ध कवन पर्व होए वो, सोच कुंचर बिद व्यवहार। रब प्रगास रजनी जथागत, जानत सब संसार, पारस मानो तांबो छुए, कनक होत नहीं बार। परम परस गुर भेटी है, पूर्व लिखत लेलाट, हुन मन मन मन ही मिले, छुटकत बजर कपाट। भगत जुगत मत सत करी, भ्रम बंधन काट बेकार, सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक बेचार। अनक जतन निग्रह।

निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज वडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर ना जा।

वह तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावे है हर त्यावे है तुझ जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की पासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जियो तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जो

होर नचना खुशियां मन माह रहाउ। सत संतोख वजह दोए ताल, पैरी वाजा सदा निहाल। राग नाद नहीं दूजा पाउ, इतरंग नाचो हो रख रख पाउ।

कहिए सर्ब निरंतर रव रहिया नाल कटंब साथ वरदाता ब्रह्मा पालन सिष्ट गया आग्या अंत न पायो ताका कंस छेद क्या बड़ा भया रतन उपाय तरे खीर मथिया होर पखलाए जे असी किया कह नानक छपै क्यों छपया एकी एकी वंड दिया आसा महला पहला कर्म करतूत बेल बिस्थारी राम नाम फल हुआ तिस रूप नारेख अनाहद वाजै शब्द निरंजन।

तेरा देखिया सगल भवन तेरी माया हरारे रूप नरालम बैठा नदर करे विच छाया बिना शब्द वजावे जोगी दर्शन रूप अपारा शब्द अनाहद सो सहोराता

याद जब लग हृदय न आवह जाद तौ प्रवाह के ही क्या कीजै जन्म जन्म किस लीजी लीजै रहाओ मन की मत मता गल मता जो किश बोलिए सब खतो खता क्या मुँह लै की चै अरदास पाप पुन दोए साखी पास जैसा तू करह तैसा को होए तुझ बिन दूजा नाही कोए जे ही तू मत देह ते ही को पावे तुद आपे पावे तिवै चलावे राग रतन परिया परवार तिस विच उपजै अमृत सार नानक करते का इहो धन माल जे को बूजै इहो विचार आसा महला पहला कर कृपा अपने घर आया।

अंग हर जियो राखो अपनी सरनाई गुर प्रसादी हर रस पाया नाम पदार्थ नौ निद पाई रहाउ कर्म धर्म सच साचा नाउ तां कै सद बलिहारे जाऊ जो हर राते से जन परवान तिनकी संगत परम निदान हर वार जिन पाया धन नारी।

जात पात सच नाव कर्म धर्म संयम सत भाव नानक बख्शे पूछ ना होए दूजा मेटे एको सो होए आसा महला पहला एक आव है एक जाव है आई एक हर राते रह समाई एक धर्म गगन में ठौर ना पाव है से कर्म हीन हर नाम ना त्याव है गुरपूरे ते गत मित पाई एहो संसार बेख वत अत भौजल

अठसठ मज्जन हर शरीद गुरमुख निर्मल मैल न लागे नानक हिरदय नाम वड्डी तुर भागे आसा महला पहला निव निव पाई लगो गुरे अपने आत्म राम निहारिया करत बिचार हिरदय हर रविया हिरदय देख बिचारिया बोलो राम करे निस्तारा गुर प्रसाद रतन हर लाभ है मिटे अज्ञान हुए उजियारा रहाउ रवनी रवे बंधन नहीं टूटे है विच हों मैं भरम ना जाई सतगुर मिले ता हों मैं टूटे ता को लेखे पाई हर हर नाम भगत प्रिय प्रीतम सुख सागर उर तारे भगत वछल जग जीवन दाता मत गुरमत हर निस्तारे मन स्यों जूझ मरै प्रभ पाए मनसा मन है समाए नानक कृपा करी जग जीवन सहज भाई लिवलाय आसा महला पहला किसको कह सुनाव है किसको किस समझाव है समझ रहे किसे पढ़ाव है पढ़ गुण बूझे सतगुर शब्द संतोख रहे ऐसा गुरमत रमत शरीरा हर भज मेरे मन गहर गंभीरा रहाउ अनत तरंग भगत हर रंगा अनदिन सूचे हर गुण संगा मिथ्या जन्म साकत संसारा राम भगत जन रह निरारा सूची काया हर गुण गाया आत्म चीन रह लिवलाया आद अपार अपर

कह जाओ। नानक एक कह अरदास, जियो पिंड सब तेरे पास। जा तू देह जपी तेरा नाव, दरगाह बैसण होए थाव। जा तुद भावे ता दुरमत जाए, ज्ञान रतन मन वसै आए। नदर करे ता सतगुर मिले, प्रणवत नानक भवजल तरे। आसा महला पहला पंचपदी, दुध बिन तीन पंख बिन पंखी। जल बिन उत्पुज काम नाही, क्या सुल्तान सलाम विहूना। अंधी कोठी तेरा नाम नाही, की विसर है दुख बहुता लागे। दुख लागे तू विसर नाही, रहाउ अखी अंध जीव रस नाही। कन्नी पवन ना वाजे, चरनी चले पजूता आगे। बिन सेवा फल लागे, अखर बिरख बाग भोए चोखी।

आक तू ही आसाम हल्ला पहला ताया ब्रह्मा मन है तूती ज्ञान जनेऊ ध्यान कुस पाती हर नामा जस जाचू नाऊ गुर प्रसादी ब्रह्म समाओ पांडे ऐसा ब्रह्म विचार नामे सोच नामो पढ़ो नामे चज आचार रहाओ बाहर जनेऊ जिचर जोत है नाल धोती टिक्का नाम संभाल एथे उथे लिभही नाल बिन नावे होर कर्म ना पाल पूजा प्रेम माया पर जाल एको वेखो अवरना पाल चीने तत गगन दस द्वार हर मुख पाठ पढ़े बीचार भोजन पाओ परम पाओ भागे पहरुअरा शब चोर ना लागे।

नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाया आसा महला पहला सेवक दास भगत जन सोई ठाकुर का दास गुरमुख होई जिन सिर साजी तिन फुन गोई तिस बिन दूजा अवर ना।

तो प्रगट जाय। सच निशान है ठाक न पाय, पंडित पढ़े बखान है वेद, अंतर वसत न जान है भेद, गुरबिन सोजी बूझ ना हुए, साचा रव रहिया प्रभ सोय। क्या हौ आखा आख बखानी, तू आपे जान है सर्ब वडाणी, नानक एको दर दीवान, गुरमुख साच तहां गुदरान। आसा महला पहला, काची गागर देहे दोहेली, उपजै बिरसै दुख पाई, इहो जग सागर दुत्तर क्यों तरियै, बिन हर गुर पार न पाई। तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे, तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सर्बी रंगी रूपी तू है, जिस बख्शे जिस नदर करे रहाओ। सास बुरी घर वास ना देवै, फिर स्यों मिलन ना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेमो, हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया, तुम सा मीत ना अवर कोई, ज्यों तू राख है तिव ही रहना, दुख सुख देव है करह सोई। आसा मनसा धूब नासक, त्रिहो गुण आसम रास पई, तुरी अवस्था गुरमुख पाई है, संत सभा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप, जिस हर हिरदय अलख अपेवा, नानक राम नाम मन राता, गुरमत पाई सहज सेवा। आसा महला पहला पंच पदी।

सच नाम जा नव निध पाई रोवै पूत न कलपै माई एत मोहे डूबा संसार गुरमुख कोई उतरै पार एत मोहे फिर जूनी पाहे मोहे लागा जम पुर जाहे गुर दीखिया ले जप तप कमाहे ना मोह टूटै ना थाए पाहे नदर करे ता एहो मोह जाए नानक हर स्यों रहै समाए आसा महला पहला आप करे सच अलख अपार हों पापी तू बख्शन हार तेरा भाणा सब किछ होवै मन हथ कीचै अंत वगोवै रहाउ मन मुख की मत कूड़ व्यापी बिन हर सिमरन पाप संतापी दुर्मत त्याग लाहा किछ लेवो जो उपजै सो अलख अपेवो ऐसा हमरा सखा सहाई गुर हर मिलिया भगत दिरड़ाई सगली सौदी टोटा आवै नानक राम नाम मन भावै आसा महला पहला चौपदे विद्या विचारी ता पर उपकारी जा पंच रासी ता तीर्थवासी घुंगरू वाजै जे मन लागै

रहाउ धर कर महला हस्ती घोड़े छोड़ वलायत देश गए पीर पेकांबर सालक सादिक छोड़ी दुनिया थाए पए साध सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमण लिए दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेश पए खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत धोती कीनी तू साहिब हो सांगी तेरा प्रणवै नानक जात कैसी आसा घर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद पीतर पंच गुप्त मन वासी थिर ना रह जैसे भव है उदासी मन मेरा दयाल सेती थिर ना रह लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाउ फूल माला गल पहरूंगी हारू मिलेगा प्रीतम तब करूंगी शिंगारू पंच सखी हम एक पतारू पेड़ लगी है जियड़ा चालन हारू पंच सखी मिल

कराया, तिस क्या कहिए भाई, जो किस करना सो कर रहया, कीते क्या चतराई, तेरा हुक्म भला तुद भावे, नानक ताको मिले वडाई, साचे नाम समावे रहाव, किरत पया परवाना लिखिया, बहुड़ हुक्म ना होई, जैसा लिखिया तैसा पढ़िया, मेट ना सके कोई, जे को दरगाह बहुता बोले, नाव पवे बाजारी, सतरंज

सदा सुख होए, गुर कै दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार साधार, नुगुरे को गत काई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाही, गुर कै शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुखता को लगै ना पीर, जम काल किस नेड़ ना आवै, नानक गुरमुख साच समावै, आसा महला तीजा, शब्द मुआ विचों आप गवाए, सतगुर सेवे तिल ना तमाए, निरपहु दाता सदा मन हुए, सच्ची बाणी पाए भाग कोए।

हर की कीमत किन बिद होए, हर अपरंपर अगम अगोचर, गुर कै शब्द मिले जन कोए रहाओ, गुरमुख कीमत जाने कोए, विरले कर्म प्राप्त होए, ऊंची बाणी ऊंचा होए, गुरमुख शब्द बखाने कोए, विण नावे दुख दर्द शरीर, सतगुर भेटे ता उतरे पीर, बिन गुर भेटे दुख कमाए, मनमुख बहुती मिले सजाए, हर का नाम मीठा अतरस होए, पीवत रह पियाए सोए, गुर कृपा ते हर रस पाए, नानक नाम रते गत पाए, आसा महला तीजा, मेरा प्रभ साचा गहर गंभीर, सेवत ही सुख शांत शरीर, शब्द तरे जन सहज सुपाए, इनकै हम सद लाग पाए, जो मन राते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगहा मिले सुपाए रहाओ, शब्द चाखै साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभ सदा रहया भरपूर, आपे नेड़ आपे दूर, आखण आखै बकै सब कोए, आपे बख्श मलाए सोए, कहने कथन ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, गुरमुख विचों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सुवारन हार, आसा महला तीजा, दूजै पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरता जन्म गवाया, सतगुर सेवै सोजी।

सुख पाई, संत संगत मेल हर गुण गाय, नामी नाम करे विचार, आप तरह कुल उधरन हार, गुर की बाणी नाम वजाय, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गुआया, आसा महला तीजा, मनमुख मर है मर मरन बगाड़ है, दूजे भाए आत्म संघार है, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म ना चीन है पर मैं विच सूता, मर मुया शब्दे मर जाए, उस्तत निंदा गुर समझण आई, इस युग में है लाहा हर जप लै जाए, रहाउ नाम मिहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लो भाई, नाम मिहूनी दुख जलै सबाई, सतगुर पूरै बूझ बुझाई, मन चंचल बहु चोटा खाए, इथों छुड़किया खौर ना पाए, गर्भ जोन विस्टा का वास, तित घर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मलाई, निर्मल बाणी निज घर वासा, नानक हों मैं मारी सदा उदासा, आसा महला तीजा, लाले अपनी जात गुआई।

सोग हरक दोए सम कर जाने, गुर प्रसादी शब्द उधर रहाउ, करनी कार तुरों फरमाई, बिन शब्द को थाए ना पाई, करनी कीर्त नाम वसाई, आपे देवे ढिल ना पाई, मनमुख परम भुले संसार, बिन रासी कूड़ा करे व्यापार, बिन रासी वखर पल्ले ना पाई, मनमुख भुला जन्म गवाई।

कार रहाउ सदा सुहागण जो प्रभ पावे गुर शब्दी सिंगार बनावे सेज सुखाली अन दिन हरदावे मिल प्रीतम सदा सुख पावे सा सुहागण साची जिस साच प्यार अपना पिर राखे सदा उर धार नेड़े वेखे सदा हदूर।

पहचान गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार गुर का शब्द सहज विचार गुरमुख भगत जुगत सच सोए पाखंड भगत निरत दुख होए एहा भगत जन जीवत मरे गुर प्रसादी भवजल तरे गुर कै बचन भगत थाए पाए हर जीव आप वसै मन आए हर कृपा करे सतगुरु मलाए निश्चल भगत हर सियो चित लाए भगत रते पिन सच्ची सोए नानक नाम रते सुख होए आसा घर अठवां काफी महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर कै भाणे सतगुर मिले सच सोजी होई गुर प्रसादी मन वसै हर बूझै सोई मैं सहो दाता एक है अवर नाही कोई गुर कृपा ते मन वसै ता सदा सुख होई रहाउ इस युग में निरपो हर नाम है पाईऐ गुर विचार बिन नामै जम कै वस है मन मुख अंध गुआर हर कै भाणै जन सेवा करै बूझै सच सोई हर कै भाणै सलाहियै भाणै मन्नै सुख होई हर कै भाणै जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई नानक नाम सलाहे तू गुरमुख गत होई आस

जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा घर दूजा महला चौथा। किस ही धड़ा किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही धड़ा किया कुर्म सके नाल जवाई। किस ही धड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुआई। हमारा धड़ा हर रहया समाई, हम हर स्यो धड़ा किया मेरी हर टेक। मैं हर बिन पख धड़ा अवर न कोई, हौ हर गुण गावा असंख अनेक। रहाव जिन स्यो धड़े करह से जाहे, झूठ धड़े कर पछोताहे। थिर न रह मन खोट कमाहे, हम हर स्यो धड़ा किया जिसका कोई समर्थ नाहे। यह सब धड़े माया मोह पसारी, माया को लूजह गवारी। जन्म मरह जुए बाजी हारी, हमरे हर धड़ा जे हलत पलत सब सुवारी। कलयुग मह धड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभमान वधाए। जिसनो कृपा करे तिस सतसंग मलाए। हमरा हर धड़ा जिन एह धड़े सब गवाए, मिथ्या दूजा पाओ धड़े बह पावे। प्राया सिदर अटकले अपना अहंकार वधावे, जैसा बीजे तैसा खावे। जन नानक का हर धड़ा, धर्म सब सृष्ट जिन आवे। आसा महला चौथा, हृदय सुन सुन मन अमृत पाया।

वैराग सतगुरु पुरख पाया वड भाग दूजे पाए भवह बिख माया भागहीन नहीं सतगुरु पाया अमृत हर रस हर आप पी आया गुरपूरे नानक हर पाया आसा महला चौथा मेरे मन तन प्रेम नाम आधार

माया मल धारी विण गुण जन्म मुए अहंकारी शरीर सरोवर गुण प्रगट किए नानक गुरमुख मत तत कढ़िए।

ओ गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं धर नहीं काई, नाम रविया सब सास ग्रासा रहाउ, नामै सुरत सुनी मन पाई, जो नाम सुनावे सो मेरा मीत सखाई, नाम हीन गए मूड नंगा, पच पच मुए बिख देख पतंगा, आपे थापे थाप उथापे, नानक नाम देवै हर आपे, आसा महला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई, हल लागे हर रस करसाई, हर हर नाम जप अनत तरंगा, जप जप नाम गुरमत सालाही, मारिया काल जम कंकर भुयंगा रहाउ, हर हर गुरमह भगत रखाई, गुर तुट

कंधा, सबने फल कर्म किए दुख तंदा, हर हर हर जस जपै वड भागी, नानक गुरमत नाम लिव लागी, एक ओंकार।

गुरमत हर गुण बोलो जोगी एह मनुआ हर रंग पेन जोगी हर देहो मती उपदेश जुग जुग हर हर एको वरतै तिस आगै हम आदेश रहाउ गाव है राग भांत बहु बोल है एह मनुआ खेलै खेल जो वह कूप सिंचन को बसधा उठ बैल गए चर बेल काया नगर मह कर्म हर बोव हो हर जामै हरिया खेत मनुआ अस्थर बैल मन जोव हो हर सिंचो हो गुरमत जेत जोगी जंगम सिष्ट सब तुमरी जो देहो मती तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी हर लाभ मनुआ पेल आसा महला चौथा कब को पालै घुंगरू ताला कब को बजावै रबाब आवत जात बार खिन लागै हम तब लग समारो नाम मेरा मन ऐसी भगत बन आई हम हर बिन खिन पल रह ना सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रहा कब को मेले पंच सत गायन कब को राग धुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे तब लग मेरा मन राम गुण गावे कब को नाचे पाम पसारे कब को हाथ पसारे हाथ पाम पसारत बिलम तिल लागे तब लग मेरा मन राम समारे कब को लोगन को पते आवे लोक पतीने ना पत होए जन नानक हर हिरदय सद त्याव हो ता जय जय करे सब कोई आसा महला चौथा सत संगत मिली है हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया घट चानन अज्ञान अंधेरा जाए हर जन नाचो हो हर हर त्याई ऐसे संत मिले है मेरे पाई हम जन के धोवे है पाए रहाओ हर हर नाम जपो हो मन मेरे अन दिन हर निब लाए जो इच्छो हो सोई फल पाव हो फिर भूख ना लागे आए आपे हर अपरंपर करता हर आपे बोल बुलाए से संत भले तुद भावे है जिनकी पत पावे है थाए नानक आख नाराजे हर गुण ज्यों आख है त्यों सुख पाए भगत पंडार दिए हर अपने गुण गाहक वणज लै जाए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर अठवां की काफी महला चौथा आया मन तुराहो हूं मैं रोई है गुरमुख नाम त्याए अस्थिर हुई है गुरपुरे साबास चलन जानिया लाहा नाम सो सार शब्द समाणिया रहाओ पूर्व लिखे देहे से आए माया चलन अज के कल तुरो फुरमाया बिरथा जन्म तिना जिनी नाम वसारिया जुए खेलन जग के इहो मन हारिया जीवन मरण सुख होए जिन्ना गुर पाया नानक सच्चे सच सच समाया आसा महला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम त्याया गुर प्रसादी भुज सच समाया जिन तुर लिखिया लेख तिनी नाम कमाया दर सच्चे सत्यार महल बुलाया रहाउ अंतर नाम निदान गुरमुख पाई है अन दिन नाम त्याए हर गुण गाई है।

मान हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद नानक सिमरत हर हर भगवान सावरी महला चौथा माई मोरो प्रीतम राम बताव होरी माई कौ हर बिन खिन पल रह ना सकूं जैसे कर हर बेल रिझाई रहाउ हमरा मन बैराग बिरकत भयो हर दर्शन मीत कैताई जैसे अल कमला बिन रह ना सकै तैसे मोहे हर बिन रहन ना जाई राख शरण जगदी सुर प्यारी मोहे शरदा पूर हर गुसाई जन नानक कै मन आनंद होत है हर दर्शन निमक दिखाई।

समाने तुरिया गुण मिल साध पछाने सहज गुफा में आसन बांधिया जोत स्वरूप अनाहद वाजिया महा आनंद गुर शब्द विचार प्रिय सो राती धन सुहागण।

कर सेवा सतपुरख मनाया गुरयाणी घर मह ता सर्ब सुख पाया बत्ती ही सलखणी सच संतत पूत आज्ञाकारी सुगड़ स्वरूप इच पूरे मन

यतन करूं पुरजाई परे वै रहाव तुरकी भेजी आई अमर नौ खंड जीते सब थान तनंतर तट तीर्थ ना छोड़ै जोग सन्यास पढ़ थाके सिमरत वेद अभ्यास जह बैसू कह नाले बैसै सगल भवन मह।

साधुए मनुख पहचावो। तृतीय मता किस करूं उपाया, मैं सब किस छोड़ प्रभ तुही ते आया। महा आनंद अचिंत सह जाया।

आया, वस्त अनूप सुनी लाभाया, गुण रास बन पल्ले आनी, देख रतन इहु मन लपटानी, सहा व्यापारी द्वारे आए,

आरास विष्ट सुपाई पाया मीत सौदा मिलिया निश्चल चीत पौ नहीं तस्कर पौन ना पानी सहज व्याजी सहज लै जानी सत कै खटिया दुख नहीं पाया सही सलामत।

माना कर मस्तक धार राखियो कर अपना क्या जान है एह लोग अजाना रहाव सुहाग हमारो अब हुन सोहयो कंत मिलियो मेरो सब दुख जोहयो आंगन मेरा सुबा चंद निसबासर प्रिय संग आनंद वस्त्र हमारे रंग चलूल सगल आभरण शोभा कंठ फूल प्रिय पेखी दृष्ट पाए सगल निदान दुष्ट दूत की चूकी कान सद कुचियां सद

थिर सुहागण संग पतारी आसा महला पंजवा दान दे कर पूजा करना लैत देत उन्मुख कर परना।

ते मन निर्मल हर हर गुण गाय पये आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुर शब्दी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर शीतल मिलियो सहज सुपाए रहाओ धावत रहे एक एक बूझिया आए बसे अब निश्चल थाए जगत उदाहरण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दुख परे मेरे पाछे अब पकड़े।

पंजवा पंच पदे प्रथमे तेरी नीकी जात द्वितीया तेरी मनिय पांत तृतीया तेरा सुंदर थान बिगड़ रूप मन मह अभमान सोहनी स्वरूप सुजान विचखन

रहना, मुआ होए तिस निश्चल रहना, जीवत मोए मोए से जीवे, हर हर नाम अवखद मुख पाया, गुर शब्दी रस अमृत पीवे रहाओ, काची मटकी बिनस बनासा, जिस छूटे त्रिकुटी किस निज घर वासा, ऊंचा चढ़े सो पवे पयाला, तरन पड़े तिस लगे ना काला, प्रमत फिरे तिन किछु ना पाया, से अस्तर जिन गुर शब्द कमाया, जियो पिंड सब हर का माल, नानक गुरमिल भए निहाल, आसा महला पंजवा, पुत्री तेरी बिद कर थाटी, जान सत कर।

के चौपदे एक घड़ी दिन समो को बहुत दिहारी मन ना रह कैसे मिलो प्यारी एक पल दिन समो को कबहो ना बिहावे।

चहो जुगह समाने, रैन पई तब अंत ना जाने। पंच दूत मिल पिरो बिछोड़ी, ब्रह्म भ्रम रोवे हाथ पछोड़ी। जन नानक को हर दर्स दिखाया, आत्म चीन परम सुख पाया। हसा महला पंजवां, हर सेवा मह परम निदान। हर सेवा मुख अमृत नाम, हर मेरा साथी संग सखाई। दुख सुख सिमरी।

निदान अमृत सार सदे ही परपूरा रहाओ। चरण कमल हृदय अंतर तारे प्रगटी ज्योत मिले राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राई सुख रैन विहानी सहज सुपाई। आसा महला पंजवां कर कृपा हर प्रगटी आया मिल सतगुर धन पूरा पाया। ऐसा हर धन संची है भाई पाए न जल जल नहीं डूबे। संग छोड़ कर कतहु न जाई रहाओ तोट न आवे नखोट न जाई। खाए खर्च मन रहया अगाए सो सच साह जिस घर हर धन संचाना। इस धन ते सब जग वरसाना इन हर धन पाया जिस पुरब लिखे का लहना। जन नानक अंतवार नाम गहना आसा महला पंजवां जैसे किरसान बोवे किरसानी। काची पाकी बाड परानी जो जन्मै सो जानहु मुआ। गोविंद भगत अस्थर है किया रहाउ दिन ते सर पर पौसी रात। रैन गई फिर हुए प्रभात माया मोहे सोए रहे अपागे। गुर प्रसाद को विरला जागे कहो नानक गुण गाई है नीत। मुख उजल हुए निर्मल चीत आसा महला पंजवां नौ निद तेरह।

कह सद ही संगा कुदरत वरतै रूप अर रंगा करह ना चुरै ना मन रोवन हारा अवनासी अवगत अगोचर सदा सलामत खस।

त्यों कर प्रत पाला आसा महला पंजवा जी प्राण धन हर को नाम ईहा ऊहा उन संग काम बिन हर नाम अवर सब थोरा तृप्त अगावै हर दर्शन मन मोरा रहाओ भगत

प्रभ अवनासी घट घट चीन आसा महला पंजवा आनंद बनोद भरे पुर धारिया अपना कारज आप सुआरिया पूर समगरी पूरे ठाकुर की भरपुर धार रही सोभ जा।

गुर पूरी बणत बनाई, नानक भगत मिली वडियाई। आसा महला पंजवां, गुर कै शब्द बनावो।

रहाउ त्रिपत अगावन साचै नाय अठ सठ मज्जन संत पुराय सब मैं जानु करता एक साध संगत मिल बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभमान नानक को गुर दीनो दान आसा महला पंजवा बुद्ध परगास भई मत पूरी तांते बिनसी दुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई अले बूढ़त कोर अंधकूप में।

की, जिसे परापत किस ही देह, नानक चाख पय बिस्माद, नानक गुरते आया साध, ईट ऊत कत छोड़ ना जाए, नानक गीता हर रस माहे। आसा महला पंजवां, काम क्रोध लोभ मोह मिटावे, छुटकै दुरमत अपनी धारी, होए नमाणी सेव कमावह, ता प्रीतम होवह मन प्यारी, सुन सुंदर साधु बचन उधारी।

ही ब्योहारा आज्ञामान भगत हुए तुम्हारी जो यह मंत्र कमावे नानक सो पौ जल पार उतारी आसा महला पंजवा दो पदे पई प्राप्त मालुख देवरिया गोविंद मिण की यह तेरी बरिया अवर काज तेरे कितै ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग पवजल तरण कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाउ जप तप संयम धर्म ना कमाया।

आप सहाय गुण निदान नित गावै नानक सहसा दुख मटाई आसा महला पंजवां औखद खायो हर को नाउ सुख पाए दुख बिनसिया थाउ ताप गया बचन गुरपूरे आनंद पया सब मिटे वसूरे रहाउ जी जंत सगल सुख पाया पार ब्रह्म नानक मन त्याया आसा महला पंजवां बांसत नाही सो बेला आई बिन हुक्मै क्यों।

आए अतोली हर सिमरत नानक पई अमोली खासा महला पंजवा काम क्रोध माया मद मत सर ए खेलत सब जुए हारे सत संतोख दया धर्म सच एह अपने ग्रह भीतर वारे जन्म मरण चूके सब भारे मिलत संग भयो मन निर्मल

ग्रह मंदर महला जो दिसह ना कोई संगार। जब लग जीव है कली काल में जन नानक नाम समार। आसा घर तीजा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राज मिलख जोगन ग्रह सूबा रूपवंत जो आनी। बहुत दर्भ हस्ती अर घोड़े लाल लाख बै आनी। आगे दरगह काम ना आवै छोड़ चले अभमानी। काहे एक बिना चित लाइए उठत बै।

ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, अपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने, नांगा आया नांगो जासी।

0: कर कर डूबे खप खप मोए गवारा।
1: गुरमिल नानक नाम त्याया साच नाम निसतारा।
2: राग आसा घर पंजवां महला पंजवां,

रंग समाया आसा महला पंजवा जन्म जन्म की मल धोवै पराई अपना कीता पावै इहां सुख नहीं दरगाह ढोई जमपुर जाए पचावै निंदक अहला जन्म गवाया पहुँच ना साकै काहू बातै आगै ठौर न

बाहर कोए अंतर मन मैला दोए ठौरे अपने खोए इहां काम क्रोध मोहे व्यापिया आगे मुस मुस रोए। गोविंद भजन की मत है होरा बरमी मारी साफ ना मरी नाम ना सुनी डोरा रहाउ माया की किरत छोड़ गवाई भगती सार ना जाने वेद शास्त्र।

आया कूड़ कपट बंच निम नियादा बिनस गया तत्काली सत सत सत नानक कहया अपने हिरदय देख संभाले आसा महला पंजवा उदम करत हो ऐ मन निर्मल नाचै आप निवारी पंच जना ले वसगत राखै मन मह इकंकारी तेरा जन नृत करे गुण गावै रबाब पखावज ताल घुंगरू अनहद शब्द वज

नावे कर संग साधु चरण पखारे संत धूर तन लावे मन तन अर्प धरे गुर आगे सत पदार्थ पावे जो जो सुने पेखे लाए श्रद्धा तनका जन्म मरण दुख भागे।

आया रसक रसक बिगसानारी आसा महला पंजवा बंधन काट बसारे औगन अपना बिरद समारिया होए कृपाल मात पित न्याई बारक ज्यों प्रतपारिया गुरसिख राखे गुरु गोपाल काड लिए महापव जलते अपनी नदर निहाल रहाओ जां कै सिमरन जमते छुटिया हलत पलत सुख पाइय सास ग्रास जपो जप रसना नीत नीत गुण गाइय।

मुक्त पए अंधकूप महा कोरते बाहा पकर गुर काढ़ लिए निरपव पए सगल पव मिटिया राखे राख न हारे ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे कार्य

बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी ऐसो समरथ वर्णना साको ताकि उपमा जात ना कहोरी काजर कोठ मह पई ना कारी निर्मल वर्ण बनियोरी महामंत्र गुर हृदय बसियो अचर्ज नाम सुनियोरी कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भगत नानक सुख पाया।

पंजवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मोहे मिली हदूर चुका ले हो रहा सखी सहेरी परम गया गुर पिर संग मेरी रहाव निकट आन प्रिय सेज धरी कान कड़न ते छूट परी मंदर मेरा शब्द उजारा आनंद बनोदी खसम हमारा मस्तक भाग मैं फिर घर आया।

दीस आवत है बहुत भी हाला, सगल चरण की इहो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। आसा महला पंजवा, पावत रलिया जोबन बलिया। नाम बिना माटी संग रलिया, कान कुंडलिया बस्तर ओडलिया। सेज सुखलिया मन गर्बलिया, रहाव तलै कुंचरिया। सिर कनक छतरिया, हर भगत बिना ले धरन गडलिया। रूप सुंदरिया अनक इस्तरिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया। माया छलिया विकार बिखलिया, शरण नानक प्रभ पुरख दयालिया। आसा महला पंजवा, एक बगीचा पेड़ घन करिया। अमृत नाम तहां मह फलिया, ऐसा करहु विचार ज्ञानी। जाते पाईए पद निर्वाणी, आस पास बिखुआ के कुंता। बीच अमृत है भाई रे रहाव, सिंचन हारे एक माली। खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पतियां जनाई। सगली फूली निफल ना काई, अमृत फल ना।

अहंकार कर्म करत जी को जंजार प्रभ कृपा ते मन वस आया नानक गुरमुख तरी तिन माया साध संग हर की।

जा तू चित आवे सो नाम जपै जो जन तुद पावे रहाउ। तन मन शीतल जप नाम तेरा हर हर जपत तह दुख डेरा। हुक्म बूझै सोई परवान साच शब्द जाका निशान। गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया भणत नानक मेरा मन सुख पाया। आसा महला पंजवां जहां पठाव हो तह तह जाई।

काट जपीजै, गुर प्रसाद हर अमृत पीजै, दिन सरैन हर कीर्तन गाइयै, सो जन जम की वाट ना पाइयै, आठ पहर जिस विसरह नाही, गत होए नानक तिस लग पाई।

सतगुर अपना सद सदा मनावहु रहाउ। सतगुर का सच शब्द कमावहु, थिर कर बैठे प्रभ अपना पावहु, पर का बुरा ना।

कोई, सगल श्रेष्ठ उवां के चरण मल धोई। जो प्राणी काहू न आवत काम, संत प्रसाद ताको जपिए नाम। साध संग मन सो

होगा। तिस पेटे जिस तुर संयोग, मन आनंद मंत्र गुर दिया, तृष्ण बुझी मन निश्चल थिया, नाम पदार्थ नौ निद सिद्ध,

पये मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहा बिनस्यो मन का मूर्ख तीठा प्रभु का पाना लागा मीठा गुरपुरे के चरण गहे कोट जन्म के पाप लहे रतन जन्म एहो सफल पया कहो नानक प्रभ करी मया। आसा महला पंजवां सतगुरे अपना सद सदा संहारे गुर के चरण केस संग चारे जागरे मन जागन हारे बिन

आपे पेड़ बिसथारी साख, अपनी खेती आपे राख, जत कत पेखों एक ओही, घट

होया, आनंद रूप सब नैन अलोया, आसा महला पंजवा, मुक्त सियानप किशु ना जाना, दिन रैन तेरा नाम बखाना, मैं निर्गुण गुण नाही कोय, करन करावन हार प्रभ सोय, रहाओ मूर्ख मुग्ध अज्ञान अविचारी, नाम तेरे की आस मन धारी, जप तप संयम कर्म ना साधा, नाम प्रभु का मन है अरादा, किशु न जाना मत मेरी थोरी, बिनवत नानक।

संग जाए। आसा महला पंजवा, जिसका सब किस तिसका होए, तिस जन लेपना व्यापै कोए। हर का सेवक सद ही मुक्ता, जो किछ करै सोई भल जन कै। आत्म निर्मल दास की जुगता रहा, सगल त्याग हर सरणी आया। तिस जन कहां व्यापै माया, नाम निदान जाके मन माहे। तिसको चिंता सुपने नाहे, कहो नानक गुर पूरा पाया। परम मोह सगल बिनसाया, आसा महला पंजवा। जो सो प्रसन्न होयो प्रभ मेरा, ता दुख

हर जन छूटे सोए रहे माया मद माती जागत भगत सिमरत हर राती रहाउ मोह भरम बहु जोन पवाया अस्थिर भगत हर चरण त्याया बंधन अंध कूप ग्रह मेरा मुक्ते संत बुझ है हर नेरा कहो नानक जो प्रभ सरनाई इहां सुख आगे गत पाई।

जानी पोर पया बहोर पछतानी प्रिय प्रेम सहज मन आनंद तरहुरी प्रभ मिल बे की लालसा ताते आलस कहां करो री रहाओ कर्म है अमृत आन सारे खिसर गयो।

देख चलत मन भये दलासा, नानक दास तेरा परवासा, आसा महला पंजवा, अनदिन मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप मह खाए मठाई, सोचत साचत रहन बयानी, अनकरंग माया के चितवत, कबहू ना सिमरै सारंग पानी रहाव, द्रुम की छाया निश्चल ग्रह बांधिया, काल कै फांस सकत सर सांधिया, बालू किनारा तरंग मुख आया, सो थान मूड निश्चल।

उनके संग हम तुम संग मेल, उनके संग तुम सब को लोरे, उस बिना को मुख नहीं जोरे, ते बैरागी कहां समाए, तिस बिन तुही दोहे रीरी रहाओ, उनके संग तू ग्रह महमाहर, उनके संग तू हुई है जाहर, उनके संग तू रखी पपोल, उस बिना तू छुटकी रोल, उनके संग तेरा मान महत, उनके संग तुम साक जगत, उनके संग तेरी सब विद थाटी।

उस बंधन ना हम बांधे, ना उस धंधा ना हम तांधे, ना उस मैल ना हम कौ मैला, उस आनंद ता हम सद केला, ना उस सोच ना हम

गर्भ मोह तज हूं रेन, उनके संग देखो प्रभ नैन। निमक निमक एही आराधो, दिन सरहन ए सेवा साधो। भये कृपाल गोपाल गोबिंद, साध संग नानक बख्शिंद। आसा महला पंजवा, प्रभ की प्रीत सदा सुख होए, प्रभ की प्रीत दुख लगे ना।

प्रभु की प्रीत सद शोभावंत, प्रभु की प्रीत सब मिटि है चिंत, प्रभु की प्रीत एह भव जल तरै, प्रभु की प्रीत जमते नहीं डरै, प्रभु की प्रीत सगल उधार है, प्रभु की प्रीत चलै संगार है, आपो कोई मिले ना भूलै, जिस कृपाल तिस सार संग भूलै।

भूपत होए कै राज कमाया, कर कर अनर्थ बिहाजी माया। संचत संचत थैली कीनी, प्रभ उसते डार अवर को दीनी। काच गगरिया अंब मझरिया, गर्भ

संबाहा निकसिया फूक ता हुए गयो स्वाहा। ऊचे मंदर महल अररानी हस्त घोड़े जोड़े मन पानी वड परवार पूत अरतियां मोहे।

जिस खसम दयाल आसा मोहल्ला पंजवा इन स्यों प्रीत करी कान्हेरी जो मिली तो वदै वधेरी गल चमड़ी जो छोड़ नाही लाग छुट्टो सत।

बाट घाट ग्रह बन बन जो है, मन तन लागे होए कै मीठी, गुर प्रसाद में खोटी दीठी, अगरक उसके वड़े ठगाऊ, छोड़ह ना ही बाप ना माऊ, मेली अपने उनले बांधे, गुर कृपा ते मैं सगले साधे, अब मोरे मन भया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया, आसा महला पंजवा आठ पहर निकट कर जाने।

देहो रलाए नानक आए पए सरनाए आसा महला पंजवा आठ पहर उदक इशनानी सद ही भोग लगाए सुगयानी बिरथा काहू छोड़े नाही बहुर बहुर।

सब लिखते लेखा, भगत जना कहो दृष्ट ना पेखा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, वाजे ता कै अनहद तूरा, आसा महला पंजवा दुपदा एक, साधु संग सखायो नाम, सर्ब मनोरथ पूर्ण काम, बुझ गई तृष्णा हर जसै अगानी, जप जप जीवा सारग पानी, करन करावन सरन परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाउ, लाल जिवे हर भरे भंडार, तोट न आवै जप निरंकार, अमृत शब्द पीवै जा

सूख सहज मेरा धन सुहागा, कहो नानक मोरी पूरन आसा, सतगुर मेली प्रभ गुण तासा, आसा महला पंजवां, माथे त्रिकुटी दृष्ट क्रूर, बोले कौड़ा जिहवा की फूड, सदा भूखी पिर जाने दूर, ऐसी स्त्री एक राम अपाई, उन सब जग खाया, हम गुर राखे मेरे पाई रहाव, पाए ठगौली सब जग जोहया, ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया, गुरमुख नाम लगे से सोहया, वर्त नेम कर थाके पनह चरना, तट तीरथ पवे सब धरना, से उबरे जे

वहां पकर हम राखा आसा मोहल्ला पंजवा सर्व दुख जब बिसरह स्वामी इहा उहा कामना प्राणी संत तृपता से हर हर त्याए कर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख प्रव तुमरी रजाए रहाओ संग होवत को जानत दूर सो जन मरता नित नित चूर जिन सब किस दिया तिस चितवत नाही।

नाम जपत मन तन सब हरिया, कलमल दुख सगल पर हरिया, सोई दिवस भला मेरे भाई, हर गुण गाए परम गत पाई। रहाउ साध जना के पूजे पैर, मिटे अपद्रह मन ते बैर, गुरपूरे मिल झगर चुकाया, पंच दूत सब वस गत आया, जिस मन वस्या हर का नाम, नानक तिस ऊपर कुर्बान, आसा मोहल्ला पंजवा, गावले तू गावन हारे, जी पिंड के प्राण आधारे, जाकी सेवा सर्व सुख पाव है, अवर काहू पह बहुड़ ना जाव है, सदा आनंद आनंदी साहिब, गुण निधान नित नित जापी है, बलिहारी तिस संत प्यारी, जिस प्रसाद प्रभ मन वासी है। रहाउ जाका दान न खूटे नाही, पली भांत सब सहज समाही, जाकी बख्श न मेटे कोई, मन वासाई है साचा सोई, सगल समग्री ग्रह जाकै पूरन, प्रभ के सेवक दुख ना चूरन, ओट गहे निरभउ पद पाई, सास सास सो गुण निद गाई है, दूर ना होई कतहूं जाई है, नदर करे ता हर हर पाई है, अरदास करी पूरे गुर पास, नानक मंगे हर धन रास। आसा महला पंजवा, प्रथमे मिटिया तन का दुख, मन सगल को हुआ सुख, कर कृपा गुर दीनो नाव, बल बल तिस सतगुर को जाओ, गुरपूरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख बनासे, सतगुर की शरणाई रहाओ, गुर के चरण हृदय वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए, अगन बुझी

बंदन काठ सेवक कर राखे अमृत बानी रसना चाखे वड्डे भाग पूज गुर चरना सगल त्याग पाई प्रभ सरना गुर नानक जाको भया दयाला।

गुरबाणी सखी आनंद गावे साचे साहिब कह मन भावे वदी वेल बहु पीढ़ी चाली धर्म कला हर बंद बहाली मन चिंदिया सतगुरु।

तेरा, जियो पिंड सब तिसदा, सब किश है तेरा, मान माने तू धनी तेरा परवासा, बिन साचे अन टेक है सो जानहु काचा रहाउ, तेरा हुक्म अपार है कोई अंत ना पाए, जिस गुरु पूरा भेट सी सो चले रजाए, चतुराई सियाणपा कितै काम न आई है, टुठा साहिब जो देवै सोई सुख पाई है, जे लख कर्म कमाई है किश पवै ना बंदा, जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंधा, आसा महला पंजवां सर्व सुखा मैं पालिया, हर जीवड़ ना कोई गुर पुठे ते पाई है, सच साहिब सोई बलिहारी गुर अपने, सद सद कुरबाना नाम ना विसरो एक खिन चसा, एहो कीजै दाना रहाउ, भागठ सच्चा सोए है जिस हर धन अंतर, सो छूटै महाजाल ते जिस गुर शब्द निरंतर, गुर की महिमा क्या कहा गुर विवेक सत सर, ओहो आदि जुगादि जुगह जुग पूरा परमेश्वर, नाम त्याव हो सद सदा हर हर मन रंगे, जियो प्राण धन गुरु है नानक कह संगे, आसा महला पंजवां साई अलख अपार भोरी मन वसै,

तुम संग भेटिया सुख पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाओ जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिनखे जिन मन उठाए आप पूरे भगत से।

साहा साहा नानक की लोचा पूर सच्चे पातशाह आसा महला पंजवा पूर रहया सरब ठाए हमारा खसम सोए एक साहिब सिर सत दूजा नाही कोई ज्यो भावे त्यो राख राखण हारिया तुझ बिन अवर ना कोई नदर निहारिया रहाउ प्रतपाले प्रभ आप घट घट सारी है।

कीर्तन आधार निश्चले हो तनो जेते माया रंग तेत पछावया सुख का नाम निदान गुरमुख गावया सच्चा गुणी निदान तू प्रभ गहर गंभीरे आस भरोसा खसम का नानक के जियरे आसा महला पंजवा जिस सिमरत दुख जाए सहज सुख पाई है रैन दिन सकर जोड़ हर हर त्याई है नानक का प्रभ सोए जिसका सब कोए सर्व रहया भरपूर।

हर रंग माणिया आवहो संत मलाह हर कथा कहानिया अन दिन सिमरह नाम तज लाज लुकानिया रहाउ जप जप जीवा नाम होवे आनंद घना।

जिन हर त्याया जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई। नानक कै सुख सोए जो प्रभ पावई। आसा महला पंजवां आवहो मीत इकत्तर होए। रस कास सब पुंचह अमृत नाम हर हर जपह।

कर कृपा प्रभ अपनी सच साज सुवारिया रहाउ कर गहलीने अपने सच हुक्म रजाई जो प्रभ जित्ती दात सा पूर्ण वडियाई सदा सदा गुण गाई है जप नाम मरारी नेम नभायो सतगुरु प्रभ कृपा धारी नाम

ठाकर तू ही प्रभ ता केवड़ भागा ओहो सहेला सद सुखी सब भ्रम पौ भागा हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा पारा करन करावन सगल बिद सो सतगुरु हमारा रहाओ दूजा नाही और को तांका पहो करिए गुर सेवा महल पाईए जग दुत्तर तरिए दृष्ट तेरी सुख पाईए मन माहे निधाना जाको तुम कृपाल पए सेवक से परवाना अमृत रस हर

भाव कर तो निद हर पावो सगली दासी ठाकुर सब कहती मेरा जिसह सिंगारे नानका तिस सुख बसेरा आसा मोहल्ला पंजवा संता की होए दासरी एहो अचारा सिखरी सगल गुणा गुणी उत्तमो भरता दूर ना पेखरी एहो मन सुंदर अपना हर नाम मजीठ रंगरी त्याग सियाण पचातुरी तू जान गोपाल है सांगरी रहाओ भरता कह सुमानी है एहो शिंगार बनाएरी दूजा भाव वसारी है एहो तंबोला खाएरी गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बछाएरी आठ पहर कर जोड़ रहो तौ भेट हर रायरी तिस ही चज शिंगार सब साई रूप अपार री साई

गुरे आपने पाए विश्रामा हुए बिखादी दुखिया ए गुरते हुटे हम शूटे अब उनाते हुए हम ते शूटे रहाओ मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा जब लग हुक्म न बूझता तब ही लो दुखिया गुर मिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया ना को दुश्मन दोखिया ना ही को मंदा गुर की सेवा सेवको नानक खसमै बंदा आसा महला पंजवा सुख सहज आनंद घना हर कीर्तन गाओ ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ बलिहारी गुरे अपनी सद सद बल जाओ गुरु विटो हों वारिया जिस मिल सच सुआओ रहाओ सगुन अप सगुन तिस को लगे है जिस चीत ना आवे तिस जम नेड़ ना आवे जो हर प्रभ भावे पुन दान जप तप जेते सब ऊपर नाम हर हर रसना जो जपे तिस पूर्ण काम पै बिन से भ्रम मोह गए को दिसै ना बिया नानक राखे।

सर्व सुख पावं आज्ञा पावं के ना पावं। एक दतार सगल है जाचक दूसर कै पह जावो हों मांगो आनल जावो। सगल शत्रपत एको ठाकुर कौन समसर लावो रहाओ। उठों बैसों रह पे ना साको दर्शन खोज खजावो। ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार तिनको महल दुल पावो। अगम अगम अगाध बोध कीमत परे ना पावो। ताकि शरण सत पुरख की सत गुर पुरख त्यावो। पयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर काटियो बंद गरावो। कहो नानक जो साध संग पायो तो फिर जन्म ना आ।

मार्ग पंथ समारी नाम दृढ़ गुर मन मह दिया मोरी तिसा बुझारी दिन पी गावो रहनी गावो गावो सास सास रसनारी सत संगत में बसास हुए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक को एहो दान देहो प्रभ पाव संतरेन उरतारी श्रवनी कथा नैन दर्श पेखो मस्तक गुर चरनारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर दसवा महला पंजवा जिसनो तू अस्थर कर मन है ते पाहुन दो दाहा पुत्र कलत्तर ग्रह सगल समगरी सब मिथ्या असनाहा रे मन क्या करह है हाहा दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी एक राम भजन लै लाहा रहाओ जैसे बस्तर देह ओढ़ाने दिन दोए चार पुराहा पीत ऊपरे केतक ताई है अंत ओर को आहा जैसे अंब कुंड कर राखियो परत सिंध गल जाहा आव गया गया पार ब्रह्म की उठ जासी मोहत चसाहा रे मन लेखे चल है लेखे बैस है लेखे लेंदा साहा सदा कीर्त कर नानक हर की उबरे सतगुर चरण उटाहा आसा महला पंजवा अपुष्ट बात ते भई सीधरी दूत दुष्ट सजनई अंधकार मह रतन परगासेउ मलीन बुद्ध हसनई जो कृपा गोविंद पई सुख संपत हर नाम फल पाए सतगुरु मिली रहाओ मोहि किरपन को कोई ना जानत सगल भवन प्रगटई संग बैठनो कहीं ना पावत हुन सगल चरण सेवी आड़ आड़ को पिरत ढूंढते मन सगल त्रिशन बुझ गई एक बोल पी खवतो नाही साध संगत सीत लई एक जी गुण कवन वखाने अगम अगम अगमई दास दास दास को करियो जन नानक हर सरनई आसा महला पंजवा रे मूड़े लाहे को तू टीला टीला तोटे को बेग ताया सस्त वखर

गंधण वहन सुन है उर्जाव है नाम लैत अलकाया नेंद चेंद को बहुत अमाहयो बूजी उल्टाया पारतानु पारतानु पारती निंदा अखाद खाहे हरकाया साच तर्म स्यो रुच नहीं आवे सत सुनत शोहाया दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर भगत टेक हर नाया नानक आहे सरन प्रभ आयो राख लाज अपनाया आसा महला पंजवां मिथ्या संग संग लपटाई मोह माया कर बांधे जह जानो सो चीत ना आवे अहम बुद्ध भय आंदे मन बैरागी क्यों ना अरादे काच कोठरी माहे तू बसता संग सगल बिखे।

कारण कोट दिन से दुख पावे है, करी मोह तरंग मान है, फिर बहुर बहुर पछतावे है। अंधे चेत हर हर राया, तेरा सो दिन नेड़े आया रहाओ। पलक दृष्ट देख भूलो, आक नीम को तू मर। जैसा संग बिसियर स्यों है रे, तैसो ही एहो परग्रहो। बैरी कारण पाप करता, बस्त रही अमाना। छोड़ जाहे तिन ही स्यों संगी, साजन स्यों बैराना। सगल संसार एह बिद व्याप्यो, सो उबरेओ जिस गुर पूरा। कहो नानक पाव सागर तरेओ, पये पनीत शरीरा। आसा महला पंजवा दोपदे, लूक कमानो सोई तुम पेखेओ। मूड मुग्ध मुकरानी, आप कमाने कौले बांदे। फिर पाछे पछतानी, प्रभ मेरे सब विद आगे जानी। भ्रम के मूसे तू राखत परदा, पाछे जी की मानी रहाओ। जित जित लाए तित तित लागे।

रहाउ। तिस सेवक कै हो बलिहारी, जो अपने प्रभु भावै तिसकी सोए सुनी मन हरिया। तिस नानक परसन आवै, आसा घर ग्यारवां महला पंजवां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नटुआ भेख दिखावै बहु बिद। जैसा है ओह तैसारी, अनक जोन भ्रम्यो भ्रम भीतर। सुख नाही परवेश सारी, साजन संत हमारे मीता। बिन हर हर अनीतारी, साध संग मिल हर गुण गाई। एहो जन्म पदार

मन घेर अगाहा गाखरी गुर शब्दी पार उतरी रे खोजत खोजत खोज बिचारे तत नानक एहो जाना रे सिमरत नाम निदान निर्मोलक मन मानक पतियाना रे आसा महला पंजवां दुपदे गुर प्रसाद मेरा मन वसिया जो मांगो सो पावो रे नाम रंग एहो मन त्रिपताना बहुर न कतहु तामो रे हमरा ठाकुर सब ते उच्चा रहण

के मर्दन खट दर्शन कर तलीरे सुंदर सुगर स्वरूप सियाने पंचहो ही मोहे शलीरे जिन मिल मारे पंच सूर वीर ऐ

जह ठली रे कहो नानक तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चली रे आसा महला पंजवा नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ बहु गुण तुन मुन जन खट बेते अवर ना के

मोहल्ला पंजवा हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमख न मनते तारी रे रहाओ दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे खिन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे।

चालत बैसत सोवत हर जस मन तन चरण खटानी हौ हौरो तू ठाकर गौरो नानक सरन पछानी राग आसा महला पंजवां घर बारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्याग सगल सियानपां भज पार ब्रह्म निरंकार एक साचे नाम।

भौजन लंघी है, सदा हर गुण गाओ, जन्म मरण निवारी है, दुख ना जम पुर होए, नाम निधान सोई पाए, कृपा करे प्रभ सोए, एक टेक आधार एको, एक का मन जोर, नानक जपिए मिल साध संगत, हर बिन अवर ना होर, आसा महला पंजवा, जियो मन तन प्राण प्रभ के, दिए सब रस भोग, दीन बंदप जी दाता, सरन राखण जोग, मेरे मन त्याए हर हर नाम, हलत पलत सहाए संगे, एक स्यों लिवलाओ रहाओ, वेद शास्त्र जन त्या

आधार तेरा नानक का प्रभ तान। आसा महला पंजवा डोल डोल महा दुख पाया बिना साधु संग खाट लाभ गोविंद हर रस पार ब्रह्म एक रंग हर को नाम जपिय नीत सास सास त्या

किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन धन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वस किश नाही। ज्यो ज्यो राख है त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम पौ नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवां अगम अगोचर दर्स तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग। आप किरपाल किरपा प्रभ धारी सतगुर बख्शिया हर नाम। कल युग उधारिया गुरदेव मल मूत मूड जे मुगद होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब श्रेष्ठ धरता।

द्वापर पणिय कलयुग उत्तम जुगा माहे एह कर करे सो एह कर पाए कोई ना पकड़ी है किसे थाए हर जियो सोई करह

एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे, रहाओ महाबिखादी दुष्ट अपवादी, ते पनीत संगारे जन्म पवंते नरक पड़ंते, तिनके कुल उधारे कोई ना जाने कोई ना माने, से प्रगट हर द्वारे कमन उपमा देओ कमन वडाई, नानक खिन खिन वारे आसा महला पंजवा, बावर सोए रहे रहाव मोह कटांब बिखै रस माते, मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास, मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे, तिल मर्म ना लहे कर कृपा राख।

गज मोतियन लालन नह नाहा नहीं राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किस किस ना चाही चरणन सरनन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तपत हरी।

संयम कर थाके नानक साध सरन प्रभ संग वसै आसा महला पंजवां घर पंद्रवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद बेकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवै पकर केस जम उठारियो तद ही घर जावै लोभ बिखया बिखै लागे हर वित चित दुखाही।

निपट बाजी हार मुका पछतायो मन पूरा दान सगल गैर वजह भरिया दीवान लिखे ना परिया जेहे कार्ज रह ओला सोए काम ना करिया।

सहजाए दरसाए अब रात्या गोविंद सिंह संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन मैदान पाए सब

प्रभ त्याव भ्रम पीत जीत मटाव निध नाम नानक मोरै आसा महला पंजवा काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल काम।

ना रहा अनन उपाव कर हां तौ निकसै सरन पैरी सखी थेर थेर चित थेर हां बन ग्रहो सम

तिस पोखान हा नानक सहज समायो रे मना सावरी महला पंजवा हर हर हर गुणी हा जपिए सहज तुनी हा साधु रसन पनी हा छूटन बेद सुनी हा पाइए वड पुनी मेरे मना रहाओ खोज है जन मुनी हा सर्ब का प्रवतनी हा दलाब काल धुनी हा दूख बनासनी हा प्रभु।

सबको तिस मन्ने हां सफल सो आया हां नानक प्रभ पाया मेरे मना सावरी महला पंजवा मिल हर जस गाइए हां परम पद पाइए हां वा रस जो विदे हां ताको सगल सिदे हां अन दिन जागया हां नानक बड़ भाग्या मेरे मना रहाओ संत पग धोइए हां।

कह नाई, कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला, अंतर साच सबे सुख नाला, नदर करे राखे रखवाला, त्रे भवन सूजे आप गवावे, बाणी बूझे सच सुभावे, शब्द विचारे एक लिव तारा, नानक धन सवार नहारा, आसा महला पहला, लेख असंख लिख लिख मान, मन मानिए सच सुरत बखान, कथनी बदनी पढ़ पढ़ पार, लेख असंख अलेख या

आचारी जग पंडित बिरला विचारी बिन सतगुर भेटे सब फिरे अहंकारी जग दुखिया सुखिया जन को।

है दुख कोई, सोरो वै जिस बेदन होए, जिस बीती जाने प्रभ सोए, आपे करता करे सो होए, जीवत मरना तारे तरना, जय जगदीश परम गत सरना, हौ बलिहारी सतगुर चरना, गुर बोहित शब्द पै तरना, निरपहु आपने।

दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन सौंपो कृष्ण परीत भीतर एक अनेक असंख कर्म धर्म बहु संख असंख।

भ्रांत सूतक अगन पखै जग खाए सूतक जल थल सब ही थाए नानक सूतक जन्म मरीजै गुर प्रसादी हर रस पीजै राग आसा महला पहला आप विचारै सो परखे हीरा एक दृष्ट तारे गुर पूरा गुर मानै मन

नजर निहाल आसा महला पहला गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान गुरमुख महली महल पछान गुरमुख सुरत शब्द निशान ऐसे प्रेम भगत विचारी।

क्या लहस निदान जिसका अन तन सहज ना जाना परम पुलाना फिर पछताना गल पाही बौरा बौराना बूढ़त जग देखिया तो डर भागे सतगुर राखे से वड भागे।

कहावह बीते बिननावै मन झूठ अनीते कहां चलुहो मन रहोहो करे गुरमुख राम नाम तृप्तास्ते खोजत पावहो सहज हरे रहाउ काम क्रोध मन मोह शरीरा लाभ लोभ अहंकार सो पीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा अंतर नामन साच पछाणे अंतर की गात गुरमुख जाने साच शब्द बिन महल ना पछाणे निरंकार मह आकार समावे अकल कला सच साच टिकावे सो नर गर्भ जोन नहीं आवे जहां नाम मिले तह जाऊं गुर प्रसादी कर्म कमाऊं नामे राता हर गुण गाऊं गुर सेवा ते आप पछाता अमृत नाम वस्या सुखदाता।

0: तिस लागे।
1: जो जन राम नाम लिव जागे,
0: भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त भये हर रंग। आसा महला पहला एक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने। राम जपो मेरी सखी सखैनी, सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी। रहाव बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या अरनार। बंधन कर्म तर्म हों किया, बंधन पोत कलात मन बिया।

साहा संचह धन जाय बिन हर भगत ना पवई थाय बंधन भेद बाद अहंकार बंधन बिन सह मोह विकार नानक राम नाम सरनाई सतगुर राखे बंध ना पाई राग आसा महला पहला अष्टपदियां।

ब्राह्मण जिस वेख नींद ना पाई कहां सोपान तंबोली हरमा हो या शाई माई इस जर कारण कणी विगुत्ती इन जर

चारे वणज करहो मकसूद लैहो मत पछो तावहो अवगण छोड़ो हो गुण करहो ऐसे तत् परावहो धर्म भूम सत बीज कर ऐसी किरस कमावहो तां व्यापारी जानियो लाहा लै जावहो कर्म होवै सतगुर मिलै।

धनी साचा मुख नाम रहाउ सिद्धा सेवन सिद्ध पीर मांग है रिद्ध सिद्ध मैं एक नाम ना विसरै साचे गुरु बुद्ध जोगी भोगी कापड़ी क्या।

लालच दुख भारी साचो साहिब मन वसे हों मैं बिख मारी दुबदा छोड़ कवाटड़ी मूस हो गए भाई अहनस नाम सलाही है सतगुर सरनाई मनमुख पत्थर सैल है।

हूँ। हुक्मी वजह लिखाए आया जानिए लाहा पल्ले पाए हुक्म सियाणी है। हुक्मी पैंदा जाए दरगाह पानी है।

गुरमुख होए ता छूटी है मनमुख पत खोई रहाउ जिन्नी एको सेवया पूरी मत पाई आद जगाद निरंजना जन हर शरणाई साहिब मेरा एक है अवर नहीं पाई

परम पद पाई है, कथे अकथ कहानी, तू करता किया सब तेरा, क्या तू करे पनाणी, जां को नदर करह तू अपनी, साई सच समाणी, नाम तेरा सब कोई लेत है, जेती आवन जानी, जां तुद पावे ता गुरमुख बूझे, होर मनमुख फिरे इयाणी, चारे वेद ब्रह्मे कौ दिए, पढ़ पढ़ करे विचारी, ताका हुक्म न बूझे बपड़ा, नरक सुर्ग अवतारी, जुगह जुगह के राजे किए, गाव है कर अवतारी, दिन पी अंत न पाया ताका, क्या कर आख विचारी, तू सच्चा, तेरा किया सब साचा।

तप सार हर जीव मन वसै सब दुख वसार नहार दर साचै दिसै सचियार गुर सेवा ते त्रे पवन सोजी होए आप पछाण हर पावै सोए साची बाणी महल प्राप्त होए गुर सेवा ते सब कुल उधारे निर्मल नाम रखै उर धारे साची सोभा साच द्वारे सेवट भागी जे गुर सेवा लाए अन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए नामे उधरे कुल सबाए नानक साच कह विचार हर का नाम रखो उर धार हर भगती राते मोख द्वार आसा महला तीजा आसा आस करे सब कोई हुक्म बूझे निराशा होई आसा विच सुते कई लोई सो जागे जागाए सोई सतगुर नाम बुझाया विण नावै भुख ना जाई नामे तृष्णा अग्न बुझे नाम मिले तिसै रजाई रहाउ कल की

जप पढ़िए गुर शब्द विचार, हर जप पढ़िए होमै मार, हर जपिए पहे सच प्यार, नानक नाम गुरमत उरतार, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग आसा महला तीजा, अष्टपदियां घर अठवां काफी, गुर ते शांति उपजै जिन तृष्णा अग्न बुझाई, गुर ते नाम पाईए वड्डी वड्याई, एको नाम चेत मेरे भाई जग

आगे जुग जुग प्रगट होए, ए मन रूड़े रंगले तू सच्चा रंग चढ़ाए, रूड़ी बाणी जे रपे ना एहो रंग लह ना जाए रहाओ। हम नीच मैले अत अभमानी दूजे पाए विकार, गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल जोत अपार। बिन गुर कोई ना रंगी है, गुर मिलिया रंग चढ़ाओ, गुर कै भै पाए जो रते सिफती सच समाओ। भै बिन लाग ना लगई ना मन निर्मल होए, बिन भै कर्म कमावनी झूठे ठाओ ना कोय। जिसनो आपे रंगे सो रपसी सत संगत मिलाए, पूरे गुर ते सत संगत उपजै सहजे सच सुभाए। बिन संगती सब

एक है बहुविद श्रिष्ट उपाई हुक्मी कार कराईंदा दूजा किस कही है भाई बुझना अबुझना तुद किया ए तेरी सिरकार एक ना बख्शे मेल लह एक दरगाह मार कडे कूड़ियार एक तुर पवित पावन है तुद ना मेलाए गुर सेवा ते सुख उपजै सच्चा शब्द बुझाए एक कुचल कुचील विखली पते नाम हो आप खुआए ना उन सिद्ध ना बुद्ध है ना संजमी फिर है उतवताए नदर करे जिस अपनी तिस नु भावनी लाए सत संतोख ए संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए लेखा पढ़ ना पहुंची है कत कहने अंत ना पाए गुर ते कीमत पाई है सच शब्द सोजी पाए इहो मन देही सोध तू गुर शब्द भी

कर गए पल्ले किश ना पाए महल नाही दोहागणी अंत गई पछताए सो फिर मेरा एक है एक सस्यों लिवलाए नानक जे सुख लोड़ है कामणी हर का नाम मन वसाए आस्ता महला तीजा अमृत जिना चखायन रस आया सहज सुभाए सच्चा वी प्रवाहो है तिसनो तिल ना तमाए अमृत सच्चा वरसदा गुरमुखा मुख पाए मन सदा हरियावला सहजी हर गुण गाए रहाउ मन मुख सदा दुहागणी दर खड़िया बिल लाहे जिन्ना पिरका स्वाद ना आयु जो तुर लिखिया सो कमाहे गुरमुख बीजे सच जम्मे सच नाम वापार जो इत लाहै लायन भगती दे भंडार गुरमुख सदा सुहागणी भै भगत शिंगार आनंद निरावै फिर अपना सच रख है उरतार जिन्ना फिर रावया अपना तिन्ना विटो बल जाओ सदा फिर कै संग रह विचो आप गवाई तन मन शीतल मुख उजले फिर कै भाई प्यार सेज सुखाली फिर रवै हो मैं तृष्णा मार कर कृपा घर आया गुर कै हित अपार वर पाया सुहागणी केवल एक मरार सबे गुनहा बख्शाए लयन मेले मेलन हार नानक आखण आखिया जे सुन धरे प्यार आसा महला तीजा सतगुर ते गुण उपजै जां प्रभ मेलै सोए सहजे नाम त्याई है ज्ञान प्रगट होए।

शब्द रहे आपरपूर रहाउ गुरमुख आप पछाणिया तिन्नी एक मन त्याया सदा रवह पेरे अपना सच्चा नाम सुख पाया ए मन तेरा को नहीं कर वेख शब्द विचार हर सरनाई भज पओ पाए हे मोख द्वार शब्द सुनिए शब्द बुझिए सच रह लिवलाई शब्द हम मारिए सच्चे महल सुख पाए इस जुग में शोभा नाम की।

सच रहे सच्चे सच समाहे बिन शब्द सुनिए ना देखिए जग बोला अन्ना परमाए बिन नावे दुख पाए सी नाम मिले तिसे रजाए जिन बाणी स्यों चित लाया से जन निर्मल परवान नानक नाम तिन्ना कदे ना विसरे से दर सच्चे जान आसा महला तीजा शब्दों ही भगत जाप दे जिनकी बाणी सच्ची होए विचों आप गया ना हो मन्या सच मलावा होए हर हर नाम जन की पत होए सफल तिन्ना का जन्म है तिन माने सब कोई रहाउ हम मैं मेरा जात है अत क्रोध अभिमान शब्द मरे ता जात जाए ज्योति ज्योत मिले भगवान पूरा सतगुर भेटिया सफल जन्म हमारा नाम नवे निध पाया परे अखुट भंडारा आवह इस राशि के व्यापारिये जिन्ना नाम प्यारा गुरमुख होवे सो धन पाए तिन्ना अंतर शब्द विचारा भगती सार ना जाननी मनमुख अहंकारी तुरों आप खुआयन जुए बाजी हारी बिन प्यारे भगत ना होवे ना सुख होए शरीर प्रेम पदार्थ पाईए गुर भगती मन धीर जिसनु भगत कराए सो करे गुर शब्द विचार हृदय को नाम वसै हम दुबदा मार भगतां की जात पात एको नाम।

भगत निराली अल्लाह दी जापै गुर विचार नानक नाम हिरदै वसै पै भगती नाम सवार। आसा मोहल्ला तीजा अनरस मह भुलाया बिन नामै दुख पाई सतगुरु पुरख ना भेट्यो जे सच्ची बूझ बुझाई। ए मन मेरे बावले हर रस चख साध पाई अनरस लागा तू फिरह बिरथा जन्म गवाई। रहाओ इस युग में गुरमुख निर्मली सच नाम रह लिवलाई। बिन कर्मा किश पाइय नाही क्या कर कहया जाई। आप पछाण है शब्द मर है मनहु तज विकार गुर सरनाई भज पए बख्शे बख्शन हार। बिन नाम है सुख ना पाइय ना दुख विचों जाई। इहो जग माया मोहे व्यापिया दूजे भरम भुलाई। दुहागनी फिर की सार ना जानही क्या कर करह श्रींगार। पन दिन सदा जलदियां फिरह सेजै रवै ना पतार। सुहागनी महल पाया विचों आप गवाए गुर शब्दी सिंगारियां अपनी सह लिया मलाई। मरना मनहु विसारिया माया मोह गुबार मनमुख मर मर जम है पी मर है जमदर होए खुआर। आप मलायन से मिले गुर शब्द विचार नानक नाम सुमाने मुख उजले तित सच्चै दरबार। आसा महला पंजवा अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पंच मनाए पंच रसाए पंच वसाए पंच गुआए इन बिद नगर बुठा मेरे भाई दुरत गया गुर ज्ञान दृढ़ाई। रहाव साच धर्म की कर दीनी वार हरहे मुहकम।

सहज सुख के सब हाट, साहा व्यापारी एकै थाट, जे जिया दन को लय ना जगात, सतगुर कर दीनी तुर की छाप, वखर नाम लद खेप चलावो, लै लाहा गुरमुख घर आवो, सतगुर साहु सिख बन जारी, पूंजी नाम लेखा साच संवारे, सो वसै इत कर जिस गुर पूरा सेव, अब चल नगरी नानक देव। असावरी महला पंजवां घर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरे मन हर स्यों लागी प्रीत, साध संग हर हर जपत, निर्मल साची रीत, रहाउ दर्शन की प्यास घणी, चितवत अनक प्रकार, करो अनुग्रह पार ब्रह्म, हर कृपा धार मरार, मन परदेसी आया, मिलियो साध कै संग, जिस वखर कौ चाहता, सो पायो नामह रंग, जेते माया रंग रस, बिनस जाही खिन माहे, भगत रते तेरे नाम स्यों, सुख पुंचह सब ठाए, सब जग चल तो पेखी है, निःचलार को नाम, कर मित्राई साध स्यों, निःचल पावह ठाऊं, मीत साजन सुत

चरण कमल बोहित पै लग सागर तरयो ते पेट्यो पूरा सतगुरु साचा प्रभ स्यो नेह साध तेरे की जाचना विसरना सास ग्रास जो तुद भावे सो भला तेरे पाणे कारज रास सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ पीते परमानंद हासा।

सुख सिंगार बिठिया के फीके तज छोड़े मेरी माई। काम क्रोध लोभ तज गए प्यारी सतगुर चरनी पाई। जो जन राते राम स्यो प्यारी अनत ना काहू जाई। हर रस जिन्नी चाखिया प्यारी तृप्त रही आगाई। अंचल गहया साध का नानक पैसा गिर पार पराई। जन्म मरण दुख कटिया प्यारी।

मिले प्यारी तिस कै लागो पाई जो सुख दर्शन पेखते प्यारी मुख ते कहन ना जाई साची प्रीत ना तुटई प्यारे जुग जुग रही सुमाई जो तुद भावे सो भला प्यारी तेरी अमर रजाई नानक रंग रते नारायण प्यारी माते सहज सुपाई सब बिद तुम ही जानते प्यारे किस पह कहो सुनाई तू दाता जिया सबना का तेरा दिता पहर है खाई सुख दुख तेरी आग्या प्यारी दूजी नाही जाई जो तू कराम है सो करी प्यारे अवर किस करन ना जाई दिन रैन सब सुहावने प्यारी जित जपिए हर नाम साई कार कमावनी प्यारी तुर मस्तक लेख लखाई एको आप वर्तदा प्यारी घट घट रहिया समाई संसार कूप ते उधर लह प्यारे नानक।

सत्य सोए श्रेष्ठ जिन साजी सबना साहिब एक भया सेवत रहे चित जिन का लागा आया तिनका सफल भया मन काहे भूले मूड मना।

जलिया जमराज के ही रूह आए माया कै संगल बंद लया खखै खुंदकार साहा आलम कर खरीद जिन खर्च दिया बंधन जा कै सब जग बांधिया अवरी का नहीं हुक्म पया गगै गोए गाए जिन छोड़ी गली गोविंद गर्भ पया कड़ भांडे जिन आवी साजी चाड़न वाहै तई किया कगै काल सेवक जे कालै शब्द गुरु कै लाग रहै बुरा भला जे सम कर जाने इन वेद साहिब रमत रहै चचै चार वेद जिन साजी चारे खानी चार जुगा जुग जुग जोगी खानी भोगी पढ़िया पंडित आप थिया सच्चै छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम हुआ परम उपाए फुलाइन आपे तेरा कर्म हुआ तिन गुरु मिलिया जजै जान मंगत जन जाचै लख चौरासी भीख पविया एको लेवै एको देवै अवर न दूजा मैं सुनिया छजै झूर मरहो क्या प्राणी जो किस देना सो दे रहिया दे दे वेखै हुक्म चलाए।

आ सब थाई एक वस्या मन माही तत्ते तंच करहू क्या प्राणी घड़ी के मोहत के उठ चलना जूए जन्म ना हारो अपना भाज पढ़ो तुम हर सरना ठठे ठांड वर्ती तिन अंतर हर चरणी जिनका चित लागा से जन निस्तरे तो प्रसादी सुख पाया डड्डे दंप करहु क्या प्राणी जो किश हुआ सो सब चलना तिसे सरी वो ता सुख पावहु सर्व निरंतर राव रहया तड्डे ताहे उसारे आपे ज्यो तिस पावे तिवे करे कर कर वेख हुक्म चिलाए तिस निस्तारी जा को नदर करी नाणे रवत रह घट अंतर हर गुण गावे सोई आपे आप मलाई करता पुनरप जन्म ना हुई तत्ते तारू पवजन हुआ ताका अंत ना पाया ना तर ना तुल्हा हम बूढ़स तार ले तार नराया तत्ते थान थनंतर सोई जाका किया सब हुआ क्या परम क्या माया कही है जो तिस पावे सोई भला दद्दे दोष ना देऊ किसे दोष कर्मा आपनिया जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजे अवर जना तद्दे धार कला जिन छोड़ी हर चीजी जिन रंग किया तिसदा दिया सबनी लिया कर्मी कर्मी हुक्म पया नन्ने नाहा भोग नित भोगे ना दीठा ना संभलिया गली हो सुहागण पैणे कंत ना कबहू मैं मिलिया पप्पे पातशाह परमेश्वर वेखण कौ परपंच किया देखे बूझे सब किछ जाने अंतर बाहर रव रहिया फप्पे फाही सब जग फासा जम कै संगल बंद लया गुर प्रसादी से नर उबरे जे हर शरणागत भज पया बब्बे बाजी खेलन लागा चौपड़ कीते चार जुगा जी जंत सब सारी कीते पासा ढालने आप लगा पब्बे पाल है से फल पाव है गुर प्रसादी जिन को पौ पया मनमुख फिर है ना चेत है मूड़े लाख चौरासी फेर पया मम्मे मोह मरण मधुसूदन मरण पया तब चेतव्या काया पीतर अवरो पड़िया मम्मा अखर विसरिया यही है जन्म ना होवी कद ही जे कर सच पछाण गुरमुख आख गुरमुख बूझे गुरमुख एको जाने रारे राव रहिया सब अंतर जेते किए जनता जंत अपाई तंदे सब लाई कर्म हुआ तिन नाम लया लल्ले लाई तंदे जिन छोड़ी मीठा माया मोह किया खाना पीना सम कर सहना पाने ता कै हुक्म पया ववे वास देव परमेश्वर वेखण कहो जिन वेस किया वेखे चाखे सब किछ जाने अंतर बाहर राव रहिया राड़े राड़ करह क्या प्राणी तिसह त्यावो जे अमर होवा तिसह त्यावो सच समावो ओस विटोह कुर्बान किया हाहे होर न कोई दाता जी उपाय जिन रिजक दिया हर नाम त्यावो हर

कराई सब किश जाने नानक शायर इव कहिया राग आसा महला तीजा पट्टी एक ओंकार सतगुर प्रसाद अयो अंग सब जग आया काके कंग काल पया रीरी लल्ली पाप कमाने पर अवगण गुण विसरिया माने ऐसा लेखा तू की पढ़िया लेखा देना तेरे सिर रहिया रहाउ सिदंगा सिमरह नाही नन्ने ना तुद नाम लया सस्से सीजह अहन समूड़े क्यों छूतह जम पाकड़िया बब्बे बूजह नाही मूड़े परम भुले तेरा जन्म गया अनहोंदा ना उतरायो पांदा अवरा का भार तुद लया जजे जोत हिर लई तेरी मूड़े अंत गया पछतावेगा एक शब्द तू चीनह नाही फिर जूनी आवेगा तुद सिर लिखिया सो पढ़ पंडित अवरा नो ना सखाल बिखिया पहला फाहा पया पांदी पिछों दे गल चाटड़िया सस्से संयम गयो मूड़ी एक दान तुद कथाई लया साई पुत्री जजमान की सा तेरी एत धान खादे तेरा जन्म गया मम्मे माते हिर लई तेरी मूड़े हो मैं वड्डा रूप पया अंतर आत्मे ब्रह्म ना चीनिया माया का मोहताज पया कक्के काम क्रोध परम्यो हो मूड़े ममता लागे तुद हर विसरिया पढ़े गुण है तू बहुत पुकार है विन बूजे तू डूब मुआ तत्ते तामस जले ओहो मूड़े थत्ते थान पृष्ट हुआ कग्गे कर कर फिर है तू मूड़े दद्दे दान ना तुद लया पप्पे पार ना पवही मूड़े पर पंच तू पलच रहया सच्चे आप खुआयो हो मूड़े एहो सिर तेरे लेख पया पब्बे पवजल डुबो हो मूड़े माया विच गलतान पया गुर प्रसादी एको जाने एक घड़ी मह पार पया वावे वारी आईया मूड़े वास देव तुद विसरिया ए वेला ना लह सह मूड़े फिर तू जम कै वस पया झज्जै कदे ना झूरह मूड़े सतगुर काप देस सुन तू विखा सतगुर बाजो गुर नहीं कोई न गुरे का है नाउं बुरा तद्दै तावत वर्ज रख मूड़े अंतर तेरे निदान पया गुरमुख हो वह ता हर रस पी वह जुगा जुगंतर खाही पया गग्गै गोविंद चित कर मूड़े गली किने ना पाया गुर के चरण हृदय वसाए मूड़े पिछले गुनहा सब बख्श लया हा है हर कथा बूझ तू मूड़े ता सदा सुख होई मनमुख पढ़े तीता दुख लागे बिन सतगुरु मुक्त ना हुई हरारे राम।

आदि पुरुष अपरम्परु तारे राम अगमय गोचर अपर अपारा पार ब्रह्म परदानो आदि जुगादि है पी होसी अवर झूठा सब मानो कर्म धर्म की सार ना जाने सुरत मुकट क्यों पाई है नानक गुरमुख शब्द पछाण अहनस नाम त्याई है मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई राम हूं मैं ममता माया संग ना जाई राम मात पित भाई सुत चतुराई संग ना संपै नारी शायर की पुत्री पर हर त्यागी चरण तले विचारी आदि पुरख एक चलत दिखाया जह देखा तह सोई नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे हुए सो होई मेरा मनो मेरा मन निर्मल साच संभाले राम अवगुण मेट चले गुण संगम नाले राम अवगुण परहर करनी सारी दर सच्चै सत्यारू आवन जावन ठाक रहाए गुरमुख तत विचारू साजन मीत सजान सखा तू सच मिले वडियाई नानक नाम रतन परगासिया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम मन तन राव रहिया जग जीवनो दाता राम जग जीवन दाता हर मन राता सहज मिले मेलाया साध सभा संतां की संगत नदर प्रभु सुख पाया हर की भगत रति बैरागी चूकै मोह प्यासा नानक हूं मैं मार पतीने विरले दास उदासा राग आसा।

आयु साचा सृजनहार जीव सबना का दाता कर्म विधाता दुख बसारन हार जीव दुख बसारन हार स्वामी कीता जाका हुवै कोट कुटंतर पापा केरे एक घड़ी मह खोवै हंस से हंसा बग से बग्गा घट घट करे बीचार जियो तू सबनी ताई जितै हो जाई साचा सिरजनहार जियो जिन एक मन प्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो तिन जम नेड़ ना आवै गुर शब्द कमावै कबहू ना आवै हार जियो ते कबहू ना हारह हर हर गुण सार है तिन जम नेड़ ना आवै जमन मरन तिना का चूका जो हर लागे पावे गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर धार जियो जिन एक मन त्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो जिन जगत अपाया तंदै लाया तिसै विटोहो कुर्बान जियो ताकि सेव करीजै लाहा लीजै हर दरगाह पाइए मान जियो हर दरगाह मान सोई जन पावै जो नर एक पछाणै ओह नव निध पावै गुरमत हर त्यावै नित हर गुण आख बखाणै अहनस नाम तिसै का लीजै हर उत्तम पुरख प्रधान जियो जिन जगत अपाया तंदै लाया हौ तिसै विटोहो कुर्बान जियो नाम लैन से सो है तिन सुख फल होवै मन है से जिन जाहि जियो तिन फल तोट ना आवै जहां तिस पावै जे जुग केते जाहि जियो जे जुग केते जाहि स्वामी तिन फल तोट ना आवै तिन जरा ना मरना नरक ना परना जो हर नाम त्यावै हर हर करह से सूकह नाही नानक पीर ना खाहे जियो नाम लैन से सोह तिन सुख फल होवै।

सफलियो जन्म सवाया दूजड़ै कामण भरम भुली हर वर ना पाए राम कामण गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम बिरथा जन्म गवाए मनमुख अयाणी अवगुणवंती झूरे अपना सतगुर सेव सदा सुख पाया ता फिर मिलिया हदूरे देख फिर विगसी अंदरों सरसी सत्या शब्द सुपाए नानक बिन नावे कामण परम पलानी मिल प्रीतम सुख पाए फिर संग कामण जानिया गुर मेल मलाई राम अंतर शब्द मिली सहजे तपत बुझाई राम शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई सहजे हर रस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माणी सच्चै शब्द सुपाखिया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके भेखी मुक्त ना पाई नानक बिन भगती जग बौराना सच्चै शब्द मलाई सा तन मन आनंद भया हर जियो मेल प्यारी राम सा तन हर कै रस रसी गुर कै शब्द अपारी राम शब्द अपारे मिले प्यारी सदा गुण सारे मन वसी सेज सुहावी जा फिर रावी मिल प्रीतम अवगण नसी जित कर नाम हर सदा त्याई सोहे लड़ा जुग चारी नानक नाम रते सदा आनंद है हर मिलिया कार्य सारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला तीजा संत घर तीजा।

तुम करहु ता फिर सह खुशी न आवे। भगत भाव एहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। कह नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चित लावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावह। हर सोहिला तिन सदा सदा जो हर गुण गावह। कर बैराग तू छोड़ पाखंड सो सहो सब किस जाने। जल थल महियल एको सोई गुरमुख हुक्म पछाणे। जिन हुक्म पछाता हरी केरा सोई।

का शब्द संभाले साथ तेरे सो सहु सदा है एक खिन हर नाम संभाले जन्म जन्म के तेरे पाप कटे अंत परम पद पावे साचे नाल तेरा गंध लागे गुरमुख।

ता सहो जान है मरण जीवन की सोजी होई। गुर प्रसादी एको जान है ता दूजा भाव ना होई। मन शांत आई बजी बधाई।

महा आनंद सहज भया, मन तन सुख पाया, सो सहो चित आया मन वसाया, अवगण सब वसारी, जां तिस पाणा गुण प्रगट होए, सतगुर आप सवारी, से जन प्रवान होए, जिन्नी एक नाम दिड़िया, दुतिया पाओ चुकाया, इयों कह नानक धन सो वेला, जित मैं सतगुर मिलिया, सो सहो चित आया, एक जंत परम पुले, तिन सह आप पलाए, दूजे पाए फिर हैं, हम मैं कर्म कमाए, तिन सह आप पलाए कुमार।

खिन पच्छम शाय ज्यो चक कुम्हार पवाया दुख खावे हैं दुख संचह भोग हैं दुख की बिरद वधाई नानक बिकम सहेला।

सब पर हर त्यागी सुन्ने सुन समावे बन जारे एक भगती आवे है लाहा हर नाम ले जाए नानक मन तन अर्प गुरे आगे जिस प्राप्त सो पाए रतना रतन पदारथ बहु सागर भरिया राम बाणी गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया राम गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया निर्मोल करतन अपारा हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत भरे भंडारा समुंद वरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अनूप दिखाई गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक भेद न पाई आसा महला चौथा चिम चिमे चिम चिम वरसै।

राम गुण गाई दुर्मत को बोध गई सुध हुई राम नाम मन लाई सफल जन्म शरीर सब हुआ जित राम नाम पर गासिया नानक हर पज सदा दिन राती गुरमुख निज घर वासिया जिन शरदा राम नाम लगी तिन दूजे चेतना लाया राम जे धरती सब कंचन कर दीजे बिन नाम है अवर ना पाया राम राम नाम मन पाया परम सुख पाया।

भनासन पतत पावन हर नाम जियो हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम हर जपी है सत गुर पाए जियो गुरमुख हर पढ़िए गुरमुख हर सुनिए हर जपत सुनत दुख जाए जियो हर हर नाम जपया दुख बिनसिया हर नाम परम सुख पाया सतगुर ज्ञान बलिया घट चानन अज्ञान अंधेर गवाया हर हर नाम तिन्नी अराध्या जिन मस्तक तुर लिख पाए जियो हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम हर जपी है सतगुर पाए जियो हर

हर गुण गाया, जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, हर हर नाम समाया, जिन हर त्याया तुर भाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो, हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो, जिन हर मीठ लगाना ते जन परदाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो, हर नाम वडाई हर नाम सखाई, गुर शब्दी हर रस भोग जियो, हर रस भोग महा निर्जोग, वडभागी हर रस पाया, से धन वड्डे सतपुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया, जन नानक रेण मंगै पग साधु, मन चूका सोग वजोग जियो।

पग चारे धर्म ध्यान जियो। मन तन हर गाव है परम सुख पाव है, हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो। गुण ज्ञान पदार्थ हर हर किरतार्थ, शोभा गुरमुख होई अंतर बाहर हर प्रभे को। दूजा अवर ना कोई, हर हर लिव लाई हर ना।

जग पुन आरंभ है। अत किरिया कर्म कमाए दियो, किरिया कर्म कमाया पग दोए खिसकाया, दोए पग टिकै टकाए दियो। महाजुद्ध जोध बहु कीने, विच हों मैं पचै पचाए दियो। दीन दयाल गुर साध मलाया, मिल सतगुर मल लह जाए जियो। जुग द्वापर आया परम परमाया, हर गोपी कान उपाय जियो। कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिकै टकाए जियो। गुर शब्द कमाया औखद हर पाया, हर कीरत हर शांत पाए जियो। हर कीरत रोते आई हर नाम वडाई, हर हर नाम खेत जमाया। कल युग बीज बीजे बिन नावे, सब लाहा मूल गवाया। जन नानक गुर पूरा पाया, मन हृदय नाम लखाए जियो। कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिकै टकाए जियो। आसा महला चौथा, हर कीरत मन पाई परम गत पाई। हर मन तन मीठ लगान जियो, हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया। तुर मस्तक भाग प्राण जियो, तुर मस्तक भाग हर नाम सुहाग। हर नामे हर गुण गाया, मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगटी। हर नामे हर सुहाया, ज्योति ज्योत मिली प्रभ पाया। मिल सतगुर मनुआ मान जियो, हर कीरत मन पाई परम गत पाई। हर मन तन मीठ लगान जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया। ते उत्तम जन प्रदान जियो, तिन हम चरण सरेव है खिन खिन पग धोव है। जिन हर मीठ लगान जियो, हर मीठा लाया परम सुख पाया। मुख भागा रती चारी, गुरमत हर गाया हर हार उर पाया। हर नाम कंठ धारी, सब एक दृष्ट समत कर देखै। सब आत्म राम पछाण जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया। ते उत्तम जन प्रधान जियो, सत संगत मन पाई हर रसन रसाई। विच संगत हर रस होए जियो, हर हर अराध्या गुर शब्द विगासिया। बीजा अवरना कोए जियो, अवरना कोए हरे अमृत सोए।

संगत मन पाई हर रस नरसाई, विच संगत हर रस होए जियो, हर दया प्रभ तार हो पाखण हम तार हो, कद लेवो शब्द सुपाए जियो, मोह चीकड़ पाथे निगरत हम जाते।

को होए, हर जन प्रभ एक समान जियो, तुर मरन लखाया गुरमुख सुहाया, जन उबरे हर हर ध्यान जियो, जग उपजै बिनसै बिनस बनासै, लग गुरमुख अस्थिर होए जियो, गुरमंत्र दृढ़ाए हर रसक रसाए, हर अमृत हर मुख चोए जियो, हर अमृत रस पाया मुआ जीवाया, फिर बहुड़ मरना होई, हर हर नाम अमर पद पाया।

जियो जग उपजै बिनसै बिनस बनासै लग गुरमुख अस्थिर होए जियो। आसा महला चौथा संत वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर आदि निरंजन निरंकार जियो। तां की गत कही ना जाई अमित वडियाई मेरा गोविंद अलख अपार जियो। गोविंद अलख अपार।

निर्गोचर आद निरंजन निरंकार जियो तू आद पुरख अपरंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो तू घट घट अंतर सर्व निरंतर सब मैं रहया समाए जियो घट अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर ताका अंत न पाया तिस रूप न रेख अदिष्ट अगोचर गुरमुख अलख लखाया सदा आनंद रहै दिन राती सहजे नाम समाए जियो तू आद पुरख अपरंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निदान जियो हर हर प्रभ एको अवर ना कोई तू आपे पुरख सुजान जियो पुरख सुजान तू प्रधान तुद जेवड़े अवर ना कोई तेरा शब्द सब तू है वरत है तू आपे करह सो होई हर सब मह रव्या एको सोई गुरमुख लखिया हर नाम जियो तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निदान जियो

सब तेरे शब्द समाए दियो, सब शब्द समावे जां तुद पावे, तेरे शब्द वडियाई गुरमुख बुद्ध पाईए आप गवाईए, शब्दे रहिया समाई तेरा शब्द अगोचर गुरमुख पाईए।

हर पाया, हर भगत एक मंगा। मेरा मन तन शब्द विगासिया, जप अनत तरंगा। मिल संत जना हर पाया, नानक सत संगा। दीन दयाल सुन बेनती, हर प्रभ हर राया राम राजी। हों मांगू शरण हर नाम की, हर हर मुख पाया। भगत वच्छल हर बिरद है।

मेरा सतगुरु सोथान सोहावा राम राजी गुर सिखी सोथान पालिया लै तूर मुख लावा गुरसिखा की काल पाए पाई जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पू

गुर सिखा की भुख सब गई, तिन पिछै होर खाए कनेरी। जन नानक हर कुन बीजिया, फिर तोट ना आवै हर कुन केरी। गुर सिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजी। कोई कर गल सुनावै हर नाम की, सो लगै गुर सिखा मन मिठा। हर दरगाह गुर सिख पैलाई है, जिन्ना मेरा सतगुरु तुठा। जन नानक हर हर होया, हर

हरे मन तृष्णा ना बुझी मेरे प्यारे, नित आस करे नित जोवन जावे मेरे प्यारे, जम सास हिरे भाग मणि सुहागण मेरे प्यारे, नानक हर पुर धारे फिर रत्याड़े मैंडे लोइन मेरे प्यारे, चातरक बूंद जिवें मन

आंगन धूड़ लुत्ते मन आस उड़ीनी मेरे प्यारे दोए नैन जुत्ते गुरु नानक देख बिबसी मेरे प्यारे ज्यों मात सुते।

सब किस मैं सब किस पाया नाम त्याई राम नाम त्याई सदा सखाई सहज सुपाई गोविंदा गणत मटाई चूकी ताई कदे ना व्यापै मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अचरज सोब बनाई कहो नानक फिर मेरे संगे ता मैं नव निध पाई सरस अड़े मेरे भाई सब मीता राम बिखमो बिखम अखाड़ा मैं गुरमिल जीता राम गुरमिल जीता हर हर कीता टूटी पीता भरम गड़ा पाया खजाना बहुत नदाना साणथ मेरी आप खड़ा सोई सुगयाना सो परदाना जो

अकथा हर अकथ कथा किस जाए न जानी राम। सुर नर सुर नर मुन जन सहज वखाणी राम। सहजे वखाणी अम्यो बाणी चरण कमल रंग लाया। जप एक अलख प्रभ निरंजन मन चिंदिया फल पाया।

हर रंग माणी हर संता हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड भागी सत संगत पाई राम वड भागी पाए नाम ते आए लाते दूख संतापै गुर चरणी लागे प्रम पौ पागे आप मकाया आपै कर कृपा मेले प्रभ अपने विछड़ कतह ना जाई बिनवंत नानक दास तेरा सदा हर सरनाई हर दरे हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम सद बलिहारे कर नमस्कारी जिन भेटत प्रभ जाता घट घट रव रहा सब थाई पूरन पुरख विधाता गुरपुरा पाया नाम ते आया जुए जन्म न हारे बिनवंत नानक सरन तेरी राख कृपा धारे बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम तेरे चरना तेरे चरण धूड़ वडभागी पावा राम हर धूड़ी नाइय मैल गवाइए जन्म मरण दुख लाथे अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभ साथे मिटे दुख कल्याण कीर्तन बहुड़ जोन ना पावा बिनवंत नानक गुर सरन तरिए अपने प्रभ पावा।

जल संगराती माछली नानक हर माते चातरक जाचै बूंद ज्यो हर प्राण अधारा राम राजे मालक जीना सुत।

चितवै आस घनी कद दिनियर देखी कोकले अंब प्रीत चवै सुहाविया मन हर रंग कीजी हर प्रीत करीजै मान ना कीजै इक राती के हब पाहुणिया हब क्या रंग लायो मोहर चायो नांगे आवन जावणिया थिर साधु सरनी पड़ी है चरनी अब टूटस मोह जो कीती है कहो नानक संत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखी है निष्करंक जैसे नाद सुन श्रवणी हियो डिवै मन ऐसी प्रीत कीजै जैसी तरण पतार उर्जी तिरह सिवै एहो मन लाल दीजै मन लालह दीजै भोग करीजै हब खुशियां रंग माणी तेरे अपना पाया रंग लाल बनाया हत मिलियो मित्र चराणी।

मन हर चरण गिहिजै, ऐसी मन प्रीत कीजै। आसा महला पंजवां सलोक, बन बन फिरती खोजती, हारी बहु अवगाही। नानक पेटे साध जब, हर पाया मन माही। संत जां को खोजह असंख मुनि, अनेक तपे ब्रह्मे कोट आराधह ज्ञानी। जाप जपे जप ताप संयम क्रिया पूजा, अनक सोधन बंदना कर गवन बसदा। तीर्थ है मज्जन मिलन को निरंजना, मानुख बन तिन पशु पंखी। सगल तुझह आराधते दयाल लाल गोबिंद नानक, मिल साध संगत होए गते। कोट बिसन अवतार संकर जटा धार, चाह है तुझह दयार। मन तन रुच अपार, अपार अगम गोविंद ठाकुर। सगल पूरक प्रभ धनी, सुर सिद्ध गण गंधर्व त्यावह। जख किनर गुण भनी, कोट इंदर अनेक देवा। जपत स्वामी जय जयकार, अनाथ नाथ दयाल नानक। साध संगत मिल उधार, कोट देवी जाको सेवह। लक्ष्मी अनक पांत, गुप्त प्रगट जाको राध है। पौन पानी दिन सरात, नखियतर ससियर सूर त्यावह। वसुद गगना गावे, सगल खानी सगल बाणी। सदा सदा त्यावे, सिमरत प्राण चतर बेद। खट शास्त्र जा को जपात, पतत पावन भगत वचल। नानक मिली है संग सात, जेती प्रभु जनाई। रसना तेत भनी, अनजानत जो सेवै। तेती नह जाए गनी, अवगत अगंत अथाह ठाकुर। सगल मंजे बाहरा, सर्ब जाचक एक दाता। नह दूर संगी जाहरा, वस भगत थिया मिले जिया। ताकी उपमा कित गनी, एहो दान मान नानक पाए। सीस साधा धर चरनी, आसा महला पंजवा सलोक। उदम करहो वड भागी हो, सिमरो हर हर राय। नानक जिस सिमरत सब सुख होवह, दुख दर्द भ्रम जाय। संत नाम जपत गोबिंद नह अलसाई, भेटत साधु संग जमपुर नह जाई। दुख दर्द ना पौ ब्यापै, नाम सिमरत सद सुखी। सास सास अराध हर हर, त्याए सो प्रभ मन मुखी। कृपाल दयाल रसाल गुण निध, कर दया सेवा लाई है। नानक पयंपै चरण जंपै, नाम जपत गोबिंद नह अलसाई है। पावन पतत पनीत नाम निरंजना, परम अधेर बनास ज्ञान गुर अंजना। गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन, जल फल मही अल पूरिया। एक निमख जा कैर दैवसिया, मिटे तिसै वसूरिया। अगाध बोध समरथ स्वामी, सर्ब का पौ भंजना। नानक पयंपै चरण जंपै, पावन पतत पुनीत नाम निरंजना। ऊट गही गोपाल दयाल कृपा निधे, मोहे आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे। हर चरण कारण करण स्वामी, पतत उधरन हर हरे। सागर संसार पाव उतार, नाम सिमरत बहुतरे। आद अंत बेअंत खोजह, सुनी उधरन संत संग बिदे। नानक पयंपै चरण जंपै, ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वचल हर

सहज सुभाई भगत कार्य सारिया आनंद हर जस महामंगल सर्व दुख वसारिया चमत्कार प्रगास दह दिस एक तह दृष्टाया नानक पयम पै चरण जम पै

पावी अवनासी अवघत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला नह दूर सदा हदूर ठाकुर दह दिस पूर्ण सद सदा प्राण पत गत मत जाति प्रिय प्रीत प्रीतम पावे नानक वखाणे गुर बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे ना जावे जाको राम पतार ता कै अनद घना सुखवंती सानार सोभा पूर बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्ब सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बाणी प्रह मानी थिर सुहागता का बना नानक वखाणे गुर बचन जाने जा को राम पतार ता कै अनद घना आओ सखी संत पास सेवा लागी है पीसो चरण पखार आप त्यागी है ताजे आप मिटे संताप आप नह जनाई है शरण गिही जय मान लीजै करे सो सुख पाई है।

संत पास सेवा लागी है, जाके मस्तक भाग से सेवा लाया, ताकि पूर्ण आस जिन साध संग पाया, साध संग हर कै रंग गोविंद सिमरन लागिया।

करों कर जोड़, हर हर नाम देहो, हर नाम मांगो चरण लागो, मान त्यागो तुम दया, कतहू ना तामू शरण पावू, करना मैं प्रभ कर्मया, समर्थ अगत अपार निर्मल,

नीच सठ कठोर को लहीन व्यापत मोह कीच मल भरम करम अहं ममता मरण चीत न आवे बनता बनोद आनंद माया अज्ञान ताल पटावे खिसै जोबन बदै जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत नानक।

पंजवा पुरख पते भगवान तां की शरण गही निरपौ भये प्राण चिंता सगल लही मात पिता सुत मीत सुरजन इष्ट बंधप जानिया गह कंठ लाया गुरम लाया जस बिमल संत बखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही प्रभ एक अनक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाई आप भई राम नाम उरहार बिख के दिवस गए गत परम मोह बेकार बिनसे जोन आवन सब रही अग्न सागर भय शीतल साधे अंचल गह रहे गोविंद गोपाल दयाल समृत बोल साधु हर जय जय नानक नाम त्याए पूर्ण साध संग पाई परम गति जह देखो तह संग एको रव रहिया घट घट वासी आप विरल किने लहिया जल थल महियल पूर पूरन कीट हस्त समानिया आदि अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निध जन कहिया सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहिया दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कल मल पाप तरे दुख भूख दारिद्र नाठे प्रगट मग दिखाया मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया हर देख दर्शन इश पुन्नी कुल संभूहा सब तरे दिन सरैन आनंद अन दिन सिमरंत नानक हर हरे।

गोविंद रमण निर्मल साधु संग नानक नाम ना विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत संत इन्नी रह नड़ी है चाम कन तारी जाग है संत जना मेरे राम प्यारे सदा जाग है नाम सिमर है अन दिनो चरण कमल ध्यान हिरदय प्रभ बिसर नाही एक खिनो ताज मान मोह विकार मन का कलमला दुख जारी बिनवंत नानक सदा जाग है हर दास संत प्यारी मेरी से जड़ी है आडंबर बनिया मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया प्रभ मिले स्वामी सुखागामी चाव मंगल रस परे अंग संग लागे दुख भागे प्राण मन तन सब हरे मन इच पाई प्रभ त्याई संजोग साहा शुभ गणिया बिनवंत नानक मिले श्री तार सगल आनंद रस बनिया मिल सखियां पुछ है कहो कंत नीचाणी रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी गुण गूढ़ गुप्त अपार करते निगम अंत ना पावहे भगत भाए त्याए स्वामी सदा हर गुण गावहे सगल गुण सुगयान पूरन अपने प्रभ पाणी बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज समाणी सुख सोहिलड़े हर गावन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन भागे सुख सहज सरसे हर नाम रहस्ते प्रभ आप कृपा धारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिवस आए सहज पाए सगल निध प्रभ पागे बिनवंत नानक सरण स्वामी सदा हर जन तागे हासा महला पंजवा उठ मंज वटाउड़िया तैं क्या चिर लाया मोहलत पुन्नड़िया कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया तो माया करहें पाप अमित्या तन पसम टेरी जमै हेरी काल बपड़ै जितया माल जोबन छोड़ वैसी रहे ओ पैनन खाया नानक कमाना संग जुलिया नह जाए किरत कमाया हाथ हो मिर्ग जिवें पेख रहन चंद्रायन सुख हो दुख भये नित पाप कमायन पापा कमाने छड़ह नाही लै चले कत गलाविया हर चंदौरी देख मूठा कूड़ सेजा रावया लब लोभ अहंकार माता गर्भ भया समायन नानक मृग अज्ञान बिनसे नह मिटै आवन जायन मिठै मख मुआ क्यों लए उडारी हस्ती गर्त पया क्यों तरियै तारी तरण देहला भया खिन मह खसम चेतना आयु दुखा सजाई गणत नाही की आय अपना पायु गुजा कमाना प्रगट होवा ईत उतह खुआरी नानक सतगुर बाज मूठा मन मुखो अहंकारी हर के दास जीवे लग प्रभ की चरनी कंठ लगाए लिए तिस ठाकुर सरनी बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना आप नाम जपाया साध संगत आप हुआ आप जगत तराया।

धर्म करे दूत भय पलायन धर्म धीरज सहज सुखिए साध संगत हर भजे कर अनुग्रह राख लीने मोह ममता सब तजे गह कंठ लाए गुरमलाए गोविंद जपत अगायन विनवंत नानक सिमर स्वामी सगले आस पुजायन निद सिद चरण गहे तां केहा काड़ा सब किस वस जिसै सो प्रभु असाड़ा गह पुजा लीने नाम दीने कर धारम।

काए पाप कमाई है, सो कृत की जय नाम लीजे, नरक मूल ना जाइए। आठ पहर हर नाम सिमरहो, चले तेरे साथी, भज साध संगत सदा नानक, मिट है दुख कमाते। वलवंच कर उदर भर है, मूर्ख गावारा, सब किश दे रहया हर देवन हारा। दातार सदा दयाल स्वामी, काए मनु विसारी है, मिल साध संगे भजन संगे, कुल समूहा तारी है। सिद्ध साधक देव मुन जन, भगत नाम आधारा, बिनवंत नानक सदा भजिए, प्रभ एक करने हारा। खोट ना की चई, प्रभ परखण हारा।

ताज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ शरण आई आया। जल थल महियल रविया स्वामी ऊच अगम अपारा बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल अधारा एक

कमला ब्रह्म पीत हे तीखण मद विपरीत हे अवध अकारथ जात गहबर बन कोर हे ग्रह मूसत मन चोर हे दिन करो अन दिन खात जात बेहात प्रभ बिन मिलो प्रभ करुणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रिय संग बिन कछ नह गते कुल रूप धूप ज्ञानहीनी तुझ बिना मोहे कमन मात कर जोड़ नानक सरण आयो प्रिय नाथ नरहर करो।

अनेक मगन होत अलियल गुंजात अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चातरक चित प्यास हे घन बूंद विचित्र मन आस हे अल पीवत बिन सतताप तापा बनासन दुख नासन मिल प्रेम मन तन अत घना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कमन रसना गुण पना गह पुजा लेव हो नाम देव हो दृष्ट तारत मिटत पाप नानक जम पै पतत पावन हर दर्श पेख

करत न लागी वार। महला दूजा, जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़ है हजार। केते चानन होंदिया गुरबेन घोर अंधार। महला पहला, नानक गुरु ना चेतनी मन।

रते से जन गए हार गए से ठगण वालिया लिखना वै धर्म बहालिया। श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिर है जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेद वेडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लग है पराणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़ विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजूर वेख वडान रहया विस्माद नानक बुझण पूरे भाग। महला पहला। कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पौ सुख सार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत

बहुते जन्म परमिया ता सतगुर शब्द सुनाया। सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुनियो हूं लोक सबाया। सतगुर मिले सच पाया जिनी विचों आप गवाया। जिन सचो सच बुझाया सलोक।

संतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सर्ब जंजाल नानक मुस्तै ज्ञान विहूनी खाए गया जमकाल महला पहला वाइन केले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड़ उड़ रावा झट पाए।

कोलू चरखा चक्की चक, थल वारोले बहुत अनंत, लाटू मादानिया अनगाह, पंखी पौंदिया लैन ना साह, सूए चाड़ पवाई यह जंत, नानक पौंदिया गणत ना अंत, बंधन बंद पवाए सोए, पै किरत नचै सब कोए, नच नच हसह चलह से रोए, उड ना जाही सिद्ध ना होहे, नचन कुदन मन का चाऊ, नानक जिन मन पाओ, किन्ना मन पाओ पौड़ी, नाओ तेरा निरंकार है, नाए लय नरक ना जाइए, जियो पिंड सब तिसदा, देखा जय आख गवाई है, जे लोड़ है चंगा अपना, कर पुन्नो नीच सदाई है, जे जरवाना पर हर है, जर वेस करें दी आई है, को रह ना परिये पाईये, सलोक महला पहला, मुसलमाना सिफत सरयत।

तीर्थ नाव है अर्चा पूजा अगर वास बहकार। जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार। सूखम मूर्त नाम निरंजन

पायो, बिन सतगुर किनै ना पाया। सतगुर विद्या आप रखियोन, कर प्रगट आख सुनाया।

तहों उपजे कित संजम एह जाय। हमें एहो हुक्म है कय किरत फराह। हमें दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे। कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए। नानक कह सुनो जनहो हित संयम दुख जाहे। पौड़ी सेव कीती संतोखे जिनी सचो सच ते आया। ओनी मंदे पैर ना रखियो कर सो किरत धर्म कमाया। ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया। तू बख्शी सी अगला

वास सच सबना हुए दारू पाप कड़े तोए नानक वखाने बेनती जिन सच पल्ले हुए पौड़ी दान महिंदा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाई है कूड़ा लालच छड़ी है होए एक मन अलख ते आई है फल तेवे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे होवे पूर्व लिखिया ता धूड़ तिना दी पाई है।

लेखै पत पवै चंगे से ही के पौड़ी तुर कर्म जिन्ना को तुद पाया ता तिन्नी खसम ते आया।

होई बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहाउ जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो।

साच रही सबको सच समावे। रिग कह रहे आ भरपूर राम नाम देवा महसूर। नाय लय परास्त जाहे नानक तौ मुख अंतर पाहे। जुज मह जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया। पार जात गोपी लै आया बिंद्रा बन मह रंग किया। कल मह वेद अथर बन हुआ नाव खदाई अल्लुह भया।

संतोख सूत जत गंडी सत वट एहो जने उजी का थई ता पांडे घत ना एहो तुटै ना मल लगे ना एहो जलै ना जाए धन सो मान स्नान का जो गल चले पाए चौकड़ मुल अनाया बह चौंकै पाया सिखा कन चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थिया ओहो मोआ ओहो झड़ पया वे तगा गया महला पहला लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनामियां रात दिन सजी नाल तग कपाहों कत्ती है बामन वटे आए।

फिर पाइय होर नानक तग ना तुटई जे तग होवै जोर। महला पहला नाए मन्ने पति उपजै साला ही सच सूत दरगाह अंदर पाइय तग ना तूट सपूत। महला पहला तग ना इंदरी तग ना नारी पलके थुक पवै नित दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जेवा तग ना अखी वे तगाया पे बत्ते वट तागे अवरा।

कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मने होए प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे भावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगाह पैंदा जाए सी सलोक महला पहला गौ ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर तरण ना जाई धोती टिक्का तै जप माली धान मलेच्छा खाई अंतर पूजा पढ़ कतेबा संजम तुरका भाई।

ताग तिन कर ब्राह्मण पूरह नाद हुना ते आवह ओई साद कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करह आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेड़ धोती कखाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पहर होवह परवान मलेश पान ले पूजह पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देखे चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे एहो अन्न असाडा फिटे तन फिटे फेड़ करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच त्याईए सुच होवे तां सच पाईए पौड़ी चिते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वडियाईया आपे ही कर्म कराएंदा वड्डो हो वड्डा वड मेदनी सिरे सिर धंदे लाएंदा नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना काहु कराएंदा दर मंगन भिख ना पाएंदा सलोक महला पहला जे मुहाका कर मोह कर मोहे पितरी दे अग्गे वस्त सियाणी है पितरी चोर करे वड़ी है हाथ दलाल के मुस्फी एह करे नानक अग्गे सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला।

नानका जिन मन वसिया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चीज करन मन भाव दे हर बुझण नाही हारिया कर फुरमाए सिखाया वेख महलत मरन वसारिया।

किसनो अगली ओह वजहो पेदूना खाए खसमै करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजहो गवाए अगला मुहे मुहे पाना खाए जिस दा दिता खावना तिस कही ऐसा बास नानक हुक्म।

जियो गुर चरण लाग हम बिनवता पूछत कह जियो पाया कमन काज जग उपजै बिनसै कहो मोहे समझाया देव करहु दया मोहे मार्ग लाभ हो जित पै

इन बिद अपियो ना चूके कही ना उपजे उपजी जाने भाव भाव बिहूना उदय अष्ट की मन बुद्ध नासी तो सदा सहज लिव लीना ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है उदक कुंभ बिगराना कहो कबीर ऐसा गुण भ्रम भागा तो मन सुन समाना आसा गज साडे तै तै धूतियां तेरे पाइन तग गली जिन्ना जप मालियां लोटे हाथ निबग वे हर के संत।

आ मेरा मन पाया हम पूत तेरा तू बाप मेरा एकै ठाहर दोहा बसेरा कहो कबीर जन एको बूझया गुर प्रसाद मैं सब किस सूझया आसा इकत पत्र पर उरकट कुरकट इकत पत्र पर पानी आस पास पंच जोगिया बैठे बीच नकट दे रानी नकटी कोठन गन बाडाडू किन्ह बबेकी काटी तू रहाउ सगल माहे नकटी का वासा सगल मार ओहेरी सगलियां की हो बहन भान जी जिन्हें

आओ आगम निर्गम जो तिक जान है बहु बहु ब्याह करना तंत मंत्र सब औखद जान है अंत तहु मरना राज भोग अर सतर संघासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुबासक चंदन अंत तहु मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे कहू ना उबरना कहो कबीर इो राम जंपो मेट जन्म मरना आसा फीलर बाबी बल्द पखावज कौआ ताल बजावे।

आवे, कर कर मुसरी मंगल गावे, कछुआ शंख बजावे, वंश को पूत ब्याहन चलिया, सोइने मंडप छाए, रूप कन्या सुंदर बेदी, ससै सिंह गुन गाए।

आया आसा बटुआ एक बहतर आधारी एको जिसह द्वारा नवे खंड की प्रथमी मांगे सो जोगी जग सारा ऐसा जोगी नौनिद पावे तल का ब्रह्म ले गगन चरावे रहाउ खिंथा ज्ञान ध्यान कर सोई शब्द तागा मथ काले पांच तत् की कर मिर्गानी गुर कै मार्ग चाले दया पहुरी काया कर तुई दृष्ट।

पढ़त गुनत ऐसे सब मारे, किन्हों खबर ना जानी रहाओ। सकत सुनेहो कर सुन्नत करिए, मैं ना बदौगा पाई। जोरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई। सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए। फर्द शरीर ही नार ना छोड़े, तां ते हिंदू ही रही है। शाद कतेब राम भज बौरे, जुल्म करत है पारी। कबीर पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचेहारी। हासा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूझे सब कोई। तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई। रे बौरे तोहे करी ना राख कोई, तू राम नाम जप सोई रहाओ। का की मात पिता कहो का को, कमन पुरख की जोई। ठट फूटे को बात ना पूछे, काढ़ो होई। देहरी बैठी माता रोए, खटिया ले गए पाई। लट छिटकाए तिरिया रोए, हंस अकेला जाई। कहत

खंडस अवगन मेरा रहाउ। जे अत क्रोप करे कर ताया तां पी चीत ना राखस माया। चिंत पवन मन

सलाम कहत कबीर राम गुण गावो हिंदू तुरक दो समझावो आसा श्री कबीर जीओ के पंच पदे नौ दो तुके पंज एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाती तोरै मालनी पाती पाती जीओ जिस पाहन को

नडारी फूल शंकर देव तीन देव प्रताख तो रह करह किसकी सेव पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी दे कै छाती पाव जे एह मूर्त साची है तो गढ़न हारे खाओ पात पहत अरलापसी कर करा का सार भोगन हारे भोगया इस मूर्त के मुख शार मालिन भूली जग पुलाना हम

काल पन बीते, 20 वर्ष कस तप ना कियो, 30 वर्ष कस देव ना पूजा, फिर पछताना बिरद भयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, शायर सोख भुजंग बलियो, रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूणे खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत है ले गयो, मेरी राखत मुग्द फिरे, चरण सीस कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बह, जिहवा बचन शुद्ध नहीं निकसे, तबरे धर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिवलावे, लाहा हर हर नाम लियो, गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चल दिया नाल चलियो, कहत कबीर सुनो रे संत हो, अन तन कछुए लै ना गयो, आई तलब गोपाल।

आसा हम मशकीन खुदाई बंदे तुम राजस मन भावे अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फरमावे काजी बोलिया बन नहीं आवे रहाओ रोजा तरे निवाज गुजारे कलमा पिसत ना होई सतर काबा कट ही पीतर जे कर जाने कोई नवाज सोई जो न्याऊं बिचारे कलमा अकलह जाने।

कर फीकी। आप जनाए अवर को जाने तब हुए पिस्त श्री की। माटी एक पेख तर नाना ता मैं ब्रह्म पछाना। कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक स्यों मन माना। आसा गगन नगर एक

जराए, कह बिसियर को दूध पियाए। सात संगत मिल बबेक बुद्ध हुई, पारस परस लोहा कंचन सोई। साकत सुवान सब करे कराया, जो तुर लिखे।

रावण कर खबर ना पाई, क्या मांगू किस थिर ना रहाई, देखत नैन चल्यो जग जाई रहाउ, एक लख पूत सवा लख नाती, तेह रावण कर दिया ना बाती, चंद सूरज जाके तपत रसोई, बैसंतर जाके कपड़े धोई, गुरमत

नाब कमल मह बेदी रचले ब्रह्म ज्ञान उचारा राम राय सो दूलोह पायो आस वड भाग हमारा सुर नर मुन जन कौतक आए कोट ते तीस उजाना कह कबीर मोहे ब्याहे चले हैं पुरख एक भगवाना आसा सास की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डरों रे सखी सहेली।

राई माया सद मतवारी बड़े भाई कह जब संग होती तब हो नाह प्यारी कहत कबीर पंच को झगरा झगरत जन्म गवाया झूठी माया सब जा।

पढ़ो गायत्री गोविंद हृदय हमारे। मेरी जिह्वा बिसन नैन नारायण हृदय बस है गोविंदा। जम द्वार जब पूछस बबरे तब क्या

तार चरायु हो कैसे खसम हमारे, तू बामन मैं कांसी के जुलहा, बुझो मोर ज्ञाना तुम तो जाचे भूपत राजे, हर सो मोर त्याना आसा, जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन सुमान साच कर हम गांठ दीनी, छोड़ परम निदान बाबा माया मोह हित कीन, जिन ज्ञान रतन हिर लीन रहाव, नैन देख पतंग उर्जे पास ना देख आग, काल पास ना मुग्ध चेतै कनक कामन लाग, कर विचार विकार परहर तरन तारन सोए, कह कबीर जग जीवन ऐसा दुतिया नाही कोय, आसा जो मैं रूप किए बहु तेरे, अब पुन रूप न होई, तागा तंत साज सब ठाका, राम नाम बस होई, अब मोहे लाचनो ना आवे, मेरा मन मंदरिया ना बजावे रहाओ, काम क्रोध माया ले जारी, तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना भया है पुराना, गया परम सब छूटी।

मेरो पेर हौ हर की बहुरिया राम बड़े मैं तनक लहरिया रहाओ धन पेर एक संग बसेरा सेज एक पै मिलन दुहेरा धन

के दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हीरे हीरा वेद पवन मन सहजे रहे आसमाई, सगल जोत इन हीरे बेदी सतगुर बचनी मैं पाई। हर की कथा अनाहद बानी हंस होए हीरा ले पछानी रहाओ। कह कबीर हीरा अस देखियो जग मह रहा समाई। गुप्त हीरा प्रगट भयो जब गुर गम दिया दिखाई। आसा पहली क्रूप कुजात कुलखनी सहरे पेये बुरी। अब की स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर तरी। भली सरी मुई मेरी पहली बरी जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी रहाओ। कहो कबीर जब लोहरी आई बड़ी का सुहाग टरियो। लोहरी संग पई अब मेरे जेठी और तरियो। आसा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ ले राख्यो राम जनिया नाओ। इन मुंडियन मेरा घर तुंदरावा बिटवह राम रमऊआला।

रहु रहुरी बहुरिया कुंगट जिन काढ़े अंत की बार लहगी ना आढ़े रहाउ कुंगट काट गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे कुंगट काढ़े की यह बड़ाई दिन दस पांच बहु पले आई कुंगट तेरो तो पर साचे हर गुण गाए।

जाना सब जागे अनतनायो ताना रहाओ। जब तुम सुन ले वेद पुराना तब हम इतनक पसरे उताना। तरन आकाश की कर गह बनाई चंद सूरज दोए साथ चलाई। पाई जोर बात एक कीनी तह तांती मन माना। जो लाहे घर अपना चीना घट ही राम पछाना।

जे तीर्थ नावै तिस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कछु ना होवै, ना ही राम अयाना, पूजो

कैसे ओए नर फिर जोनी आवह मनहु कठोर मरे बनारस नरक ना बांचिया जाई हर का संत मरे हाड़म्भ है ता सगली सैन तराई दिन सना रैन वेद नहीं शास्त्र

एक मन सत सहंस जैसी ऊत पूत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग हर फेन बुध बदा जल ते भिन्न न होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन ना होई। मिथ्या भरम हर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया सुकिरत मनसा गुर उपदेसी जागत ही मन मानिया। कहत नाम देओ हर की रचना देखो हृदय बिचारी घट घट अंतर सर्ब निरंतर केवल एक मरारी। हासा आनी ले कुंभ पराई ले उदक ठाकुर को स्नान करूं। 42 लाख जी जल मह होते बीठल पहला काहे करूं। जत्र जाऊं तत बीठल पहला महा आनंद करे सदके ला रहाओ। आनी ले फूल परोई ले माला ठाकुर की हम पूज करूं। पहले बास लई है भवर है बीठल पहला काहे करूं। आनी ले दूध रिधाई ले खीरं ठाकुर को नैवेद करूं। पहले दूध बटारियो बछरे बीठल पहला काहे करूं। ईबै बीठल ऊबै बीठल बीठल बिन संसार नहीं। थान तनंतर नामा प्रणवै पूर रहे हो तू सर्वमही। आसा मन मेरो गज जेहबा मेरी काती माप माप काटो जम की फासी।

अरे अपना खसम त्यागो सोने की सुई पे का धागा नामे का चित हर स्यों लागा आसा साफ कुंच छोड़े भिख नहीं छाडे उदक माहे जैसे बाग ध्यान मांडे काहे को कीजे ध्यान जपन्ना जब ते सुध नाही मन अपना रहाओ सिंगच भोजन जो नर जा

बाद मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर एक दुख बनास पंच दुख असाध जा मह तां की केत के आस माधो अविद्या हित कीन दुबेक दीप मलीन रहाव त्रिगद जोन अचेत संभव पुन पाप असोच मानुखा अवतार दुलभ तिहि संगत पोच जी जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाए काल पास अबद लागे कशना चले उपाय रविदास दास उदास तज ब्रह्म तपन तप गुर ज्ञान भगत जन भय हरन परमानंद करो निदान आसा संत तुझी तन संगत प्राण सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव संत की संगत संत कथा रस संत प्रेम माजै दीजै देवा देव रहाओ संत आचरण संत चो मार्ग संत च ओलग ओलगणी और एक मांगो भगत चिंतावन जनी लखाव हो संत पापी सन रविदास भणै।

पूज पए हैं गंध सुगंध निवासा माधो सतसंगत शरण तुम्हारी हम अवगन तुम उपकारी रहाओ तुम मखतूल सुपेद सुपियल हम बपुरे जस कीरा सतसंगत मिल रही है माधो जैसे मदपम खीरा।

जो तन भयो छिन छिन प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन तुझे चरण अरबिंद भवन मन पान करत पायो पायो रामैया धन रहाओ संपत बिपत पटल माया धन ता मह मगन होत ना तेरो।

आसा हर हर हर हर हर हर हरि हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाउ हर के नाम कबीर उजागर जन्म जन्म के काटे कागर निमत नाम देव दूध पे आया तौ जग जन्म संकट नहीं आया जन रविदास राम रंग राता इयों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता माटी को पुतरा कैसे नचत है देखै देखै सुनै बोलै दौर्यो फिरत है रहाउ जब कछ पावै तब गर्भ करत है माया गई तब रोवन लगत है मन बच क्रम रस कसै लुभाना

मन पीरिया कंचन मन्ने पासे कलवत चीरिया सेख हयाती जागना कोई थिर रहया जिस आसन हम बैठे केते बैस गया कत्तक पूंजा चेत डौ सावन बिजलियां से आले सोहंदियां फिर गल बाहड़ियां चले चलन हार बचारा ले मनो गा देंदियां शे माह तोड़ंदियां हिक खिनो जिमी पुछे असमान फरीदा खेवट किन गए जालन गोरा नाल उलामे जी सहे।

प्राण आधार, जा की भगत करह जन पूरे, मुन जन सेव है गुर विचार रहाव, राव सस दीपक जाके त्रे भवन, एका जोत मरार, गुरमुख होए सो अहनस निर्मल, मनमुख रहन अंधार, सिद्ध समाद करह नित झगड़ा, दोह लोचन क्या हेरै, अंतर ज्योत शब्द धुन जागै, सतगुर झगर नबेरै, सुर नर नाथ बेअंत अजोनी, साचे महल अपारा, नानक सहज मिले जग जीवन, नदर करहु निस्तारा। राग गुजरी महला तीजा, कर पहला।

गोविंद प्रीत सिंह एक सहज उपजिया वेख जैसी भगत बनी आप सेती आप खाया ता मन निर्मल हुआ ज्योति ज्योत समई बिन भागा ऐसा सतगुर ना पाई है जे लोचै सब कोई कूड़े की पाल विचों निकले ता सदा सुख होए नानक ऐसे सतगुर की क्या ओह सेवक सेवा करे गुर आगे जियो तरे सतगुर का पाणा चित करे।

हर मेरा सिमरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंदप, हर मेरा भाई, हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त है, हर मेरा साक अंत होए सखाई, हर दिन होर रास कूड़ी है, चलदियां नाल ना जाई, हर मेरा धन मेरे साथ चल, जहां हो जाऊं तह जाई, सो झूठा जो झूठे लागै,

या राम राम सबको कहे, कहे राम ना होए। गुर प्रसादी राम मन वसे, तां फल पावे कोई। अंतर गोविंद जिस लागे प्रीत, हर तिस कदे ना विसरे। हर हर करहे सदा मन चीत, रहाउ हृदय जिनके कपट।

आए जिस नर की डुबदा ना जाए धर्म राय तिस देश जाए कर्म होवै सोई जन पाए गुरमुख बूझै कोई नानक विचो हऊ मैं मारे ता हर भेटै सोई गुजरी महला तीजा तिस जन शांत सदा मत निश्चल जिसका अभिमान गवाए सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझै हर चरणी चित लाए हर चेत अचेत मना जो इच्छा है सो फल होई गुर प्रसादी हर रस पाव है पीवत रह सदा सुख होई रहाओ सतगुर भेटे ता पारस होवै पारस होए ता पूज कराए जो उस पूजे सो फल पाए दीखिया देवै साच बुझाए बिन पारसै पूज ना हो वई बिन मन परचे अवरां समझाए गुरु सदाए अज्ञानी अंधा किस ओहो मार्ग पाए नानक बिन नदरी किछु ना पाई है जिस नदर करे सो पाए गुर प्रसादी दे वडियाई अपना शब्द वरताए गुजरी महला तीजा पंच पदे ना कांसी मत उपजै ना कांसी मत जाए सतगुर मिले मत उपजै।

पुरख जो आप ना पछाने, सच ना धरे प्यार, सच्चे जगत दहकाया, कहना कछु ना जाए। नानक जो तिस पावे सो करे, ज्यों तिस की रजाए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग गुजरी महला चौथा, चौपदे घर पहला, हर के जन सतगुर सतपुरखा।

मिलै तृप्ता सह मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आई त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लेखास। तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल नानक नाम परगास। गुजरी महला चौथा गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम। मिल सत संगत शब्द मन मोह है जप गोविंद गोविंद त्याई है। सब को दान दे प्रभ को है मेरे भाई जना। मोको गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है। गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा मिल गुर साध संगत जन सो है। रहाऊ सुख साध

भागहीन मत फीके, नाम सुनत आवे मन रोहै, कौआ काग कौ अमृत रस पाई है, तृप्त विष्टा खाए मुख गोहै, अमृत सर सतगुर सतवादी, जितना तै कौआ हंस हो है, नानक धन तन वड्डे वड भागी, जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है, गुजरी महला चौथा, हर जानी उत्तम उत्तम बाणी, मुख बोलह पारे उपकारी, जो जन सुने सरदा भगत सेती।

मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुर सरनाई, मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नावे त्रिग त्रिग बिरथा जाई, नाम बिना रस कस दुख खावे, मुख फीका थुक थूक मुख पाई, जो जन हर प्रभ हर हर

गुरमुख सखी सहेली मेरी, मोको देवो दान हर प्राण जिवाया। हम हो वह लाले गोले गुरसिखा के, जिन्ना अन दिन हर प्रभ पुरख ते आया। मेरा मन तन बिरहो गुरसिख पग लाया, मेरे प्राण सखा गुर के सिख पाई। मोको करहो उपदेश हर मिले मिलाया रहाओ। जहां हर प्रभ पावै ता गुरमुख मेले, जिन वचन गुरु सतगुर मन पाया। वड भागी गुर के सिख प्यारी, हर निर्बाणी निर्बाण पद पाया। सत संगत गुर की हर प्यारी, जिन हर हर नाम मीठा मन पाया। जिन सतगुर संगत संग ना पाया, से भागहीन पापी जम खाया। आप कृपाल कृपा प्रभ तारी, हरे आपे गुरमुख मिले मलाय।

कथा जिन सतगुरु पुरख जिन हर प्रभु पाया मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे मन तन शीतल सब हरिया होवा वड भागी हर नाम ते

तेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे रहाव धीरज धर्म गुरमत हर पाया नित हर नामै हर सिउ चित लावे अमृत बचन सतगुर की बाणी जो बोले सो मुख अमृत पावे निर्मल नाम जित मैल न लागे गुरमत नाम जपै लिव लावे नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया ते भागहीन मोए मर जावे आनंद मूल जग जीवन दाता सब जन को आनंद करहो हर त्यावे तू दाता जी सब तेरे जन नानक।

माई बाप पुत्र सब हर के किए, सबना कहो संबंध हर कर दिए। हमरा जोर सब रहे ओ मेरे वीर, हर का तन मन सब हर के वस है शरीर रहाओ। भगत जना को श्रद्धा आप हर लाई, विचे ग्रिस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर स्यों बने आई, तब जो किश करे सो मेरे हर प्रभ पाई। जित कारे कम हम हर लाई, सो हम करहे जो आप कराई। जिनकी भगत मेरे प्रभ पाई, ते जन नानक राम नाम लिवलाई। गुजरी महला पंजवां चौपदे कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे रे मन चितवह उद्दम, जा आहार हर जियो परया। सैल पत्थर मह जनते उपाय, ता कारजक आगे कर तरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले से तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया। सूके काष्ट हरिया रहाउ, जनन पिता लोक सुत बनता। कोई ना किसकी तरिया, सिर सिर

शरिया उन कवन खलावे कवन चगावे मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा बरिया गुजरी महला पंजवा चौपदी घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरिया चार करह खट करमा पितराती संसारी अंतर मैल न उतरे हम बिन गुरबाजी हारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहाव सास्त वेद सिमरत सब सोधे

अठसठ मज्जन कर इचनाना भ्रम आए धर सारी अनक सोच करहें दिन राती बिन सतगुर अंधियारी तावत तावत सब जग तायो अब आए हर द्वारी दुर्मत मेट बुद्ध परगासी जन नानक गुरमुख तारी गुजरी महला पंजवा हर तन जाप हर तन ताप हर तन भोजन पाया निमख न बिसरो मन ते हर हर साध संगत मह पाया माई खाते आयो घर कूता हर तन चलते हर तन बैसे हर तन जागत सूता रहाओ हर तन इशनान हर तन ज्ञान हर संग लाए ध्याना हर तन तुलहा हर तन बेड़ी।

आवे। हलत पलत कै संगे लाद खजाना गुर नानक को दिया। एहो मन हर रंग रंगी गुजरी महला पंजवा। जिस सिमरत सब किल विख नासह पितरी होए उदारू। सो हर हर तुम सद ही जापहु जा का अंत न पारू। पूता माता की आसीस निमख न बिसरो तुम कहो हर हर सदा भजो जगदीश रहाओ। सतगुरु तुम कहो होए दयाला संत संग तेरी प्रीत। कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत। अमृत पीवहो सदा चिर जीवहो हर सिमरत आनंद अनंता। रंग तमाशा पूर्ण आसा कभै न व्यापै चिंता। पवर तुम्हारा इहो मन होवो हर चरना हो कौला। नानक दास उन संग

सत्तर सब एक समाने, जोग जुगत निशानी, पूरन पूर रहो सब थाई, आन न कतहु जाता, घट घट अंतर सर्व निरंतर।

सो अपना दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अरादिया तिन भउ सागर तरिया गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे प्रभ तज अवर सेवक जे हुई है तित मान महत जस काटे रहाओ माया के संबंध सैन साक कित ही काम ना आया हर का दास नीच कुल उचा तिस संग मन बांछत फल पाया लाख कोट बिखिया के बिंजन ता मह त्रिशन ना बूझी सिमरत नाम कोट उजियारा बस्त अगोचर सूजी फिरत फिरत तुमरे द्वारे आया पै पंजन हर राया साध के चरण धूर जन बांछे सुख नानक एहो पाया गुजरी महला पंजवा पंच पदा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रथमे गर्भ माता कहवासा ऊहा छोड़ धर्म मह आया चित्र साल सुंदर बाग मंदर संग न कछु हूं जाया अवर सब मिथया लोभ लबी गुरपुरे दियो हर नामा जी को एहा वस्त फबी रहाउ इष्ट मीत बंधप सुत पाई संग बनता रच हसिया जब अंती अवसर आए बनयो है उन पेखत ही काल ग्रसिया कर कर अनर्थ बिहाजी संपै सोयना रूपा दामा पहाड़ी को ओहो पहाड़ा मिलिया होर सगल पयो बेर।

वाला करने हार पछाता, जिसका साथ नहीं रख लिया सगल जुगत बने आई। कहो नानक प्रभ पुरख दयाला, कीमत कहण ना जाई। गुजरी महला पंजवा, दो पदे घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पतत पवित्र लिए करे अपने, सगल करत नमस्कारु। वर्ण जात को पूछे नाही, बांछ चरण रवारू। ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारू, सगल श्रेष्ठ को धनी की जय। जन को अंग नरारू रहाऊ, साध संग नानक बुद्ध पाई। हर कीर्तन आधारू, नाम देओ त्रिलोचन कबीर दासरू। मुक्त भयो चमियारू, गुजरी महला पंजवा। है नाही को बूजन हारू, जान कमन पता। शिव बरंच अर सगल मोन जन,

जतर कता गुजरी महला पंजवा मता मसूरत अवर सियानत जन को कशु न आयु जह जह अवसर आई बनियो है तहां तहां हर त्यायु प्रभ को भगत वच्छल बिरदायु करे प्रतपाल बारक की न्याई जन को लाड लडायु रहाउ जप तप संयम

पांचवा मन जोगी शास्त्रग कहावत सब कीने बस अपनही तीन देव अर कोड़त तीसा तिनकी हैरत कछ ना रही बलवंत व्याप रही सब मही अवर न जानस को मर्मा गुर कृपा ते लही रहाउ जीत जीत जीते सब थाना सगल भवन लपटही कहो नानक साधते भागी होए चेरी चरण गही गुजरी महला पंजवा दुए कर जोड़ करी बेनंती ठाकुर अपना त्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मटाया।

सगल निहोरा गुजरी महला पंजवा आल जाल प्रम मोहत जावे प्रभ सेती रंग लाई मन को एह उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जिस पेटे टूटह माया बंद बिसरना कबहू जाई रहाओ करत करत अनक बहु भांति

तह परम अंधेरा नाही। ठाकुर जा सिमरा तू ताही, कर कृपा सर्व प्रत पालक, प्रभ को सदा सलाही। रहाउ सास सास तेरा नाम सुमारो, तुम ही को प्रभ आही। नानक टेक पई करते की, होर आस बढ़ानी लाही। गुजरी महला पंजवा, कर कृपा अपना दर्श दीजै, जस गाँव निसे अर पूर, केस संग दास।

मिथ्या पज सदा भगवंत रहाउ नाम एक आधार भगता ईत आज्ञा टेक कर कृपा गोविंद दिया गुर ज्ञान बुद्ध विवेक करण कारण समर्थ श्री धर सरणता की गही मुकत जुग तरवाल साधु नानक हर निद लही गुजरी महला पंजवा घर चौथा चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद छाड़ सगल सियाणपा साध सरणी आओ पार ब्रह्म परमेश्वरु प्रभु के गुण गाओ रे चित चरण कमल आराध सर्व सुख कल्याण पावे है मिटे सगल उपाद रहाओ मात पिता सुत मीत भाई किस बिना नहीं कोई।

चरण कमल अराध हृदय एक स्यों लिव लाव पार ब्रह्म प्रभ दया तारी बक्षली ने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप गुजरी महला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ त्याया गई शंका टूट दुख अनेरा पै बनासे पाप गए निखूट हर हर नाम की मन प्रीत मिल साध बचन गोविंद त्याए महा निर्मल रीत रहाओ जाप ताप अनेक करनी सफल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप राखे भये पूर्ण काम सास सास ना बिसर कबहू ब्रह्म प्रभ समरथ गुण

मन चरनार बिंद उपास कल कलेश मतंत सिमरन काट जमदूत फास रहा सत्र दहन हर नाम कहन अवर कछ ना अपाऊ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआऊ गुजरी महला पंजवा तू समरथ सरण को दाता दुख भंजन सुख राय जाहे कलेश मिटे भै भरमा निर्मल गुण प्रभ गाय गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाऊं कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाव रहाओ सतगुर सेव लगे हर चरनी वड्डे भाग लिव लागी कवल प्रगास भये साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी आठ पहर हर के गुण गावे सिमरै दीन दयाला आप तरै संगत सब उदरै बिनसी सगल जंजाला चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ शरण परे ओ नानक प्रभ तुमरी दे राख्यो हर हाथ गुजरे अष्टपदिया महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक नगरी पंच चोर बसी अले बरजत चोरी धावे त्रिह दस माल रखे जो नानक मोख मुक्त सो पावे केत हो बास देव बनवाली राम हृदय जप माली रहाओ उर्द मूल जिस साख तलाहा चार भेद जित लागी सहज

काम क्रोध अहंकार तदियले, लोभ मोह तिस माया, मन तत अवगत त्याया, गुर प्रसादी पाया, ज्ञान ध्यान सब दात कथियले, चेत बरन सब दूता, ब्रह्म कमल मद तासर साधन, जागत नाही सूता, महा गंभीर पत्र पाताला, नानक सर्ब जो आया, उपदेश गुरु माम पुनः न गर्भं, बेख ताज अमृत पियाया, गुजरी महला पहला, कमन कमन जाचे हैं प्रभदाते, ताके अंत न परह सुमार, जैसी भूख होए अभयंतर, तू समरथ सच देवन हार, ऐजी जप तप संयम सच आधार, हर हर नाम देह सुख पाईऐ, तेरी भगत भरे भंडार रहाउ, सुन समाद रह निवलागे, एका एकी शब्द बीचार, जल थल धरन गगन तै नाही, आपे आप किया करतार, ना कद माया मगन ना छाया, ना सूरज चंद ना ज्योत अपार, सर्व दृष्ट लोच

दाता दात करे अपने विचार कोट ततीस जाच है प्रभ नायक देंदे टोट नाही पंडार ऊंदे भांडे कछ ना समावे सीधे अमृत परे निहार सिद्ध समाधि अंतर जाच है रिद सिद्ध जाच करह जयकार जैसी प्यास हुए मन अंतर तैसो

सूचना मध्यम हर शरणागत हर के लोग नाम रते केवल बैरागी सोग बजोग विसर्जत रोग भाई रे गुर कृपा से भगत ठाकुर की सतगुर वाक हृदय हर निर्मल ना जम कान ना जम की बाकी रहाओ हर गुण रसन रवह प्रभ संगे जो तिस भावे सहज हरि बिन हर नाम वृथा जग जीवन हर बिन निफल मेक करी ऐ जी खोटे ठौर नाही घर बाहर निंदक गत नहीं काई रोस करै प्रभ बख्शना मेटै नित नित चढ़ै सवाई।

आई तू वड पुरख अगम सरोवर हम पंखी तुझ माही नानक नाम निरंजन दीजै जुग जुग शब्द सलाही गुजरी महला पहला घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद भगत प्रेम आराधितं सच प्यास परम हितं बिललाप बिलल विनंतिया सुख पाए चित हितं जप मन नाम हर सरनी संसार सागर तार तारन राम नाम कर करनी रहाओ ए मन मिर्त सुभ चिंतं गुर शब्द हर रमनं मत तत ज्ञान कल्याण निधानं हर नाम मन रमनं चल चित वित ब्रह्मा भ्रमं जग मोह मगन हितं हिर नाम भगत दृढ़ मती गुरवाक शब्द रतं परमात भरम ना चूकई जग जन्म ब्याद खपं अस्थान हर निह केवलं सतमती नाम तपं एहो जग मोहेत व्यापतं दुख अधिक जन्म मरनं भज सरन सतगुर उबर है हर नाम रिद रमनं गुरमत निश्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साचे अंतर ज्ञान रतन सारं पै पाए भगत तर पव जल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन एहो शरीर तौ सरणी लब लोभ लहर निवारण हर नाम रास मन मन मार तुही निरंजना कहो नानका सरनं गुजरी महला तीजा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद निरत करी एहो मन नचाई गुर प्रसादी आप गवाई चित थिर राखै।

0: अंते जम पवो भागै रहाउ। आपन चाहे सो भगत कहिए, अपना प्यार आप लाए, आपे गावे आप सुनावे, इस मन अंधे को मार्ग पाए।
1: अन दिन नाचै सख्त निवारे,
0: शिव कर नींद न होई, शक्ति घर जगत सूता, नाचै टापै अवरो गावे, मनमुख भगत न होई। सुर नर विरत पक कर्मी नाचे, मुन जन ज्ञान बिचारी, सिद्ध साधक लिव लागी नाचे, जिन गुरमुख बुद्ध विचारी, खंड ब्रह्मांड त्रै गुण नाचे, जिन लागी हर लिव तुम्हारी, जी जंत सबे ही नाचे, नाचे हैं खानी चारी, जो तुद भाव है से ही नाचे हैं, जिन गुरमुख शब्द लिव लाए, से भगत से तत् ज्ञानी, जिनको हुक्म मनाए, एहा भगत सच्चे स्यों लिव लागै।

ये गुरमुख शब्द विचारी कहो नानक से सहज सुख पावे हैं। जिनको नदर तुम्हारी गुजरी महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर बिन जियरा रह ना सके। ज्यों बालक खीर आधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाई है अपने सतगुर कै बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी गुरमुख नाम अमृत जल पाई है। जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ सनकस नंदन।

कथ कथा नित न्यारी सफल जन्म भया तिन केरा आप तरे कुल तारी मनमुख दुबदा दुर्मत व्यापे।

निंदक निंदा कर मालत हुए ओहो मालपख माया धारी संत जना की निंदा व्यापे ना उरवार ना पारी एहो परपंच खेल किया सब करतै हर करतै सब कल धारी हर एको सूत वरतै जोगे अंतर सूत खिंचै एकंकारी रसन रसन रस गावह हर गुण रसना हर रस धारी नानक हर बिन अव

तार जग भव सिंध रहाउ। काम क्रोध हरन मद मोह दहन, मरार मन मकरंद जन्म मरन निवार। करनी तर पत राख परमानंद, जलत अनेक तरंग माया। गुर ज्ञान हर रिद मंत, छेद अहम्बुद करना में। चिंत मेट पुरख अनंत, सिमर समरथ पल मुहूर्त। प्रभ ध्यान।

बेकार राख धर्म परम बदार मनते उदर हर निरंकार तनाड आड़ पंडार हर निद होत जिन्ना ना चीर खल मुग्ध मूड कटाक सिरी धर पय गुण मत धीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन धार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमण परम हंस हरीत बेत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक पतत उदार।

जन्म बिरथा गवाया, नानक जम मार करी खुआर पौड़ी, अपना आप अपायुन कदहो होर ना कोई, मता मसूर ते आप करी जो करी सो हुई, कदहो आकाश ना पताल है ना त्रै लोई, कदहो आपे आप निरंकार है ना उपत हुई, ज्यों तिस भावै तिवें।

आई। ऐसा सतगुरु जी मिले तुठा करे पसाऊ, मुक्त द्वारा मोकला सहजे आवो जाओ। महला तीजा, नानक मुक्त द्वारा

आई सतगुर मिले हम मैं गई जोत रही सब आई एहो जियो सदा मुक्त है सहजे रहे आसमाई पौड़ी प्रभ संसार उपाय कै वस अपने कीता गणत प्रभु ना पाई है दूजे परमीता।

ना बसियो मन आई त्रिक अवेहा जीविया क्या जुग मह पाया आई माया छोटी रास है एक चसे मह पाज लह जाय हथों छुड़की तन स्याहो होए बदन जाए कमलाय जिन सतगुर स्यों चित लाया तिन सुख वसया मन आय हर नाम त्यावह रंग स्यों हर नाम रहे लिवलाय नानक सतगुर सोत

आए, तिसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। गुरमुख कोई गारडू इन मल दल लाई पाए, नानक से उबरे जे सच रहे लिवलाए। पौड़ी ढाडी करे पुकार प्रभु सुनाए सी, अंदर धीरक होए पूरा पाए सी। जो तुर लिखिया लेख से कर्म कमाए सी, जा होए खसम दयाल ता महल घर पाए सी। सो प्रभ मेरा अत वड्डा गुरमुख मिलाए सी। सलोक महला तीजा, सबना का सहो एक है सदी रह हजूर। नानक हुक्म ना मने ता घर ही अंदर दूर, हुक्म पीत ना मनाए सी। जिनको नदर करे हुक्म मन सुख पाया, प्रेम सुहागण होए महला तीजा। रैन सबाई जल मुई कंतना लायो पावो, नानक सुख वसन सुहागणी जिन प्यारा पुरख हर राव। पौड़ी सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता, उपाए किते ना पाईए हर कर्म बधाता। गुर शब्दी हर मन वसै हर सहजे जाता, अंदरों तृष्णा अग्न बुझी हर अमृत सर नाता। वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख बोलाता, सलोक महला तीजा। काया हंस क्या प्रीत है जे पया ही छड जाए, ऐसनों कूड़ बोल के खवाली है जे चलदिया नाल ना।

आई नानक हुकुम ना जातू खसम का जे रहा सच सुमाए महला तीजा एको निश्चल नाम धन होर धन आवे जाए इस धन को तस्कर जोहे ना सकई ना उ चक्का ले जाए एहो हर धन जीए सेती रव रहिया जीए नाले जाए पूरे गुरते पाई मनमुख पल्ले ना पाए धन वपारी नानका जिन्ना नाम धन खटिया आए पौड़ी मेरा साहिब अत वड्डा सत गहर गंभीरा सब जग तिसकै वस है सब तिसका चीरा गुर प्रसादी पाई है निश्चल धन धीरा किरपा ते हर मन वसै भेटै गुर सूरा गुणवंती सलाहिया सदा थिर निश्चल हर पूरा श्लोक महला तीजा त्रिग तिन्ना दा जीविया जो हर सुख पर हर त्याग दे दुख हों मैं पाप कमाए मनमुख अज्ञानी माया मोहे व्यापे तिन बूझ ना काई पाए हलत पलत कोई सुख ना पावे अंत गए पछुताए गुर प्रसादी को नाम त्याए तिस हों मैं विचों जाए नानक जिस पूर्व होवे लिखिया सो गुर चरनी आए पाए महला तीजा मनमुख ऊंदा कौल है ना तिस भगत ना नाम शक्ति अंदर वरतदा कूड़ तिसका है उपाव तिसका अंदर चेतना भिजई मुख फीका आलाव ओए धर्म रलाए ना रलन ओना अंदर कूड़ सुआव नानक करता बंत बनाई।

आई सतगुरु की सेवा न कीतिया अंत गया पछताई अपनी कृपा करे गुर पाई विचों आप गवाई कृष्णा भुख विचों उतरे सुख वसै मन आई सदा सदा सलाही है हिरदय लिवलाई सलोक महला तीजा जे सतगुर सेवे अपना तिसनो पूजे सब कोए सबना उपावा सिर उपाऊ है हर नाम प्राप्त होए अंतर शीतल शांत वसै जप हिरदय सदा सुख होए अमृत खाना अमृत पहनना नानक नाम वडाई होए महला तीजा ए मन गुर की सिख सुन हर पावह गुणी निदान हर सुखदाता मन वसै हउ मैं जाए गुमान नानक नदरी पाई ता अन दिन लागै ध्यान पौड़ी सत संतोख सब सच है गुरमुख पविता अंदरों कपट विकार गया मन सहजे जिता तह जोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता अन दिन हर के गुण रवै गुण प्रगट किता सबना दाता एक है इको हर मिता सलोक महला तीजा ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कही है जे अन दिन हर लिवलाए

को विरला ब्रह्म ज्ञानी, जे हम मैं मेत समाए। नानक किसनो मिलिया सदा सुख पाई है, जे अन दिन हर नाम त्याए। महला तीजा, अंतर कपट मनमुख अज्ञानी, रसना झूठ बोलाए। कपट कीता हर पुरख ना पीजे, नित वेखै सुनै सुभाए। दूजै पाए जाए जग प्रबोधै,

काम क्रोध अहंकारा यह जम की सिरकार है। इना उपर जम का दंड करारा मनमुख जम मग पाईन जिन दूजा भाव प्यारा जमपुर बदे मारियन को सुने ना पुकारा जिसनों कृपा करे तिस गुर मिले।

रस भोगी आप अतीत अलिपत है निर्योग हर जोगी जो तिस भावै सो करे हर करे सो होगी हर गुरमुख नाम ते।

होवै। नानक दर सच्चै शोभा पाई पौड़ी, वज्र कपाट काया गढ़ पीतर, कूड़ कुसत अभमानी, भरम भूले नदर ना आवनी, मन मुखियां दे अज्ञानी, उपाय कितै ना लभनी, कर भेख थके भेखवानी, गुर शब्दी खोलाइयन हर नाम जपानी, हर जियो अमृत बिरख है, जिन पिया ते त्रिपतानी।

बात न जाए सी मन मुख दुख खाता रसना हर रसना चखे हो फीका बोलाता जिन्ना गुरमुखे अमृत चाखिया से जान त्रिपताता सलोक महला तीजा वाह वाह तिसनु आखिया ये सच्चा गहर गंभीर वाह वाह तिसनु आखिया।

का नाम जिन सेविया तिन फल पाया थौ तिन बलिहारे जाओ वाह वाह गुणी निदान है जिसनु दे सुखाए वाह वाह जल थल भरपूर है गुरमुख पाया जाए वाह वाह गुरसिख नित सब करो गुरपूरे वाह वाह पावे नानक वाह वाह जो

पौड़ी ताडी जिसनो आखी है जे खसमै तरे प्यार दर खड़ा सेवा करे गुर शब्दी विचार ताडी दर कर पाए सी सच रखै उरतार ताडी का महल अगला हर कह नाए प्यार।

जाए। नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी। तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुरे अपना सेव सब फल पाया। अमृत हर का नाउ सदा त्याया संत जना कै संग दुख मिटाया। नानक भय अचिंत हर धन निह चलाया। श्लोक महला तीजा खेत में आला उचिया कर उच्चा निर्णय। महल भगती घर सरह सज्जन पहुण्यो बरसना ता बरस घना बहुल बरसह काहि। नानक तिन बलिहार ने जिन गुरमुख पाया मन माहि। महला तीजा मिठा सो जो भावदा सज्जन सो जे रास।

पौड़ी नित जपिए सास ग्रास नाओ पर्वत गारदा जिसनो करे रहम तिस ना विसारदा आप उपावन हार आपे ही मारदा सब किस जाने जान बुझ विचारदा अनक रूप खिन माहे कुदरत धारदा जिसनो लाए सच तिसै उधारदा जिस दै हुवै वल सो कदे ना हारदा सदा भग दी बाण है हौ तिस नमस्कार दा। श्लोक महला पंजवां। काम क्रोध लोभ छोड़िए दीजे अग्न जलाए जीव दया नित जापिए नानक साचा नाओ महला पंजवां। सिमरत सिमरत प्रभ अपना।

तालुक महला पंजवा नदी तरंदड़ी मैंडा खोजना खुंबे मांझ मोहब्बत तेरी।

संग जिन संग जपिए नाउ तिन संग संग ना कीचई नानक जिन्ना अपना सुआउ पौड़ी सा वेला परवान जित सतगुर भेटिया हुआ साधु संग फिर दुख ना तेटिया पाया निकल थान फिर गर्भ ना लेटिया नदरी आया एक सगल ब्रह्मेटिया तत ज्ञान लाए ध्यान दृष्ट समेटिया सबो जपिए जाप जे मुखो बोलेटिया हुक्मे बोजनिहाल सुख सुखेटिया परख खजाने पाए से बहुड़ ना खोटिया सलोक महला पंजवा विशोहे जंबूर हवे ना वंजन गाखड़े जेसो तनी मलन नानक सुख संभू।

नानक प्रीत लगी तिन राम सिंह भेटत साध संगात महला पंजवा राम रमहु बड़भागी हो जल थल महियल सोए नानक नाम आराध्य है।

जिन गिन लैन रलाए एहो ए ना लोड़िए, त्रै गुण इनकै वस किने ना मोड़िए, भरम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़िए, गुर पूरा आराध बिखम दल फोड़िए, हौ तिस अगे दिन रात रहां कर जोड़िए। श्लोक महला पंजवां, किलविख सभे उतरन नीत नीत गुण गाओ, कोट कलेचा उपजह नानक बिसरै नाओ। महला पंजवां, नानक सतगुर।

ही ना जाए। गुर समरथ देव गुरपार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अभेव। सलोक महला पंजवा। उदम करेंदिया जियो तू, कमावदिया सुख पुंच, ध्याएंदिया तू प्रभु मिल। नानक उतरी चिंत महला पंजवा। शुभ चिंतन गोविंद रमन, निर्मल साधु संग, नानक नाम न विसरो एक घड़ी। कर कृपा भगवंत पौड़ी, तेरा कीता हुए ता काहे डरपिए, जिस मिल जपिए।

अहंकार सब किस तिसकै वस न कोई बाहरा सो भगता मन बुठा सच सुमाहरा तेरे दास ध्यान तुद तू रखन वालिया सिर सबना समरथ नदर निहालिया।

हम हर की सेवा, गुजरी घर पहला, मलै न लाछे पार मलु, कर्म लियो बैठो री आई, आवत किने ना पेख्यो, कमने जाने री बाई, कौन कह किन बूझी है, रमैया आकुल री बाई, रहाओ ज्यों अकाश पंखी अलो, खोज निरख्यो ना जाई, ज्यों

पाणी लख चौरासी जिन अपाई सो सिमरो निर्वाणी कायक मंडल कापड़ी आरे अठ अठ कायक राही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाह के पाही गुजरी अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता मह दे मरै सर्प जोन वल वल अवतरै हरी बाई गोविंद नाम मत बीसरै रहाओ अंत काल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बेसवा जोन वल वल अवतरै अंत काल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै अंत काल जो मंदर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै अंत काल नार

0: एक समाई है काटे अव घट रव्या सब ठाई हर पूर्ण ब्रह्म दिखाई है उस्तत करह सेवक मुन केते तेरा अंत न कतहु पाई है सुखदाते दुख भंजन स्वामी जन नानक सद बल जाई है देव गंधारी
1: माई होनहार सो होई है
0: राच रहो रचना प्रभ अपनी कहां लाभ कहां खोई है रहाओ कह फूल है आनंद बिखै सोग कब हसनो कब रोई है कब हूं मैल भरे अभमानी कब साधु संग धोई है कोई न मेटै प्रभ का किया दूसर नाही अलोई है कहो नानक तिस गुर बलिहारी जेहे प्रसाद सुख सोई है देव गंधारी माई

ज्यो अपने प्रभ भाव नीचो नीच नीच अत नाना होए गरीब बलाव रहाव अनक अडंबर माया के बिरथे तास्यों प्रीत कटावो ज्यो अपनो स्वामी सुख माने ताम है सुबा पावो दासन दास ऋण दासन की जन की टहल कमावो सर्व सुख बड़े

सेवा दर्शन दुख उतारियो नाम जपत महासुख पायो चिंता रोग बदारियो काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बसारियो माया बंद काटे कृपा निद नानक आप उधारियो देव गंधारी मन सगल सियान परही करन कराम नहार स्वामी नानक ओट गही रहाव आप मेट पये सरनाई एह मत साधु कही प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया।

किल बिख कोट दुख रोगा प्रभ दिष्ट तुहारी हाते सोवत जाग हर हर हर गाया नानक गुर चरण पराते।

हा रहाउ खोजत खोजत खोज बिचारियो हर संत जना पह आहा तिने प्राप्त इहो निधाना जिनकै कर्म लिखा हा ते बड़ भागी ते पतवंते ते पूरे साहा सुंदर सुगड़ स्वरूप ते।

दुख कनेरा सके दो देव गंधारी पंजवा मन गुर मिल नाम अरादेव सुख सहज आनंद मंगल रस जीवन का मूल भादेव रहा कर कृपा अपना दास कीनो काटे माया पादेव भाओ भगत गाए गुण गोविंद जम का मार्ग साधेव भयो अन ग्रहो मिट्यो मोर्चा अमोल पदार्थ लादेव बलिहार है नानक लख बेरा मेरे ठाकुर अगम अगा देव देव गंधारी पंजवा माई जो प्रभ के गुण गावे सफले आया जीवन फल ताकू पार ब्रह्म।

चंचल सुपने ही पुर जायो, इतनी ना बूझे कब हूँ चलना, विकल पयो संग मायो रहाओ, कुसुम रंग संग रस रचिया, विखिया एक उपायो, लोभ सुने मन सुख कर माने, बेग तहां उठतायो, फिरत फिरत बहुत श्रम पायो।

परयो साध की शरण देव गंधारी महला पंजवा अपने हर पै बिनती कहिए चार पदार्थ अनद मंगल नित सुख सहज सिद्ध लहिए रहाओ मान त्याग हर चरणी लागो इस प्रभ अंचल गहिए आंच न लागे अग्न सागर ते शरण स्वामी की अहिए कोट पराध महा कीर्त धन बहुर बहुर प्रभ सहिए परुणा मैं पूर्ण परमेश्वर नानक तिस शरण हिय देव गंधारी पंजवा गुर के चरण हृदय प्रवेशा रोग सोग सब दुख बनाते उतरे सगल कलेचा रहाव जन्म जन्म के किल विकनाश हैं

नानक दास बलिहारी चके तिन देव गंधारी महला पंजवा माई प्रभ के चरनिहारो करहु अनग्रहु स्वामी मेरे मन ते कभू ना डारो रहाओ। साधु धूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध बिख जारो सब ते नीच आत्म कर मानो मन में है इहो सुख धारो गुण गावे है ठाकुर अबनासी कलमल सगले चारू नाम निधान नानक दान पावो कंठ लाए उड़ तारो देव गंधारी महला।

जाको उपजी छोड़ न कतहु जाता रहाउ बैठत हर हर सोवत हर हर हर रस भोजन खाता अठ सठ तीरथ मज्जन कीनो साधु धूरी नाता सफल जन्म।

लाइया संकट घोर कटे खिन तर नानक हर दर्श समाइया देव गंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाव दुए कर जोड़ करी बेनंती पार ब्रह्म मन त्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन को बल जाइए जो सबना करे उदार।

यो पाए छोड़ न जाए सद ही संगे अन दिन गुर मिल गाए रहाओ मिलियो मनोहर सर्ब सुखैना त्याग न कतहु जाए अनक अनक भांत बहु पेखे प्रिय रोम न समसर लाए मंदर भाग सोभ द्वार अनहत रुण चुन लाए कहो नानक सदा रंग माणी ग्रह प्रिय तीके सद थाई।

दीन दयाल भये प्रभ अपने, बहुड़ जन्म नहीं मारियो रहाओ। साध संगम गुण गाव है हर के, रतन जन्म नहीं हारियो। प्रभ गुण गाए बिखै बन तरिया, कुल है समूह उधारियो। चरण कमल बसिया रिद पुत्र, तास ग्रास उचारियो। नानक उठ गही जगदीश्वर, पुनः पुनः बलिहारियो। राग देव गंधारी महला पंजवा कर चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। करत फिरे बन भेख, मोहन रहत नराज।

चार बरन मुक्त पए देव तो गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया दुतिया गए सुख हो कहो नानक पव सागर तरिया हर निध पाई सहजो राग देव गंधारी महला पंजवा कर छेवा।

रहाउ, काहे प्रमत हो तुम प्रमहु ना पाई। रवियारे रविया सर्वथान, ज्यों बैसंतर काष्ट मजार, बिन संजम नहीं कार्य सार। बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार, मिल संगत ताज अभमान,

रहाउ कह पखारु हो कर चतुराई विस्मन विस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध अर साधक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादक चतुर वेद उचरत दिन रात।

छुटकी रे मन छुटकी रे ताकत संग ना छुटकी रे रहाओ। जो काजर भर मंदर राखियो जो पैसा कालू कीरे दूरों ही ते भाग गयो है जिस गुरमिल छुटकी त्रे कुटीरे मांगो दान कृपाल कृपा।

साध पगा हे तरुल तीरे राग देव गंधारी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब दिन के सम्राट पंथ बिठले हम बल बल जाओ।

राम। हर रस बीता हर मन प्यारा, मन हर रस नाम चकोले राम। गुरमत मन ठहराइए मेरी जिंदड़िए, अनत ना काहू डोले राम। मन चिंदड़ा फल पाया हर प्रभ, गुण नानक बाणी बोले राम। गुरमत मन अमृत गुठड़ा मेरी जिंदड़िए, मुख अमृत बैन अलाए राम। अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़िए, मन सुनिए हर लिव लाए राम। श्री वचुन्ना हर प्रभ पाया, गल मिलिया सहज सुपाए राम। जन नानक मन आनंद भया है मेरी जिंदड़िए, अनहत शब्द बजाए राम। सखी सहेली मेरिया मेरी जिंदड़िए, कोई हर प्रभ आन मलावै राम। हौ मन देवो तिसे अपना मेरी जिंदड़िए, हर प्रभ की हर कथा सुनावै राम। गुरमुख सदा आराध हर मेरी जिंदड़िए, मन चिंदड़ा फल पावै राम। नानक भज हर शरनागति मेरी जिंदड़िए, वडभागी नाम त्यावै राम। कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदड़िए, गुरमत नाम परगासे राम। हौ हर बाज उदीनिया मेरी जिंदड़िए, ज्यों जल बिन कमल उदासे राम। गुरपुरै में लाया मेरी जिंदड़िए, हर सज्जन

मन सुखा हरिया होया मेरी जिंदड़िए, हर हर नाम त्याए राम, हर भाग वड्डे लिख पाया मेरी जिंदड़िए, जन नानक नाम समाए राम, हर सेती मन बेदया मेरी जिंदड़िए, ज्यों बालक लग दुध कीरे राम, हर बिन चांत ना पाईऐ मेरी जिंदड़िए, ज्यों चातरक जल बिन तेरे राम।

गुण गावै हर प्रभ कीरे राम ते सर्वन भले शोभ नीक है मेरी जिंदड़िए हर कीर्तन सुने है हर तेरे राम सो शीस भला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़िए जो जाए लगे गुर पैरे राम गुर विट्टो नानक वारिया मेरी जिंदड़िए जिन हर हर नाम च तेरे राम ते नेत्र भले परवान है मेरी जिंदड़िए जो साधु सतगुरु देख है राम ते हस्त पनीत पवित्र है मेरी जिंदड़िए जो हर जस हर हर लेख है राम तिस जन के पग नित पूजिए है मेरी जिंदड़िए जो मार्ग धर्म चले सह राम नानक तिन विटो वारिया मेरी जिंदड़िए हर सुन हर नाम मने सह राम धरत पाताल आकाश है मेरी जिंदड़िए सब हर हर नाम त्यावै राम पौन पानी वै संतरो मेरी जिंदड़िए नित हर हर हर जस गावै राम वण तृण सब आकार है मेरी जिंदड़िए मुख हर हर नाम।

एक अराध्या मेरी जिंदड़िए तिना नाही किसै दी किस चडाराम गुर सेवै हर महल पाया मेरी जिंदड़िए झख मारन सब निंदक कंडाराम जन नानक नाम त्याया मेरी जिंदड़िए तुर मस्तक हर लिख छडाराम बिहागड़ा महला चौथा सब जी तेरे तू वरतदा मेरे हर प्रभ।

तिनकै संग मल उतरै मेरी जिंदड़िए रंग राते नदर निशाने राम। नानक की प्रभ बेनती मेरी जिंदड़िए मिल साधु संग अगाने राम। हे रसना जप गोविंदो मेरी जिंदड़िए जप हर हर कृष्णा जाए राम। जिस दया करे मेरा पार ब्रह्म मेरी जिंदड़िए इस मन नाम वसाए राम। जिस भेटे पूरा सतगुरु मेरी जिंदड़िए सो हर धन निध पाए राम। वड भागी संगत मिले मेरी जिंदड़िए नानक हर गुण गाए राम। थान थनंतर राव रहे आ मेरी जिंदड़िए

भाइयों, हर हर नाम अराधे राम, कर सेवो हो पूरा सतगुरु मेरे लाल जियो, जम का मार्ग साधे राम, मार्ग बिखड़ा साध गुरमुख, हर दरगहा सुबा पाईए, जिनको बधातै तुरहु लिखिया, तिन्ना रहन दिन लिव लाईए, फौ मैं ममता मोह छुट्टा, जा संग मिलिया साधे, जन कह नानक मुक्त हुआ, हर हर नाम अरादे, कर जोड़े हो संत एकत्र होए मेरे लाल जियो,

धावे जिस होए कृपाल दयाल स्वामी सो प्रभ अंक समावे भाग मस्तक होए जिसकै तिस गुर नाल सनेहा जन कह नानक मिल साध संगत हर हर नाम पूजेहा दह दिस खोजत हम फेरे मेरे लाल जियो हर पाए अड़ा घर आए राम हर मंदर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो हर तिस मैं रहया समाए राम सर्वे समाणा आप स्वामी गुरमुख प्रगट होया मिटिया अंधेरा दुख नाथा हमें हर रस चोया।

संत प्रसाद तरे भव जल पूर्व लिखिया पाया वजी वधाई मन शांत आई मिलिया पुरख अपारी बिनवंत नानक सिमर हर हर इच पुन्नी हमारी बिहागड़ा महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद वद सुख रहनड़िए प्रिया प्रेम लगा घट दुख नींदड़िए परसों सदा पगा पग धूर बांचो सदा जाचो नाम रस बैरागिनी प्रिय रंग राती सहज माती महा दुर्मत त्यागिनी गह पुजा लीनी प्रेम पीनी मिलन

करन लगह मन प्रिय प्रेम कणा हर की भगत मंगह हर भगत पाई है प्रभ ते आई है जाहे मिलिए हर जन मान मोह विकार तजिए अर्प तन तन एहो मना बड पुरख पूरन गुण संपूर्ण भ्रम भीत हर हर मिल भगह है बिनवंत नानक सुन मंत्र सखिए हर नाम नित नित नित जपह हर नार सुहागने सब रंग माणी रांड ना बैसे प्रभ पुरख चिराणी नह दुख पावे प्रभ त्यावे तन ते बदभागिया सुख सहज सोवह किल विख खोवह नाम रस रंग जागिया मिल प्रेम रहना हर नाम गहना प्रिय बचन मीठे पाणी बिनवंत नानक मन इच्छ पाई हर मिले पुरख चिराणी तित ग्रह सोहलड़े कूड आनंदा मन तन राव रहया प्रभ परमानंदा हर कंत अनंत दयाल श्री धर गोविंद पतत उधार नू प्रभ कृपा धारी हर मुरारी भय सिंध सागर तारनू जो सरण आवै तिस कंठ लावै एहो बिरध स्वामी संदा बिनवंत नानक।

चितवंत दर्शन सदमना, शुभ दिवस आए गह कंठ लाए, प्रभु ऊचे अगम अपारी, बिनवंत नानक सफल सब किश, प्रभ मिले अत प्यारी, बिहागरा महल।

गुणग पालना जपह रसना फिर कदहो से देह आवे तरवर सुन्ने नह पात जुड़ते जम मग गौन अकेली बिनवंत नानक बिन नाम हर के सदा फिर तुदुहेली तू बलवंच लूक करह सब जाने जानी राम लेखा धर्म भया तिल पीड़े कहानी राम किरत कमाने दुख सहो प्राणी अनक जोन प्रमाया महामोहनी संग राता रतन जन्म गवाया एक सहार के नाम बाजू आन काज सियाणी बिनवंत नानक लेख लिखिया भरम मोहे लोभाणी बीच ना कोई करे किरत घन विछड़ पया आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया पकड़े चलाया अपना कमाया महामोहनी रातिया गुण गोविंद गुरमुख ना जपया तपत थम गल लातिया काम क्रोध अहंकार मूठा खोए ज्ञान पछतापया बिनवंत नानक संजोग भूला हर जाप रसन ना जापया तुझ बिन को नाही प्रभ राखन हारा राम पतत उदारन हर बिरद तुम्हारा राम पतत उदारन सरन स्वामी कृपा निद दयाला अंधकूप ते उधार करते सगल घट प्रतपाला।

कमावनी अलिपत बंधन रहत करता किया अपना पावनी कर अनग्रह पतत पावन बहु जोन प्रम ते हारी बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण अधारी तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम पाल है अकिरत घना पूर्ण दृष्ट तेरी राम अगाध बोध अपार करते मोहे नीच कछु न जाना रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच इयाना त्याग चलती महाचंचल दोख कर कर जोरी नानक शरण सम

कै शब्द मन भेजिए सदा वसै हर नाल नानक नाम तिना को मिले जिन हर वेखै नदर निहाल महला तीजा सिफत खजाना बख्श है जिस बख्शै सो खर्चै खाई सतगुर बिन हाथ ना आवई सब थके कर्म कमाई नानक मनमुख जगत धन हीन है अगै भुखा के खाई पौड़ी सब तेरी तू सब सदा सब तुद उपाया सबना विच तू वरतदा तू सबनी त्याया तिस दी तू भगत थाए पाए जो तुद मन पाया जो हर प्रभ भावै।

आईया सहज न लगू भाव शब्द साधना पायू मन हठ क्या गुण गाय नानक आया सो प्रवान है जे गुरमुख सच समाए महला तीजा अपना आपना पछाणे मूड़ा अवरा आख दुखाए मुंडा दी खसलत ना गईया अंधे विछड़ चोटा खाए सतगुर कै भै भन ना घड़ियो रह अंक समाए अन दिन सहसा कदे ना चूकै बिन शब्द दुख पाए काम क्रोध लोभ अंतर सबला नित

पाए गुर का शब्द संभाल तू मूड़े गत मत शब्दे पाए नानक सतगुर तद ही पाए जा विचो आप गवाए पौड़ी जिस दै चित वसया मेरा स्वामी तिसनो क्यों अंदेसा किसै गल दा लोड़ी है हर सुख दाता सबना गल्लां का तिसनो त्याए दया केव निमख घड़ी मुंह मोड़ी है जिन हर त्याया तिसनो सर्ब कल्याण होए नित संत जना की संगत जाए बहिया मुंह जोड़ी है सब दुख भुख रोग गए हर सेवक के सब जन के बंधन तोड़ी है हर कृपा ते हुआ हर भगत जना कै मुहे दिठ जगत तरिया सब लोड़ी है। श्लोक महला तीजा सारस ना जल जाओ जिन हर का स्वाओ ना पाया नानक रसना शब्द रसाए जिन हर हर मन वसाया। महला तीजा सारस ना जल जाओ जिन हर का नाओ वसारिया नानक गुरमुख रसना हर जपै हर कै नाए प्यारिया। पौड़ी हर आपे ठाकुर सेवक भगत हर आपे करे कराए हर आपे वेखै विगसै आपे जित पावै तित लाए हर इक ना मार्ग पाए आपे हर इक ना उजड़ पाए हर सच्चा साहिब सचत पावस कर वेखै चलत सुभाए।

नानक तरवर एक फल दुए पंखेरु आहे आवत जातना दी सही ना पर पंखी ताहे बहुरंगी रस भोगिया शब्द रहै निर्वाण हर रस फल राते नानका कर्म सच्चा निशान पौड़ी आपे धरती आपे है राह आप जमाए पिसावै आप पकावै आप भांडे दे परोसै आपे ही बह खावै आपे जल आपे दे शिंगा आपे चुली भरावै आपे संगत सद बहालै आपे विदा करावै जिसनु कृपाल हुए हरे आपे तिसनु हुक्म मनावै। सलोक महला तीजा। कर्म धर्म सब बंदना पाप पुन संबंध ममता मोह सो बंदना पुत्र कलत्र सो तंद जह देखा तह जेवरी माया का संबंध।

आप भीजै आपे ही बह पूजे करता आप परपंच करीजै आप परविरत आप निर्विरति आपे अकाथक थीजै आपे पुन सब आप कराए आप लिप्त वर्तीजै आपे सुख दुख देवै करता आपे बख्श करीजै। श्लोक महला तीजा। सेका अंदर हो जोर छाड तू पहो कर झल गवाए गुर कै भै केते निस्तरे भै विच निरभउ पाए मन कठोर शब्द भेद तू शांत वसै मन आए शांति विच कार कमावनी सा खसम पाए थाए नानक काम।

पर बुझे सब आपे, एक थैं आपे करे इयाण, इकना अंदर महल बुलाए, जां आप तेरे मन सच्चे पाणी, जिन्ना आपे गुरमुख दे वड़ियाई, से जन सच्ची दरगह जानी। सलोक मर्दाना पहला, कल कलवाली काम मद, मनुआ पीवन हार, क्रोध कटोरी मोहे भरी, पीलावा अहंकार, मजलस कूड़े लभ की, पी पी होए खुआर, करनी लाहन सत गुड़, सच सरा कर सार, गुण मंडे कर सील के हो, शर्म मास आहार, गुरमुख पाईए नानका, थादे जाहे विकार। मर्दाना पहला, काया लाहने आप मद, मजलस तृष्णा तात, मनसा कटोरी कूड़ भरी, पीलाए जमकाल, इत मद पीते नानका, बहुते खटी है बेकार। ज्ञान गुड़ सलाह मंडे, पौ मास आहार, नानक एहो भोजन सच है, सच नाम आधार। काया लाहन आप मद, अमृत किसकी धार, सत संगत स्यों मिलाप होए, लिव कटोरी अमृत भरी, पी पी कट है बेकार। पौड़ी आपे सुर नर गण गंधर्वा, आपे खट दर्शन की बाणी, आपे सेव संकर महेशा, आपे गुरमुख अकथ कहानी, आपे जोगी आपे भोगी, आपे सन्यासी फिरै बिबाणी, आपे नाल गोसत आप उपदेसै, आपे

हर स्यों प्रीत उपजै माया मोह जलावै गुर प्रसादी दुगदा मरै मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार नानक संध्या करै मनमुखी जियो ना टिकै मर जम्मै होए खुआर महला तीजा प्रियो प्रियो करती सब जग फिरी मेरी प्यास ना जाए नानक सतगुर मिले मेरी प्यास गई फिर पाया घर आए पौड़ी आपे तंत परम तंत सब आपे आपे ठाकुर दास भया आपे दस अठ वर्ण उपायन आप ब्रह्म आप राज लया आपे मारे आपे छोड़े आपे बख्शे करे दया आप अभुल ना भुलै कब ही

साहिब संभाले हो साहिब सदा हजूर है पर मैं के शौड़ कट के अंतर ज्योत तरे हो हर का नाम अमृत है दारू एहो लाए हो सतगुर का भाणा चित रखो हो संयम सच्चा ने हो नानक ऐथे सुख है अंदर रख सी अगे हर स्यों केल करे हो पौड़ी आपे भार अठारह बनस्पत।

नदरी सच मद पाई है, सतगुर मिलै जिस आय, सदा साहिब कै रंग रह, महली पावै थाऊ महला तीजा, इहो जगत जीवत मरै, जा इसनों सोजी होए।

गुर प्रसाद जीवत मर ता फिर मरना होए पौड़ी जिसदा कीता सब किश होए तिसनू परवाह नाही किसै केरी हर जियो तेरा दिता सब को खावे सब मोहताजी कढ़े तेरी जे तुदनों सलाहे सो सब किश पावे।

गुर पर साथी जीवत मरे हुक्म बूझे सोय नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए पौड़ी जां आप कृपाल होए हर स्वामी ता अपना नाउ हर आप जपावे आपे सतगुर मेल सुख देवे अपना सेवक आप हर भावे अपनिया सेवका की आप पैज रखे अपनिया भगतां की पैरी पावे धर्म राय है हर का किया हर जन सेवक नेड़ ना आवे जो हर का प्यारा।

होए। नानक गुरमुख पाई जा कौ नदर करे पौड़ी, आपे सब घट अंदरे आपे ही बाहर, आपे गुप्त वर्तदा आपे ही जाहर, जुग शक्ति गुबार कर वर्त्या सुन्ना हर, उथै वेद प्राण ना सासता आपे हर नर हर,

तृप्त भई हऊ तिन बलिहारे जाऊ। मैं की नजर न आव ही वसह हपिया नाल तिखा तिहाया क्यों लह जा सर भीतर पाल। नानक तेरा बाणिया तू साहिब मैं रास मन ते धोखा ता लह जा सिफत करी अरदास। वडहंस महला पहला गुणवंती सोहरावया

चूड़ा भन पलंग स्यो मुंदे सन बाही सन बाह एते वेश करेंदिये मुंदे सहो रातो अबराह ना मनियार ना चूड़िया ना से बंगड़िया जो सह कंठ ना लगिया जलन से बाहड़िया सब सहिया सहो रावण गईया हों दादी कै दर जावा अम्माली हों खरी सुचजी तै सह एक ना पावा माठ गुंदाई पट्टियां भरिए मांग संधूरे अगे गई ना मनिया मरो वसूर वसूरे मैं रवंदी सब जग रुन्ना रुनने बणो पंखेरू एक ना रुन्ना मेरे तन का बिरहा जिन्हो पिरहो विछोड़ी सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए आए ना सका तुझ कन प्यारे भेज ना सका कोई।

छड़ी गुर कै शब्द मलाए मेरी मेरी कर दे घट गए इना हाथ के हो ना आया सतगुर मिले है सच मिले सच नाम समाया आसा मनसा इहो शरीर है अंतर जोत जगाए नानक मनमुख बंद है गुरमुख मुक्त कराए वडहंस महला तीजा सुहागनी सदा मुख उजला गुर कै सहज सुभाई सदा फिर राव है अपना विचों आप गवाए मेरे मन तू हर हर नाम त्याए सतगुर मोह को हर दिया बुझाए रहाओ दुहागनी खरिया बिल लांदियां तिन्ना महल ना पाए।

मलाया, पूरे सतगुर हर नाम त्याया रहाय। ब्रह्म वेद बाणी परगासी, माया मोह पसारा, महादेव ज्ञानी वरतै घर अपने। तामस बहुत अहंकारा, किसन सदा अवतारी रूदा, कित लग तरै संसारा। गुरमुख ज्ञान रते जोगे अंतर, चूकै मोह गुबारा।

देह शरीर सुख होवै शब्द हर नाय नाम परमल हृदय रहया समाय नानक मस्तक जिस वड भाग गुर की बाणी सहज बैराग।

ज्ञान आए, परमे भूला फिरे संसार, मर जन्म जम करे खुआर, नानक से बड़ भागी जिन हर नाम ते आया, गुर प्रसादी।

दिन पेर रावया सा भली सुहागण से मैं गुण नाही हौ क्या करी दोहागण नित सुहागण सदा पेर रावे मैं कर्महीन कब ही गल लावे तू पेर गुणवंता हौ औगण यारा मैं निर्गुण बख्श नानक वेचारा बड़हंस महला चौथा कर दूजा।

सतगुर है गुर पुछ मन मुग्ध समझावा भूला मन समझै गुर शब्दी हर हर सदा त्याए नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा तो हर चरणी चित लाए आऊं सब वेश करी पिर कारण जे हर

खाले। जिसनो नदर करे मेरा प्यारा सो हर हर सदा संभाले, सो हर हर नाम सदा सदा संभाले। जिस सतगुरु पूरा मेरा मिलया नानक हर जन हर इक्के होए, हर जप हर सेती रलिया। वडहंस महला पंजवा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हत ऊंचा ताका दरबारा अंत नाही किश पारा वारा। कोट कोट कोट लख तावै एक तिल ताका महल ना पावै। सहावी कौन सो वेला जित प्रभ मेला रहाउ, लाख भगत जाको अराध है लाख तपीसर तप ही साध है। लाख जोगीसर करते जोगा लाख पुगीसर भोग है भोगा। कट कट वस है जान है थोड़ा,

संतन पह आया, दुख भ्रम हमारा सगल मताया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूंचा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा, वडहंस महला पंजवां, धन सो वेला जित दर्शन करना।

अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी सच हुक्म तुम्हारा तख्त नवासी आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी तुम मेहरवान दास हम दीना नानक साहिब भरपुर लीना।

प्रभ दाते जिसह जनावो हो तिनह तुम जाते सदा सदा जाई बलिहारी इत उत देखो ओट तुम्हारी मोहे निर्गुण गुण किशु ना जाता नानक साधु देख मन राता वडहंस महला पंजवा अंतर जामी सो प्रभ पूरा दान दे साधु की तूरा कर कृपा प्रभ दीन दयाला तेरी ओट पूर्ण गोपाला रहाओ जल कल महियल रहे आपर पूरे निकट वसै नाही प्रभ दूरे जिसनो नदर करे सो त्याए आठ पैर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे सरन परे हो नानक हर द्वारे वडहंस महला पंजवा तू वड दाता अंतर जामी सब मह रविया पूर्ण प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम अधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे मन निर्मल होए संता तूरे चरण कमल हृदय उरतारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारी।

अंतर भूख न उतरै अमाली। जे सौ भोजन मैं नीरे मेरा मन तन प्रेम परम का, बिन दर्शन क्यों मन धीरे। सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई,

सार संभाली मैं निर्गुण कौ रख लेता हों भई उड़ीनी कंत को अमाली सो पेर कद नैनी देखा सब रस भोगण विसरे बिन पिर कितै ना लेखा इहो कापड़ तन ना सखावई कर ना सको हों वेसा जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा तिने आगे हम आदेसा मैं सब शिंगार बनाया अमाली बिन पेर कामना आए जां सह बात ना पुछिया अमाली तां बिरथा जोबन सब जाए तन तन ते सुहागणी अमाली जिन सहो रहया समाए हों वारिया तिन सुहागणी अमाली तिनके धुआं सद पाए जिचर दूजा भरम सा अमाली।

वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसैना आख झगड़ा पावना, नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप वन्यावना।

वारी खसम कढाए किरत कमावण सब उपायन आप आपे नदर करे कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे सब कोई मीठा मांग देखे खसम भावे सो करे किश पुन दान अनेक करनी नाम तुलना समसरे नानका जिन नाम मिलिया कर्म होवा तुर कदे सब उपायने आप आपे नदर करे बड़हंस महला पहला करहो दया तेरा नाम बखाना सब उपाय आप आपे सर्ब समाना सर्बे समाना आप तू है उपाय तंदै लाइया एक तुझ ही किए राजे टिकना भिख पवाइया लोभ मोह तुझ किया मीठा एत भरम भलाना सदा दया करो अपनी ताम नाम वखाना नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना दुख गया सुख आए समान गावन सुर नर सुगड़ सुजान सुर नर सुगड़ सुजान गावह जो तेरे मन भावहे माया मोहे चेतह नाही अहला जन्म गवावहे एक मूड मुग्ध न

नानक हर की भगत नराली गुरमुख विरलै कीजै गुरमुख खेती हर अंतर बीजी हर लीजै शरीर जमाए राम अपने घर अंदर रस पुंच तू लाहा लै परथाए राम लाहा परथाए हर मन वसाए धन खेती वापारा हर नाम त्याए मन

नानक नाम बीज मन अंदर सच्चै शब्द सुपहाय हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम गुरमति मन निज घर वसिया सच्चै शब्द बैरागो राम मुख मस्तक भागो सच बैरागो साच रते विचारी नाम बिना सब जग बौराना शब्दे हूं मैं मारी साचे शब्द लाग मत उपजे गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पहु पंजन हर रावे मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वडियाई राम गुरमति हुक्म बूझी हुक्मे मेल मलाई राम हुक्म मलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वडियाई गुर ते पाई सच सवार नहारा पौ भंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहया समाई वडहंस महला तीजा मन मेरिया तू सदा

सत्य शब्द लिव लाए, सदा सच रत्ता मन निर्मल आमन जान रहाए। दूजे पाए परम भगुती, मन मुख मोही जम काल। कह नानक सुन मन मेरे, तू सदा सच संभाल। मन मेरिया अंतर तेरा निदान है, बाहर वस्त ना पाल। जो भावे सो पुंच तू, गुरमुख नदर निहाल। गुरमुख नदर निहाल मन मेरे, अंतर हर नाम सिखाई। मनमुख अंधले ज्ञान विहूणे,

वापारा खोटे खरे सब परखियन तित सच्चे कै दरबारा राम खोटे दरगहा सुटियन उभे करन पुकारा राम उभे करन पुकारा मुग्ध गुवारा मन मुख जन्म गवाया विख्या माया जिन जगत पुलाया साचा नाम ना पाया मन मुख संता नाल वैर कर

रसना हर रस पीजै राम, रसना हर रस पीजै अंतर पीजै, साच शब्द बीचारी अंतर खूटा अमृत भरिया, शब्दे काड पीए पनिहारी, जिस नदर करे सोई सच लागे, रसना राम रबीजै, नानक नाम रते से निर्मल, होर हौ मैं मैल परिजै, पंडित ज्योत की सब पढ़ पढ़ कूक दे, किस पह करह पुकारा राम, माया मोह अंतर मल लागे, माया के वापारा राम, माया के वापारा जगत प्यारा, आवन जान दुख पाई, बिख का कीड़ा बिख स्यों लागा, बिष्टा माही समाई, जो तुर लिखिया सोए कमावे, कोए ना मेटन हारा, नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया, होर मूरख कूक मोए गावारा, माया मोहे मन रंगिया, मोहे सुध न काई राम, गुरमुख इहो मन रंगी है, दूजा रंग जाई राम, दूजा रंग जाई साच समाई, सच भरे पंडा।

सच्चा मन पाया सच वसाया, शब्द रत्ते अंत नबेरा, नानक नाम रत्ते से सच समाणे, बहुर ना पवजल फेरा, माया मोह सब बरल है, दूजे

टेवा लागे से वडभागे जुग जुग एको जाता जात सत संयम कर्म कमावे बिन गुर गत नहीं पाई नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवै हर सरनाई जो हर मत दे सा उपजै होर मत ना काई राम अंतर बाहर एक तू आपे देह बुझाई राम आपे देह बुझाई अवर ना पहाई गुरमुख हर रस चाखिया दर साचै सदा है साचा साचै शब्द सुभाखिया घर मह निज घर पाया सतगुरु दे वडाई नानक जो नाम रते से महल पाए मत प्रवान सच साई वडहंस महला चौथा चंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा मन सतगुर प्रीत लगाई राम हर हर

जप हर हर नाम भिक्से राम, जप हर हर नाम कमल पर गास्ते, हर नाम नमंग निद पाई, हम मैं रोग गया दुख लाथा, हर सहज समाध लगाई, हर नाम वडाई सतगुर ते पाई, सुख सतगुर देव मन परसते, हौं जीवा सतगुर देख सरसे।

किन के जिन सतगुर पुरख प्रभ के आया तू वरदाता अंतर जामी मेरी शरदा पूर हर राया गुरसिख मेल मेरी शरदा पूरी अन दिन राम गुण गाए जिन सतगुर पाया किन हर प्रभ मेल मलाए हों वारी गुरसिख मीत प्यारे राम हर नाम सुनाए मेरा प्रीतम नाम अधारे राम हर हर नाम मेरा प्राण सिखाई किस बिन घड़ी निमख नहीं जीवा हर हर कृपा करे सुख दाता गुरमुख अमृत पीवा हरे आपे शरदा लाए मलाए हरे आपे आप सवारे हों वारी गुरसिख मीत प्यारे हरे आपे पुरख निरंजन सोई राम हरे आपे मेले करे सो होई राम जो हर प्रभ भावे सोई होवे अवर न करना जाई बहुत सियाणप लया न जाई कर थाके सब चतुराई गुर प्रसाद जन नानक देखिया मैं हर बिन अवर ना कोई हरे आपे पुरख निरंजन सोई बड़ा हंस महला चौथा हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम तिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया अज्ञान अंधेर बनासे सतगुर सेव परम पद पाया हर जपया सास ग्रासे जिनको हर प्रभ कृपा सारी ते सतगुर सेवा लाया हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया

सतगुरु पुरख ना पाया हम चातरक दीन हर पास बेनंती राम गुर मेल मेरा प्यारा हम सतगुर करह भगती राम हर हर सतगुर करह भगती जा हर प्रभ कृपा तारे मैं गुर बिन अवर ना कोई बेली गुर सतगुर प्राण हमारे कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया हर हर नाम हर सती हम चातरक दीन हर पास बेनंती वडहंस महला चौथा हर कृपा कर सतगुर मेल सुखदाता राम हम पूछे हैं सतगुर पास हर बाता राम सतगुर पास हर बात पूछे हैं जिन नाम पदार्थ पाया पाए लगे हैं नित करहे बेनंती गुर सतगुर पंथ बताया सोई भगत दुख सुख समत कर जाने हर हर नाम हर राता हर कृपा कर गुर सतगुर मेल सुख दाता सुन गुरमुख नाम सब बिन से हूं मैं पापा राम जप हर हर

अपनवारे सतगुर ज्ञान खड़ग हाथ दीना जम कंकर मार बिदारे हर प्रभ कृपा धारी सुख दाते दुख लाते पाप संतापा सुन गुरमुख नाम सब बिनसे हों मैं पापा जप हर हर नाम मेरा मन पाया राम मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम गुरमुख जप सब रोग गवाया अरोगत भय शरीरा अनदिन सहज समाध हर लागी हर जपया गहर गंभीरा जात अजात नाम जिन त्याया इन परम पदार्थ पाया जप हर हर नाम मेरा मन पाया हर तारु हो हर तारु कृपा कर।

हर मिले हर गुण सुख घनी, गुर शब्द पाया हर नाम त्याया, बडभागी हर रंग हर बाणी, हर मिले स्वामी अंतर जामी, हर नव तन हर नव रंगिया, नानक बखाने नाम जाने, हर नाम हर प्रभ मंगिया, कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम, मन मैगल गुर शब्द वस आया राम, मन वसगत आया परम पद पाया, सा धन कंत प्यारी, अंतर प्रेम लगा हर सेती, कर सो है हर प्रभ नारी, हर रंग राती सहजे माती, हर प्रभ हर हर पाया, नानक जन हर दास कहत है, वडभागी हर हर त्याया, देहे घोड़ी जी जित हर पाया राम, मिल सतगुर जी मंगल गाया राम, हर गाए मंगल राम नामा, हर सेव सेवक सेवकी, प्रभ जाए पावे रंग महली, हर रंग माने रंग की, गुण राम गाए मन सुपहाए, हर गुरमति मन त्याया, जन नानक हर कृपा तारी, देह घोड़ी चढ़ हर पाया, राग वडहंस महला पंजवा, शंत घर चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद,

जमाणी अस्थर थिया अमृत पिया रहिया आवण जानी सो कर लता सहज समदा हर का नाम अधारा कहो नाम।

राम गुरमंत्र शब्द सच दीता राम सच शब्द ते आया मंगल गाया चूके मनो अदेसा सो प्रभ पाया कतह ना जाया सदा सदा संग बैसा प्रभ जी भाणा सच्चा माणा प्रभ हर तन सहजे दीता कहो नानक तिस जन बलिहारी तेरा दान सबनी है लीता तौ भाणा ता त्रिपत अगाए राम मन थिया ठंडा सब त्रिशन बुझाए राम मन थिया ठंडा चूकी डंजा पाया बहुत खजाना सिख सेवक सब पुंचन लगे हौ सतगुर कै कुर्बाना निरभउ भये खसम रंग राते जमकी त्रास बुझाए नानक दास सदा संग सेवक

0: तुद सलाही
1: गुण अवगण मेरा किस ना बिचारिया
0: बख्श लिया खिन माही नौ निद पाई बजी वधाई वाजे अनहद तूरे कहो नानक मैं वर घर पाया मेरे लाथे जी सगल वसूरे सलोक क्या सुनेंदो कूड़ वंजन पवन चला रिया नानक सुनियर ते परवान जो सुनेंदे सच धनी चंत तिन घोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया राम ते सहज सुहेले जिन हर हर रसना भणिया राम ते सहज सुहेले गुण अमोले जगत उदारने आए पै बोहित सागर प्रभ चरणा केते पार लंघाए जिन कौ कृपा करी मेरे ठाकुर तिनका लेखा ना गणिया कहो नानक तिन कोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया सलोक लोइन लोई डिठ प्यास ना बुझै मूह घणी नानक से अखड़िया बया

ने से प्रधान्य हर से तीरंग राते हर रस अगाए सहज समाए घट घट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने पाणे कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिनकै सद कुरबाणी सलोक देह अंधारी अंध सुनी नाम विहूणिया नानक सफल जनम जय घट गुठा सच धनी संत तिन खनिया वन्या जिन मेरा हर प्रभ डीठा राम जन चाख अगाणी हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तूठा हमें बूठा सुख भये दुख नाश भरम बनाश तन ते जप जगदीश ईसह जय जय मोह रहत विकार थाके पंच ते संग तूटा कहो नानक तिन खनिया वन्या जिन घट मेरा हर प्रभु बूठा सलोक जो लड़ींदे राम सेवक से कांडिया नानक जाने सत साई संत ना बाहरा शंत मिल जल जलह खटाना राम संग ज्योति ज्योत मलाना राम समाए पूर्ण पुरख करते आप आपह जानिए तह सुन सहज समाध लागी एक एक वखाणिए आप गुप्ता आप मुक्ता आप वखाना नानक भ्रम पै गुण बिनासे मिल जल जलह।

पूर्व कमाया धन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जग तंदै लाया साहिब सिमरहो मेरे भाई हो सबना एहो पयाण इतै तंदा कूड़ा चार देहा आगै सर पर जाना आगै सर पर जाना ज्यों मेहमान काहे गर्ब कीजै जित सेवै दरगहा सुख पाईऐ नाम तिसै का लीजै आगै हुक्म न चलै मूले सिर सिर क्या वेहाना साहिब सिमरिहो मेरे भाई हो सबना एहो पयाना जो तिस भावै समरथ सो थीऐ हीलड़ा एहो संसारु जल थल मही अल रव रहिया साचड़ा सिरजन हारु साचा सिरजन हारु अलख अपारु ताका अंत न पाया आया तिनका सफल भया है एक मान जिन्नी त्याया ताहे ताहे उसारे आपे हुक्म सवारना।

ऐथे आया सब को जासी, कूड़ करहो अहंकारो, नानक रुन्ना बाबा जानिए, जे रोवे लाए प्यारो, वड़हंस महला पहला, आव हो मिल हो सहेली हो, सचड़ा नाम लए हां, रोवे है बिरहा तन का, अपना साहेब संभाले हां, साहेब संभाले हैं पंथ निहाले हैं, असा पे उते जाना, जिसका किया तिन ही लिया, हुआ तिसे का पाणा, जो तिन

रेवा रुवे माया मुठड़ी धंधड़ा रूवण हारेवा धंधा रुवे मैल न धोवे सुपनंतर संसारू ज्यों बाजी गर पर मैं भूले झूठ मुठी अहंकारू आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाई नाम रते गुरपूरे राखी नानक सहज सुपहाई वडहंस महला पहला बाबा आया है उठ चलना एहो जग झूठ पसार होवा सच्चा घर सचड़ै सेवी।

प्रेम समाय, जिन्हें अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता, कूड़ मुठी कूड़े आरे, सुने हो कंत मेहली हो, फिर सेवे हो शब्द विचारे, सब जागे आप।

पिर नाले, गुर प्रसादी साचा पिर मिले, अंतर सदा संभाले, फिर अंतर संभाले सदा है नाले, मन मुख जाता दूरे, इहो तन रुलै रलाया काम ना आया, जिन खसम ना जाता हदूरे, नानक सा तन मिले मलाई, फिर अंतर सदा संभाले, फिकरो वह फिर है विछुनिया।

सब आखो सतगुरु वाहो वाहो जिन दान हर नाम मुख दिया। सलोक महला तीजा भै विच सब आकार है निरपो हर जीओ सोए सतगुर सेवे है हर मन वसै तिथे भौ कदे ना होए दुश्मन दुख तिसनो नेड़ ना आवै ओहे ना सकै कोई गुरमुख मन विचारिया जो तिस भावै सो होए नानक आपे ही पत रखसी कार्ज सवारे सोए महला तीजा एक सज्जन चले एक चल गए रहंदे भी फुन जाहे जिन्नी सतगुर ना सेवेओ ते आए गए पछताहे नानक सच रते से ना विछड़े सतगुर सेव समाहे पौड़ी तिस मिलिया सतगुर सज्जन है जिस अंतर हर गुणकारी तिस मिलिया सतगुर प्रीतम है जिन हम मैं विचों मारी सो सतगुर पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी नित जपे हो संत हो राम नाम भौजल बिख तारी गुरपुरै हर उपदेश

काम क्रोध विनाश सतगुर का भव छोड़िया मन हट काम ना आवै रास जमपुर बदे मारी है को ना सुने अरदास नानक पूर्व लिखिया कमावना गुरमुख नाम निवास पौड़ी सो सतगुर सेवे हो साध जन जिन हर हर नाम दिरडाया सो सतगुर पूजो हो दिन सरात जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया सो सतगुर देखो एक निमख निमख जिन हर का हर पंथ बताया किस सतगुर की सब पगी पवो जिन मोह अंधेर चुकाया सो सतगुर कहो सब धन धन जिन हर भगत भंडार लहाया श्लोक महला तीजा सतगुर मिले भुख गई।

मनाय इस पे कह थाम हो गिर हो भला जिथ हो को वरसाय शब्द रते तिना सूजी पई दूजे भरम भुलाय पया किरत कमावना कहना कछु ना जाए नानक ज्योति सुभावै।

ना होवे अचिंत वत्सै मन आय अंतर तीर्थ ज्ञान है सतगुर दिया बुझाय मैल गई मन निर्मल होवा अमृत सारे तीर्थ नहाय सज्जन मिले सज्जना सच्चै शब्द सुपहाय घर ही परचा पाया ज्योति ज्योत मिलाय पाखंड जम काल ना छोड़े ले जासी पत गुआय नानक नाम रते से उबरे सच्चे सिंह लिभ लाए पौड़ी तित जाए बहु सत संगति जिते हर का हर नाम बिलोई सहजे ही हर नाम लेहो हर तत ना खोई है नित जप्यो हो हर हर दिन सरात हर दरगाह ढोई है सो पाए पूरा सतगुरु जिस तुर मस्तक लिलाट लखोई है तिस गुर को सब नमस्कार करो जिन हर की हर गाल गलोई है। श्लोक महला तीजा सज्जन मिले सज्जना।

गुर कै शब्द अपार एह सज्जन मिले ना विछड़ है जे आप मेले करतार इक ना दर्शन की प्रतीत ना आईया शब्द ना करह विचार विछड़िया का क्या विछड़ जिन्ना दूजे भाए प्यार मनमुख।

सच सिरजन हारे जिस तू मिले है प्यारिया सो तुद मिले गुरमुख विचारे हौ बलिहारी सतगुर अपने जिन मेरा हर अलख लखारे। श्लोक महला तीजा रतना पारख जो होवे सो रतना करे विचार रतना सार ना जाने अज्ञानी अंध अंधार रतन गुरु का शब्द है बूझे बूझन हार मूर्ख आप गणाएंदे मर जम्मे है होए खुआर नानक रतना सोल है जिस गुरमुख लगे प्यार सदा सदा नाम उच्चरै हर नामो नित व्यवहार।

आए दूजे कर्म कमाए नानक मनमुख जीवदिया मोए हर विसरिया दुख पाए पौड़ी जिस अंतर हिरदा शुद्ध है तिस जन को सब नमस्कारी जिस अंदर नाम निदान है तिस जन को हौ बलिहारी जिस अंदर बुद्ध विवेक है हर नाम मरारी सो सतगुर सपना का मित है सब तिसह प्यारी सब आत्म राम पसारिया गुर बुद्ध बिचारी। सलोक महला तीजा बिन सतगुर सेवे जी के बंधना विच हो मैं कर्म कमाई

साध ना आयु जिचर गुरमुख शब्द ना लागे सतगुरु सेवे नाम मन वसे विचों भ्रम पौ भागे जेहा सतगुरु नो जाने तेहो होवे तां सच नाम लिव लागे नानक नाम मिले वडियाई।

गुर की गल मन्नी, जो गुरमुख नाल के आए दे तिन चढ़ी चवगण वन्नी। सलोक महला तीजा, मनमुख कायर रूप है, बिन नावै लक नाही, अन दिन धंधे व्यापिया, सुपने भी सुख नाही। नानक गुरमुख हो है ता उबर है, नाही ता बदे दुख सहाई। महला तीजा, गुरमुख सदा दर सोहने, गुर का शब्द कमाहे, अंतर शांत सदा सुख, दर सच्चै सोभा पाहे। नानक गुरमुख हर नाम पाया, तैजे सच समाए। पौड़ी गुरमुख प्रहलाद, जप हर गत पाई, गुरमुख जनक हर नाम लिवलाई। गुरमुख वशिष्ट हर उपदेश सुनाई, बिन गुर हर नाम ना किने पाया मेरे भाई। गुरमुख हर भगत हर आप लहाई। सलोक महला तीजा, सतगुर की प्रतीत ना आईया, शब्द ना लागो भाव, ओस नो सुख ना उपजै, भावे सौ गेड़ा आवो जाओ। नानक गुरमुख सहज मिले, सच्चे स्यों लिवलाओ। महला तीजा, ए मन ऐसा सतगुरु खोज लहो, जित सेवे जन्म मरण दुख जाए। सहसा मूल ना होवे, हों मैं शब्द जलाए। कूड़ै की पाल विच्चों निकले, सच वसै मन आए। अंतर शांत मन सुख होए, सच संयम कार कमाए। नानक पूरे

सार नानक जिन को नदर करे से गुरमुख लंगे पार महला तीजा इको सतगुर जागता होर जग सूता मोह प्यास सतगुर सेवन जा गन से जो रते सच नाम गुणतास।

धुर पूर्व लिखे आस पौड़ी, हर नाम हमारा भोजन शक्ति प्रकार, जित खाया हमको तृप्त भई, हर नाम हमारा पहनन जित फिर नंगे ना होवे, होर पहनन की हमारी सरद गई, हर नाम हमारा वणज।

सदा है भगत परे भंडारा सतगुर दाता जी का सद जीवै देवनहारा अन दिन कीर्तन सदा करह गुर कै शब्द अपारा शब्द गुरु का सद उच्चरह जुग जुग वर्तावन हारा इहो मनुआ सदा सुख वसतह सहजे करे वापारा अंतर गुर ज्ञान हर रतन है मुक्त करावन हारा नानक जिसनो नदर करे सो पाए सो होवै दर सचियारा पौड़ी तन तन सो गुर सिख कही है जो सतगुर चरणी जाए पया तन तन सो गुर सिख कही है जिन हर नामा मुख राम कहया तन तन सो गुर सिख कही है जिस हर नाम सुनिया मन आनंद भया धन धन सो गुर सिख कही है जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया तिस गुर सिख कौ हौ सदा नमस्कारी जो गुर कै पाण गुर सिख चलिया सलोक महला तीजा मन हठ किने ना पायो सब थके कर्म कमाए मन हठ भेख कर भरम दे

पौड़ी जिन उपाय जी तिन हर राखिया अमृत सच्चा नाव भोजन चाखिया तिपत रहे आघाए मिटी पपाखिया सब अंदर एक वरतै तिन विरले लाखिया जन नानक भय निहाल प्रभ की पाखिया।

0: नानक गुरमति सुख पाया, बख्शे बख्शन हार पौड़ी, तू आपे आप, आप सब करता, कोई दूजा हुए सो अवरो कही है, हरे आपे बोले आप बुलावे, हरे आपे जल थल रव रही है, हरे आपे मारे हरे आपे छोड़े, मन हर सरनी पड़ रही है,
1: हर दिन कोई मार जीवाल न सके,
0: मन हुए निचिंद निसल हुए रही है, उठदियां बहदियां सुतियां, सदा सदा हर नाम ते आई है।

अत भाई हुक्म भया बाहर घर छोड़िया हिन मह भई पराई नाम दान इशनान ना मन मुख तित तन धूड़ तुमाई मन मानिया नाम सिखाई पाए परहु गुर कै बलिहार जिन साची बूझ बुझाई रहाओ जग स्यो झूठ प्रीत मन भेदया जन स्यो वाद रचाई माया मगन एहन समग जो है नाम ना लेवे मरे बिख खाई गंधन वहन रत्ता हित कारी शब्द सुरत ना आई रंग ना राता रस नहीं भेदया मनमुख पत गुआई साध सभा में सहज ना चाखिया।

मैं मूर्ख किस दीजै, प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा, डुबदा पत्थर लीजै, सूठ महला पहला, हों पापी पतत परम पाखंडी।

पियो, गुरमुख एक दृष्ट कर देखो, घट घट जोत समोई जियो, चलतो ठाक रखो घर अपने, गुर मिले एह मत होई जियो, देख अदृष्ट रहो बिस्मादी, दुख बिसरै सुख होई जियो, पीवो हो अपियो परम सुख पाईए, निज करवासा होई जियो, जन्म मरण भव भंजन गाईए।

आप राखह जो तेरे मन पाणी तू गुण दाता शब्द पछाता गुण कह गुणी समाणी मन मेरे हर जियो सदा संभाल अंत काल तेरा बेली होवे सदा निभ तेरे नाल रहाव दुष्ट चौंकड़ी सदा कूड़ कमावे ना बूझ विचारी निंदा दुती ते किन फल पाया हरनाक्ष नख है बेदारी प्रहलाद जन सद हर गुण गावे हर जियो लय उबारी आपस कहो बहु भला कर जान है मन मुख मत ना।

अंत गए पछताए, सफल जन्म भगतां का कीता, गुर सेवा आप लाए, शब्दे राते सहजे माते, अन दिन हर गुण गाए, नानक दास कह बेनंती, हौं लागा तिन कै पाए, सोठ महला तीजा, सो सिख सखा बंद पह पाई, जे गुर के पाणी विच आवै, अपने पाणे जो चले पाई, विछड़ चोटा खावे, बिन सतगुर सुख कदे ना पावे पाई, फिर पछोतावे, हर के दास सुहेले पाई, जन्म जन्म के किल बिख दुख काटे, आपे मेल मलाई रहाओ, यो कटंब सब जी के बंधन पाई, परम पुला संसारा, बिन गुर बंधन टूट है नाही, गुरमुख मोख द्वारा, कर्म करह गुर शब्द ना पछाण है, मर जन्म है वारू वारा, हौ मेरा जग पलच रहया पाई,

सरनाई अपनी नदर करे पात राखै हर नामो दे वडियाई रहाओ पूरे गुरते आप पछाता शब्द सच्चा विचारा हिरदय जग जीवन सद वस्या तज काम क्रोध अहंकारा सदा हजूर रविया सब ठाई हिरदय नाम अपारा जुग जुग बाणी शब्द पछाणी नाउ मीठा मनह प्यारा सतगुर सेव जिन नाम पछाता सफल जन्म जाग आया हर रस चाख सदा मन तृप्तिया गुण गावे गुणी अगाया कमल प्रगास सदा रंग राता अनहद शब्द बजाया तन मन निर्मल निर्मल बाणी सच्चे सच समाया राम नाम की गत कोए ना बूझे गुरमत हृदय समाई गुरमुख होवै सो मग पजाने हर रस रसन रसाई जप तप संजम सब गुरते होवै हृदय नाम वसाई नानक नाम समल है से जन सोहन दर साचै पत पाई सोठ महला तीजा दुतुके सतगुर मिले उल्टी पई पाई जीवत मरे ता बूझ पाए सो गुरु सो सिख है पाई जिस ज्योति ज्योत मलाई मन रे हर हर सेती लिव लाए मन हर जप मीठा लागे पाई गुरमुख पाए हर थाए रहाओ बिन गुर प्रीत ना उपजे पाई मन मुख दूजे पाए तोह कुट है मन मुख कर्म करह पाई पल्ले किशु ना पाए गुर मिले नाम मन रविया पाई साची प्रीत प्यार सदा हर के गुण रवे पाई गुर कै हित अपार आया सो परवान है पाई ये गुर सेवा चित लाए नानक नाम हर पाईए पाई गुर शब्दी मेलाए सोठ महला तीजा घर पहला तिही गुणी त्रे भवन व्यापिया पाई गुरमुख बूझ बुझाए राम नाम लग छूटी है पाई।

तेरा मन वसै पाई सदा हर के गुण गाय रहाऊ नामे ते सब उपजे पाई नाए विसरे मर जाए अज्ञानी जगत अंध है पाई सूते गए मोहाए गुरमुख जागे ते उभरे पाई भवजल पार उतार जग मैं लाहा हर नाम है पाई हिरदय रखिया उरतार गुर सरनाई उभरे पाई राम नाम लिवलाए नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा पाई जित लग पार जन पाए सोठ महला तीजा घर पहला सतगुर सुख सागर जागे अंतर होर थै सुख नाई हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया मर जन मैं रोवै ताही प्राणी सतगुर सेव सुख पाए।

आवे है। हर रस साध न आया संध्या तर्पण करह गायत्री बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सो वड भागी जिसनो आप मलाई। हर रस पी जन सदा तृप्तासे विचों आप गवाई। एहो जग अंधा सब अंध कमावे बिन गुर मग ना पाई। नानक सतगुर मिले ता अखी वेख घर अंदर सच पाए। सोठ महला तीजा बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा। जुग चारे परमाई हम दीन तुम जुग जुग दाते शब्दे देह बुझाई। हर जियो कृपा करो तुम प्यारे।

मन निर्मल हुआ, गिल बिख काटन हारा, शब्द मरहो फिर जीव हो सद ही, ता फिर मरन ना होई, अमृत नाम सदा मन मीठा, शब्दे पावे कोई, दाते दात रखी हाथ अपने, जिस पावे तिस देई, नानक नाम रते सुख पाया, दरगाह जाप है सेई, सोठ महला तीजा, सतगुर सेवे ता सहज धुन उपजे, गत मत तद ही पाए, हर का नाम सच्चा मन वस्या,

राम नाम सुख होई, त्रै गुण सब तेरे, तू आपे करता, जो तू करह सो होई, नानक राम नाम निस्तारा, शब्दे हम मैं खोई, सोठ महला चौथा घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आपे आप वरतदा प्यारा, आपे आप अपाह, वणजारा जग आप है प्यारा, आपे साचा साहू, आपे वणज व्यापारी।

अमृत अगम अथाहा रहाउ। आपे सुन सब वेखदा प्यारा, मुख बोले आप मुहाउ।

कर दया अमृत मुख चोए रहाव। आपे जल थल सबत है प्यारा, प्रभ आपे करे सो होए। सबना रिजक समाह दा प्यारा, दूजा अवर ना कोई।

प्यारा आप लखावे सोय आपे गहर गंभीर है प्यारा तिस जेवड़ अवर ना कोई सब घट आपे भोग वै प्यारा विच नारी पुरख सब सोय नानक गुप्त वरतदा प्यारा गुरमुख प्रगट होय सोठ महला चौथा आपे ही सब आप है प्यारा आपे थाप उथापै आपे वेख विकसदा प्यारा कर चूज वेख प्रभ आपै आपे वण तिण सबत है प्यारा आपे गुरमुख जापै जप मन हर हर नाम रस त्रापै।

प्यारा तुन आप बजाए आपे आपे जोगी पुरख है प्यारा आपे ही तप तापे आपे सतगुरे आप।

जन नानक हर रस त्रापे सोठ महला चौथा आपे कंडा आप तराजी प्रभ आपे तोल तलाया आपे साह आपे बणजारा आपे बणज कराया आपे धरती साजियन प्यार पिछे टंक चढ़ाया मेरे मन हर हर ध्याए सुख पाया हर हर

कृपाल हुआ प्रभ मेरा, थे लागे गुर की बाणी, कीमत कौन करे प्रभ तेरी, तू सर्व जिया दयाला, सब किश कीता तेरा वरतै, क्या हम बाल गोपाला, राख ले हो नानक जन तुमरा, ज्यों पिता पूत कृपाला, सूरठ महला पंजवां घर पहला, चौतुके गुरु गोविंद सलाहिया पाई, मन तन हिरदय तार, साचा साहिब मन वसै भाई, एहा करनी सार, जित तन नाम ना उपजै भाई, से तन होए शार, साध संगत को वारिया पाई, जिन एकंकार आधार, सोई सच आराधना पाई, जिसके सब किश होए, गुरपूरै जानाया पाई, किस बिन अवर ना कोए, रहाव नाम मिहूने पच मोए पाई, गणत ना जाए गणी, बिन सच सोच ना पाई पाई, साचा अगम धनी, आवन जान ना चुकई पाई, झूठी दुनी मणी, गुरमुख कोट उधारदा पाई, दे नावे एक कणी, सिमरत सात सोधिया पाई, बिन सतगुर भरम ना जाए, अनक कर्म कर थाकिया पाई, फिर बंधन पाई, चारे कुंडा सोधिया पाई, बिन सतगुर नाही जाए, वडभागी गुर पाया पाई, हर हर नाम त्याय, सच सदा है निर्मला पाई, निर्मल साची सोई, नदर करे जिस अपनी पाई, तिस प्राप्त होए, कोट मदे जन पाई है पाई, बिरला कोई कोई, नानक रत्ता सच नाम पाई, सुन मन तन निर्मल होए, सूरठ महला पंजवां दो तुके, जौ लो पाओ अपाओ इहु मानै, तौ लो मिलन दुराई।

साध शर्म छुटकारा बिन गुर पूरे जन्म मरण ना रहे फिर आवत बारो बारा रहाओ ओहो जो परम पलावा कहियत तिन मह उर्जियो सगल संसारा पूर्ण भगत पुरख स्वामी का सर्व थोक ते न्यारा निंदो नाही काहू बात है एहो खसम का किया जाको कृपा करी प्रभ मेरे मिल साध संगत नाउ लिया पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर सबना करत उदारा कहो नानक गुर बिन नहीं तरिया एहो पूरन तत बिचारा सोठ महला पंजवा खोजत खोजत खोज बिचारेउ राम नाम तत सारा किल बिख काटे निमख अराध्या गुरमुख पार उतारा हर रस पीवहो पुरख ज्ञानी सुन सुन महा तृप्त मन पावे साधु अमृत बाणी रहाउ मुकत भुगत जुगत सच पाई सर्व सुखा का दाता अपने दास कहो भगत दान देव पूर्ण पुरख विधाता सरवणी सुनिए रसना गाइए हिरदय त्याई सोई करण कारण समर्थ स्वामी जाते बिरथा ना कोई वड्डे भाग रतन जन्म पाए।

योगे अंतर गुर नानक की वडियाई। चौठ महला पंजवा घर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई। सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी।

करै सो भला मनाइयै सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजै इयो दर्शन हर जियो पाइयै भयो अनग्रहो प्रसाद संतन कै हर नामा है मीठा जन नानक कहो गुर कृपा तारी सब अकुल निरंजन दीठा सोरठ महला पंजवां कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्ब जिया का दातारे प्रतपालै नित सार संभालै एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे हर आराधना जाना रे हर हर गुर गुर करता रे हर जियो नाम परयो रामदास रहाउ दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्ब कटा पर पूरी रे पेखत सुनत सदा है संगे मैं मूर्ख जानिया दूरी रे हर बेअंत हों मित कर वरनो क्या जाना होए कैसो रे करो बेनती सतगुरे अपनी मैं मूर्ख देहो उपदेसो रे मैं मूर्ख की केतक बात है कोट परादी तरियारे गुर नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास ना परियारी सोठ महला पंजवां जिन्ना बात को बहुत अंधिसरु ए मिटे सब गया सहज सैन अर सुखमन नारी ऊंद कमल बिगसया देखो अचरज भया जेह ठाकुर को सुनत अगाध बोध सो हृदय गुर दया रहाउ जोए दूत मोहे बहुत संतावत ते भयानक भया करह बेनती राख ठाकुर ते हम तेरी सरनया जह भंडार गोविंद का खुलिया जेह प्राप्त ते लया एक रतन मोह को गुर दीना मेरा मन तन शीतल थिया एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर नाम हुआ भगत भंडार गुर नानक कौ सौंपे फिर लेखा मूल ना लया सोठ महला पंजवां चरण कमल स्यों जाका मन लीना से जन तृप्त अघाई गुण अमोल जिस हृदय ना वस्या ते नर तृष्ण त्रिखाई हर अरादे अरोग अनदाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाउ जेह जन ओट गई प्रव तेरी से सुखिये प्रभ सरने जेह नर बिसरिया पुरख बधाता ते दुखिया मह गणने जेह गुरमान प्रभु लिवलाई ते महा आनंद रस करिया जेह प्रभु बिसार गुर ते बेमुखाई ते नरक घोर मह परिया जित को लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक सह पकरी संतन की हृदय भय मगन चरनारा सोठ महला पंजवां राजन मह राजा उरझायो मानन मह अभमानी लोभन मह लोभी लोभायो त्यों हर रंग रचे ज्ञानी हर जन को इही सुहावै पेख निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाउ अमलन स्यों अमली लपटायो भूमन भूम प्यारी हीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मह विद्यंसी रचिया नैन देख सुख पाव है जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गाव है जैसी भूख तैसी कापूर सगल कटां का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी सोठ महला पंजवां हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूरख

सगले दान देहे प्रभ पान हिन मह अवर हिन मह अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूडो गूडो गहर गंभीरो ऊंचो अगम अपारी साध संग जो तुम्हें मिलायो।

आए अब कहाँ करे तू, जो फाट्यो सगलो लिखा महा आनंद पई सुख पाया, संतन कै प्रसादे कहो नानक हर स्यों मन मानिया रंग रत्ते बिस्मादी।

तव आनंद मंगल सुख पाई है, काल ना भान अंतर बिद जाने, ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम एहो मनुआ, अकाल मूत गुरदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधवी।

तन सासा बिचरत आन मलाया पशु प्रेत मुग्ध भय स्रोते हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख वडाई ताकी कीमत कह न जाई रहाओ दुख सोग का टाहयो डेरा अंद मंगल बिसरामा मन बांचत फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा इहां सुख आगे मुख उज्जल मिट गए आवन जाने निरपौ भए हिरदय नाम वस्या अपने सतगुर कै मन पानी उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द भ्रम भागा कहो नानक ताके पूर करम्मा जाका गुरचरणी मन लागा चौथ महला पंजवा रतन छाड़ कौडी संग लागे जाते कछु ना पाईए पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा त्याईए सिमरहो हर हर नाम परानी बिन सह काची दे अज्ञानी रहाउ मृग तृष्णार सुपन मनोरथ ताकी कछ ना वडाई राम भजन बिन काम ना आवस संग ना काहू जाई हौ हौ करत बेहाय।

पूर्ण अविनाशी काम क्रोध बिख जारी महाबिखम अगन को सागर साधु संग उधारी पूरा गुर मेट्यो परम अंधेरा पज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ हर हर नाम निधान रस पिया मन तन रहे अगाई जत कत पूर रहो परमेश्वर कत आवे कत जाई जप तप संजम ज्ञान तत बेता जिस मन वसै गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया ता की पूर्ण काला काल कलेश मिटे दुख सगले काती जम की पासा कहो नानक प्रभ कृपा तारी मन तन भये बिगासा सोठ महला पंजवा करन करावन हार प्रभ दाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी सगले जी किए दयाला तो प्रभ अंतर जामी मेरा गुर हुआ आप सहाई सुख सहज आनंद मंगल रस अचरज पई बढ़ाई रहा गुर की शरण पए पै नास्ती साची दरगाह मानी गुण गावत आराध नाम हर आए अपने थाने जय जयकार करे सब उस्तत संगत साध प्यारी सद बलिहार जाओ प्रभे अपने जिन पूर्ण पैज सुवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभ अपना अंत सेती घर आया तूर्ठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल भय लाती दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर ध्याया

थीवै बिघन बनासन सब दुख नासन गुर चरणी मन लागा गुण गावत अचुत अविनाशी अन दिन हर रंग जागा मन इच्छे से फल पाई हर की कथा सुहेली आदि अंत मद नानक को सो प्रभ होआ बेली सूरठ महला पंजवा पंच पदा बिनसै मोह मेरा अर तेरा बिनसै अपनी तारी संतो हो इहा बताव हो कारी जित हों मैं गर्भ नवारी रहाओ सर्ब भूत पार ब्रह्म कर मानिया होवां सगल रे नारी देखियो प्रभ जीओ अपने संगे चूकै पीत परमहारी औखद नाम निर्मल जल अमृत पाईऐ गुरु द्वारी कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बिदारी सोरठ महला पंजवा कर दूजा दुपदे एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत मह बै संतर सगल दूध मह किया ऊच नीच मह जोत समाणी कट कट माध हो जिया संतो हो कट कट रहे समाह पूर्ण पूर रहो सर्ब मह जल थलर मैया आहो रहाओ गुण निदान नानक जस गावे सतगुर परम चकायो सर्ब निवासी सदा अलेपा सब मह रहे समायु सूरठ महला पंजवा जा कै सिमरन होए आनंदा बिनसै जन्म मरण पै दुखी चार पदार्थ नव निद पावह बहुर ना तृष्णा भुखी जाको नाम लैत तू सुखी सास सास त्यावो ठाकुर कौ मन तन की अरे मुखी रहाओ शांत पावह होवह मन शीतल अग्न ना अंतर तुखी गुरु नानक को प्रभु दिखाया जल थल त्रे पवन रुखी सोरठ महला पंजवा काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छडावो एह भीतर ते इनको डारो आपन निकट बलावो अपनी बिद आप जनावो

गुरपूरा भेटियो वडभागी जन नानक कतह ना धावहु सूरठ महला पंजवा जाकै सिमरन सब कछ पाई है बिरथी काल न जाई तिस प्रभ त्याग अवर कत राचुहु जो सब मह रहे आसमाई हर हर सिमरहो संत गोपाला साध संग मिल नाम त्यावहु पूर्ण होए काला रहाउ सार संभालै नित प्रत पालै प्रेम सहित गल आवै कहो नानक प्रभ तुमरे बिसरत जगत जीवन कैसे पावै सूरठ महला पंजवां अबनासी जीयन को दाता सिमरत सब मल खोई गुण निधान भगतन कहो बर्तन बिरला पावै कोई मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई जाकी सरन पया सुख पाई है बहुड़े दुख ना होई रहाओ वडभागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत खोई तिन की धूर नानक दास बांचै जिन हर नाम हृदय परोई सूरठ महला पंजवां जन्म जन्म के दुख निवारै सूका मन साधारै दर्शन भेटत होत निहाला हर का नाम बीचारै मेरा वैद गुरु गोविंदा हर हर नाम औखद मुख देवै काटै जम की फंदा रहाउ समरथ पुरख पूर्ण बेधाते आपे करनै हारा अपना दास हर आप उभारिया नानक नाम अधारा सूरठ महला पंजवां अंतर की गत तुम ही जानी तुझ ही पाहे नबेरो बख्श लै हो साहिब प्रभ अपने लाख खते कर फेरो।

जंत प्रभ सगल उधारी दर्शन देखण हारी गुरपूरे की अचरज वडियाई नानक सद बलिहारी चौठ महला पंजवा संचन करो नाम धन निर्मल थाती अगम अपार बिलस बनोद आनंद सुख माणु खाए जीव हो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद।

भया मन कुदम नाम रतन जस गाय मिट गई चिंता सिमर अनंता सागर तरिया पाई हृदय हर के चरण वसाई सुख पाया सहज धुन उपजी रोगां घाण मटाई रहा क्या गुण तेरे आख बखाणा कीमत कहण ना जाई नानक भगत भये अबनासी अपना प्रभ भया सहाई।

योग गए गुरबचनी मन इच्छे फल पाया मेरा गुरपूरा सुखदाता करन कारण समरथ स्वामी पूर्ण पुरख बधाता रहाउ आनंद बनोद मंगल गुण गावहु गुरु नानक पए दयाला जय जयकार पए जग भीतर हुआ पार ब्रह्म रखवाला।

ताप गवाया भाई ठांड पई संसार अपने जी जंते आपे राखे जमह कियो हकतार हर के चरण हृदय उर तार सदा सदा प्रभ सिमरी है भाई दुख किल बिख काटन हार रहाओ तिसकी सरणी उबरै भाई जिन रखिया सब कोय करन कारण समरथ सो भाई सच्चे सच्ची सोए नानक प्रभु त्याई भाई मन तन शीतल होए चौथ महला पंजवा संत हो हर हर नाम त्याई सुख सागर प्रभु विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरै ताप गवाया अपनी कृपा धारी पार ब्रह्म प्रभ भये दयाला दुख मिटिया सब परवारी सर्ब निदान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो नानक पात राखी परमेश्वर उदरिया सब संसारो सोठ महला पंजवा मेरा

पूरी सब राखी, हुए सर्व दयाल रहाउ। अन दिन नानक नाम ते आए, जी प्राण का दाता, अपने दास को कंठ लाए राखै, ज्यों बारिक पित माता। सोठ महला पंजवां, घर तीजा चौपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मिल पंचो नहीं सहसा चुकाया, सिकदारू नह पतियाया। उमराव हुआ गया तेरा, मिल राजन रामन बेरा। अब ढूंढन कतहु ना जाई, गोविंद पे।

सर्ब थान को राजा तह अनहद शब्द अगाजा इस पह क्या चतुराई मिल नानक आप गुआई चौठ महला पंजवा हिरदय नाम वसायो हो घर बैठे गुरु त्यायो हो गुरपुर सच कहया सो सुख साचा लहया अपना होयो गुर मेहरवाना आनंद सुख कल्याण मंगल सियो घर आए कर।

सोच हमारी कर स्नान ग्रह आए आनंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरी है उठत बैठत हर हर त्याई है आन दिन सो कृत करिए रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड़।

संत सब पय पवित्रा सतगुर की सच साखी विघ्न बनासन सब दुख नासन सतगुर नाम दिरड़ाया होए पाप पय सब पावन जन नानक सुख।

धारी ता गत पई हमारी हर की प्रेम भगत मन लीना नित बाजे अनहत बीना रहाओ हर चरण की ओत सतानी सब चूकी कान लुकानी जग जीवन दाता पाया

ब्रह्म ते आई एहो ब्रह्म विचार सो जाने जिस दयाल होए भगवान बाबा नानक प्रभ सरनाई सब चिंता गणत मिटाई सोरठ महला पंजवा पार ब्रह्म निभाई पूरी काई बात न रही आयूरी गुर चरण लाए निसतारी हर हर नाम समारी अपने दास का सदा रखवाला कर कृपा अपने कर राखे मात पिता ज्यों पाला रहाओ वडभागी सतगुर पाया जिन जम का पंथ मटाया।

नावै अपना नाम आपे दिया प्रभ करन हार रख लिया हर दर्शन प्राण आधारा एहो पूर्ण बिमल बिचारा कर कृपा अंतर जामी दास नानक सरन स्वामी।

प्रभ रव रहे आपर पूरी हेम कुशल पया इस नाना पार ब्रह्म बितहु कुरबाना गुर के चरण कवल रिद तारी बिघन न लागे तिलका कोई कार्य सगल सवारी रहाउ मिल साधु दुर्मत खोए पतत पनीत सब होए रामदास सरो

मिल त्याई है, मन पाछत फल पाई, गुर पूरा हृदय त्याई, गुर गोपाल आनंदा, जप जप जीवे परमानंदा, जन नानक नाम त्याया।

तेरी कुदरत को कुर्बान रहाओ, जैसा बालक पाए सुपाई, लख अपराध कमावे, कार्य उपदेश छिड़के बहु भांती।

सब बिद जाने ता किस पह आख सुनाई है कहने कथन ना पीजै गोविंद हर पावे पैजर खाई है अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है।

हर हर नाम अवखद मुख पाया गन नानक सुख बसंती चौरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ भये आनंदा दुख कलेश सब नाथे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कारज सगले सांथे जग जीवन नाम तुम्हारा गुर पूरे दियो उपदेसा जप पौ

आप प्रभ स्वामी पात मत की नी पूरी सदा सदा नानक बलिहारी वांछो संतां तूड़ी सोठ महला पंजवा गुरपुरा नमस्कारी प्रभ सबे काज सवारी हरे अपनी किरपा धारी प्रभ पूरन पैज सवारी अपने दास को पयो सहाई सगल मनो

मल लाथी पार ब्रह्म भयो साथी नानक नाम त्याया आद पुरख प्रभ पाया चोट महला पंजवा जित पार ब्रह्म चित आया सो कर दइए वसाया सुख सागर गुर पाया ता सहसा।

प्रभ की अकथ कहानी जन बोलह अमृत बाणी नानक दास बखाणी गुरपुरे ते जानी सोरठ महला पंजवां।

मिल साध संग हर प्याया, आठ पहर अराध्यो हर हर, मन चिंदिया फल पाया रहाउ, परा पूर्बला अंकुर जागया, राम नाम मन लागया, मन तन हर दर

सो प्रभ अंतर जामी रहाओ करतब सब सवारी प्रभ अपना बिरद सुमारी पतत पावन प्रभ नामा जन नानक सद कुर्बाना सोठ महला पंजवां।

दाता शुभ चितवन दास तुम्हारी राखह पैज दास अपने की कारज आप सवारी रहाओ मेरा प्रभ पर उपकारी पूर्ण कल दिन धारी

ठाक रहाय, विघ्न गए हर नाय। मेरा प्रभु हुआ सदा दयाला, अरदास सुनी भगत अपने की, सब जी

हर हर हर अरादु हर अराद सबो किश पाई है कार्ज सगले साधु रहाव प्रेम भगत प्रबलागी सो पाए जिस वड भागी जन नानक नाम ते आया।

सोई संत गुण गावे प्रेम भगत ताका मन लीना पार ब्रह्म मन पावे आठ पहर हर का जस रवना।

जो सिवरै तिसकी गत हुवै, उधर है सगले कोटा रहाउ। संत संग जस गाया, एहो पूरन हर तन पाया। कहो नानक आप मटाया, सब पार ब्रह्म नदरी आया। सोठ महला पंजवा, गुरपूरै पूरी कीनी। बख्शे अपनी कर दीनी, नित आनंद सुख पाया। थाम सगले सुखी वसाया, हर की भगत फल दाती। गुरपूरै कृपा कर दीनी, बिरलै किन्ही जाती रहाउ। गुरबाणी गावह पाई, ओह सफल सदा सुखदाई। नानक नाम ते आया, पूर्व लिखिया पाया।

सुख पाया। संत अस्थान बसे सुख सहजी, सगले दुख मिटाया। रहाउ गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्म मन पाणी। नानक दास वखाणी, निर्मल अकथ कहानी। चौथ महला पंजवा, भूखे खावत लाज ना आवे। त्यों हर जन हर गुण गावे, अपने काज को क्यों अलकाइए। जित सिमरन दरगाह मुख उज्जल, सदा सदा सुख पाइए। रहाउ ज्यों कामी काम लुभावे।

कै पाणे दास बाणी ब्रह्म बखाणे नानक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बणत बनाई सोठ महला पंजवा प्रभ अपना हृदय त्याई कर सही सलामत आई संतोख भया संसार।

सगली दास को सुमत दीती रहाओ प्रभ सगले थान वसाई सुख शांत फिर आई नानक प्रभ सरनाए जिन सगले रो

दर्शन पेट तो होते आनंदा, दुख गया हर गाइए, हर रस पीवो हो पाई, नाम जप हो नामो अराध हो, गुरपुरे की सरनाई रहाओ, तिसे प्राप्त जिस तुर लिखिया, सोई पूरन पाई।

जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसै अंदेसा नाही। सतगुर चरण लगे पहु मिटिया हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दलासा जिन घर आए सोभा सेती पूर्ण होई आसा। पूरा गुर पूरी मत जाकी।

सिमर माधो होहे पतत पनीत काल ब्याल ज्यो पर्यो डोले मुख पसारे मीत आज काल पुन तोहे ग्रस है समझ।

पूरन सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जोग हारियो।

जाते भगत राम की पावे, जम को त्रास हरे रहाउ। कौन कर्म विद्या कहो कैसी, धर्म कौन फुन करे, कौन नाम गुर जा कै सिमरै।

मान तिमर मोह मन रहो उरजाई रहाओ सगल जन्म परम ही परम खोयो नह अस्थिर मत पाई विख्या सकत रहो निसबासुर नह छूटी अधमाई साध संग

नानक निज मत साधन को पाख्यो तोहे पुकार सोठ महला नवा यह जग मीत ना देखियो कोई।

पूत संबंधी सगरे तन सिंह लागे जब ही निरतन देखो नर कौ संग साढ़ सब भागे कहो कहां या मन बौरे को इनस्यों ने हो लगायो दीनानाथ सकल पै पंजन जसता को बिसरायो स्वान पूछ ज्यों भयो ना सूदो बहुत जतन मैं कीनो नानक लाज।

तू ठह लागियो जन्मे अकारत थोयो कर पर पंच उदर निज पोखियो पश की न्याई सोयो राम भजन की गत नहीं जानी माया हाथ बिकाना उर्ज रहे हो बिखियन संग पौरा नाम रतन बिसराना रहे हो अचेत ना चेते हो गोविंद बिरथा औध सरानी कहो नानक हर बिरद पछानो।

आसा मनसा सगल त्यागै, जागते रहै निरासा। काम क्रोध जेह परसै नाहन, तेहे घट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जेह नर को कीनी, तेहे एहे जुगत पछानी। नानक ली

बहुत हित जासियो सदा रहत संग लागी। जब ही हंस तजी एह काया प्रेत प्रेत कर भागी। एह बिद को व्यवहार बनियो है जां सियो नेहो लगायो। अंत बार नानक बिन हर जी को काम ना आयो। सोठ माला पहला घर पहला अष्टपदिया चौतुकी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुगदा ना पढ़ो हर बिन होर ना।

बिंद सुख वास्ती नाम वसै सुख पाई जिहवा नेतर सोतर सच राती जल बूजी तुझ है बुझाई आस निरास रह बैरागी

पहाय। मनमुख जंत दुख सदा निवासी, गुरमुख देव दयाय। अपर अपार अगम अगोचर, कहना कीम ना पाई। सुन संवाद महा परमार्थ, तीन पवन पत नामन। मस्तक लेख जिया जग जोनी, सिर सिर लेख सहामन। कर्म सुकर्म कराए आपे, आपे भगत दृढ़ामन। मन मुख झूठ लह पैमान।

का क्या कथिए भाई, चालो सदार जाय। गुरदाता मेले ता मत होवे, निगुरे मत ना काई। ज्यों चलाए त्यों चाल है भाई, होर क्या को करे चतराई। एक भरम भला एक भगती राती, तेरा खेल अपारा। जित तुद लाए तेहा फल पाया, तू हुक्म चलावन हारा। सेवा करी जे कछ हो अपना, जियो पिंड तुम्हारा। सतगुर

प्यारे अमृत रसन हरे बूढ़े पारे पै बिना प्यारे तारे नदर करे पी तू है सलाहना प्यारे पी तेरी सलाह बिन बोहित पै डुबिया प्यारी।

मन वस्या नामे ही मुक्त पाई। रिद सिद्ध सब भगतां चरणी लागी गुर कै सहज सुपाई। मन मुखा नु प्रतीत ना आवी अंतर लोभ सुवाओ। गुरमुख हिरदय शब्द ना भेद्यो हर नाम न लागा पाओ। कूड़ कपट पाज लह जासी मन मुख फीका अलाओ। भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी

मन वसिया सब काज सवारन हारा उन्ना की रीस करे सो बिगुच्चे जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे किने ना पाया मन मुख भौंक मोए बिललाई आवह जावह ठौर ना पावह दुख मह दुख समाई गुरमुख होवै सो अमृत पीवै सहजे साच समाई बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़ै जे अनेक कर्म करे अधिकाई वेद पढ़े तै वाद बखाणे बिन हार पत गवाई सच्चा सतगुर साची जिस बाणी भज सूत है गुर सरनाई।

भाई मिल प्रीतम साच समाव। एक जन्म हर ना चेत्यो भाई क्या मुंह देसी जाय। किड़ी पवंदी मोहायन भाई विख्यानो लो भाई। नाम समाल है सुख वसह भाई सदा सुख।

पंजवां घर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिन्हें उपाया पाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई दे कर अपनी वथ किन कहिए क्यों देखिए पाई करता एक अकथ गुरु गोविंद सलाहिए पाई जिस ते जापै तथ मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दान दे जाने अपने दुख दर्द का हंता रहाओ जाके घर सब किछ है पाई नौ निद भरे भंडार तिसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा अगम अपार जी जंत प्रित पाल दा पाई नित नित कर दा सार सतगुर पूरा पेटिए पाई शब्द मलावन हार सच्चे चरण सरेविए पाई ब्रह्म पौ होवै नास मिल संत सभा मन मांजिए पाई हर कै नाम निवास मिटै अंधेरा अज्ञानता पाई कमल होवै परगास गुरबचनी सुख उपजै पाई सब फल सतगुर पास मेरा तेरा छोड़िए पाई होइए सब की तूर घट घट ब्रह्म पसारिया पाई पेखै सुनै हजूर जित दिन विसरै पार ब्रह्म पाई एत दिन मरिए चूर करन करावन समरथ हो पाई सर्व कला भरपूर प्रेम पदार्थ नाम है पाई माया मोह विनाश तिस पावै ता मेल लय पाई हिरदय नाम निवास गुरमुख कमल परगासी है पाई हृदय होवै परगास प्रगट भया प्रताप प्रभ पाई मौलिया तरत आकाश गुरपूरै संतोखिया पाई एनस लागा पाओ रसना राम रवै सदा पाई।

जिस पर तीत न आवे पाई सो जियड़ा जल जाओ। बहु गुण मेरे साहिब भाई हऊ तिसकै बल जाओ। वो निर्गुण आरे पाल दा भाई देन थावे थाओ। रिजक संभाहे सास सास भाई गूड़ा जाका नाओ। जिस गुर साचा पेटी है भाई पूरा तिस करमाओ। तिस बिन घड़ी ना जीवी है भाई सर्ब कला भरपूर। सास ग्रास ना विसरै भाई पेखों सदा हजूर। साधु संग मिलाया भाई सर्ब रहया भरपूर। जिन्ना प्रीत ना लगिया।

वरना करनहार प्यारी अंतर जामी एक रहाओ कोट जन्म भ्रम आया प्यारी अनक जोन दुख पाई साचा साहिब विसरिया प्यारी बहुती मिलह सजाई जिन पे तै पूरा सतगुरु प्यारी के लागे साचे नाई तिन्ना पिछे छुटिए प्यारी जो साची सर

प्यारी एक ना चली नाल जो बेमुख गोबिंद ते प्यारी तिन कुल लागे गाल हुंदी वस्त ना जातिया प्यारी कूड़ ना चली नाल सतगुर जिना मलाय उन प्यारी साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारी जिसनो नदर करे अनगिन कीर्तन गुण रवै प्यारी अमृत पूर परे दुख सागर तिन लंघिया प्यारी भवजल पार परे जिस पावै तिस मेल लह प्यारी से ही सदा खरे समरथ पुरख दयाल देव प्यारी भगता तिस का तान तिस सरनाई टह पे प्यारे जे अंतर जामी जान हलत पलत सवारिया प्यारी मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे ना विसरै प्यारे नानक सद कुर्बान सोरठ महला पंजवां घर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो निवल पुअंगम साधे पंच जना स्यो संग ना छुटकियो अधिक हम बुद्ध बाधे प्यारे इन बिद मिलन ना जाई मैं किए कर्म अनेका।

पर पाती रहे हो नगन फिरे हो बन माही तट तीरथ सब धरती भ्रम्यो दुबदा छुटकै नाही मन कामना तीरथ जाए बस्यो सिर करवत तराई मन की मैल ना उतरै एह बिद जे लख जतन कराई कनक कामनी है वर गैवर बहु विध दान दतारा अन बस्तर भूम बहु अर्पे नह मिलिय हर द्वारा पूजा अर्चा बंदन दंड होता खट कर्म।

ओरठ सदा सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैल ना कत मन जीवे सच्चा सोए ससुरे पेये पैवसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावे पिर संग सदा शिंगारी नाओ मन कदे

फुरमाइए हौ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाइए। श्लोक महला तीजा पूर्व लिखिया कमावना जे करता आप लिखियास मोहठ गौली पाइन विसरिया गुण तास मत जानो जग जीवदा दूजे पाए मुहयास जिन्नी गुरमुख नाम ना चेतो से बहन ना मिलनी पास दुख लागा बहुआत घना।

वे सही चुक गया वे सास नानक गुरमुखा नो सुख अगला जिन्ना अंतर नाम निवास महला तीजा से सहन से सजना जे गुरमुख मिल है सुपाई सतगुर का पाना अन दिन कर है से सच रहे समाई दूजे पाए लगे सजन ना आखिए है जे अभमान कर है वेकार मन मुख आप स्वार्थी कार्ज ना सकह सवार नानक पूर्व लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार पौड़ी तुदे आपे जगते अपाए कै आप खेल रचाया त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह वधाया विच हों मैं लेखा मंगी है फिर आवे जाया जिन्ना हर आप कृपा करे से गुर समझाया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा कुमाया।

कमला फिरे गुरमुख नदरी आया तंदा करत्या निफल जन्म गवाया सुखदाता मन ना वसाया नानक नाम तिना को मिलया जिनको तुर लिख पाया महला तीजा घर ही मह अमृत भरपूर है मन मुखा साधना पाया ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने भ्रमदा परम पलाया अमृत ताज बिक संग्रह करत आप खवाया गुरमुख विरले सोजी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया तन मन शीतल होया

हरे आपे से टसवार सिर तंदे लाए दा इक ना भगती लाए इक आप खुआए दा इक ना मार्ग पाए इक उजड़ पाए दा जन नानक नाम त्याए गुरमुख गुण गाईंदा। सलोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हौ मैं विचों जाए बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रहे समाए इस जग में नाम अलभ है गुरमुख वसै मन आए नानक जो गुर सेव है अपना हों तिन बलिहारे जाओ। महला तीजा मनमुख मन अजित है दूजे लगे जाए तिसनु सुख सुपने नहीं दुखे दुख व्याए कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके सिद्ध समाध लगाए एहो मन वस न आवे थके कर्म कमाए भेख धारी भेख कर थके अट अट तीरथ नहाए मन की सार ना जाननी हों मैं परम पलाए गुर प्रसादी भउ पया वडभाग वस्या मन आए पै पय मन वस हुआ हों मैं शब्द जलाए सच रत्ते से निर्मले ज्योति ज्योत मलाए सतगुर मिले नाउ पाया नानक सुख समाए पौड़ी।

पकड़ चलाया काल ता खरा द्रामना ओ वेला हाथ ना आवे फिर पछतावना। श्लोक महला तीजा। सतगुर ते जो मोह फिरे से बदे दुख सहाय।

नानक नगरी बख्शले शब्दे मेल मलाहे महला तीजा जो सतगुर ते मोह फिरे तिन्ना ठौर ना ठाव ज्यों छुट्टड़ घर घर फिरे दोह चारन बदनाव नानक गुरमुख बख्शी है जे सतगुर मेल मलाओ पौड़ी जो सेवह सत मरार से पवजल तर गया जो बोले हर हर नाऊ तिन जम छड़ गया ते दरगाह पैदे जाहे जिन्ना हर जप लया हर सेवह से पुरख जिन्ना हर तुद मया गुण गावा प्यारे नित गुरमुख भ्रम पहु गया। सलोक महला तीजा थाले विच तै वस्तु पयो हर भोजन अमृत सार जित खाद मन तृप्ति है पाइए मोख द्वार यो भोजन अलभ है संतो लभे गुर विचार ए मदावनी क्यों विचों कढ़ी है सदा रखिए उर धार ए मदावनी सतगुरु पाई गुरसिखा लदी पाल नानक जिस बुझाए सो बुझसी हर पाया गुरमुख काल। महला तीजा जो तुर मेले से मिल रहे सतगुर स्यों चित लाए आप विछोड़न से बिछड़े दूजे पाए खवाए नानक बिन कर्मा क्या पाई है पूर्व लिखिया कमाई पौड़ी बह सखियां जस गाव है गावन हारियां हर नाम सलाहे हो नित हर को बलिहारी।

नामे सब परम दे नित जग तोता सहसार मन मुख कर्म कमावनी हम मैं अंध गुबार गुरमुखे अमृत पीवना नानक शब्द विचार महला तीजा सहजे जागे सहजे सोवे गुरमुख आनंद ने उस्तत होवे मन मुख पर मैं सहसा होवे अंतर चिंता नींद ना सोवे ज्ञानी जाग है सवह सुपाए नानक नाम रत्या बल जाओ पौड़ी से हर नाम त्याव है जो हर रत्या हर एक त्याव है एक इको हर सत्या हर इको वरत एक इको उत्पत्या जो हर नाम त्याव है तिन दर सट कत्या गुरमति देव आप गुरमुख हर जपया सलोक महला तीजा अंतर ज्ञान ना आय जित किस सोजी पाए ऋण डिठा क्या सलाही है अंधा अंध कमाए नानक शब्द पछाणी है नाम वसे मन आए महला तीजा इक्का बाणी एक गुर इको शब्द विचार सच्चा सौदा हट सच

लायो अंत दुख पहुताय आय अंदरों बाहरों अंधिया सुध ना काई पाय पंडित तिनकी बरकती सब जगत खाए जो रत्ते हर नाय जिन गुर कै शब्द सलाहया हर स्यों रहे समाय पंडित दूजै पाए बरकत ना हो।

पावड़ी, हर सज्जन मेल प्यारी, मिल पंथ दसाई, जो हर दसे मेता, किस हों बल जाई, गुण सांझी तिन स्यों करी, हर नाम त्याई, हर सेवी प्यारा नित, सेव हर सुख पाई, बलिहारी सतगुर तिस, जिन सोजी पाई।

आई, नानक गुरमुख मिला बड़े आईया, जे आपे मेल मलाए पौड़ी, हर रसना हर जस गावे हरी सुहावनी, जो मन तन मुख हर बोले सा हर पावनी, जो गुरमुख चखे साध सा त्रिपतावनी, गुण गावे प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी, जिस होवे आप दयाल सा सत गुरु गुरु बुलावनी। श्लोक महला तीजा, हस्ती सिर ज्यों अंकस है अहरन ज्यों सिर दे, मन तन आगे राख कै ऊभी सेव करे, यों गुरमुख आप निवारी है सब राज सृष्ट काली, नानक गुरमुख बुझी है जा आपे नदर करी। महला तीजा, जिन गुरमुख नाम ते आया आए ते परवान, नानक कुल उदार है अपना दरगाह पावह मान। पौड़ी, गुरमुख सखियां सिख गुरु मेलाइया, एक सेवक गुरपास एक गुर कार लाइया, जिन्ना गुर प्यारा मन चेत तिन्ना पाओ गुरु देवाइया, गुर सिखा एको प्यार गुर मित्ता पुत्ता पाइया, गुर सतगुर बोल।

अचेतनी अज्ञानी अंधले अवरे कर्म कमाहे। जमदर बदे मारियह फिर विस्ता माहे पचाहे। महला तीजा नानक सतगुर सेव है अपना से जन सच्चे परवान। हर कह नाए समाए रहे चूकाया मन जान। पौड़ी धन संपै माया संची है अंते दुखदाई। घर मंदिर महल सवारी है किस साथ ना जाई। हर रंगी तुरे नित पाली है कितै काम ना आई। जन लाभ हो चेत हर नाम स्यों अंत होए सखाई। जन नानक नाम ते आया गुरमुख सुख पाई। सलोक महला तीजा बिन कर्म नाओ ना पाई है पूरे कर्म पाया जाए। नानक नदर करे जे अपनी ता गुरमत मेल मलाए। महला पहला एक दज्ज है एक दबी है एक ना कुत्ते खाए। एक पानी विच उसती है एक भी फिर हसन पाए। नानक एव ना जा पई किथे जाए समाहे। पौड़ी तिनका खादा पैंदा माया सब पवित है। जो नाम हर राती तिनके घर मंदिर महल सराई सब पवित है। जिनी गुरमुख सेवक सिख अभ्यागत जाए बरसाती। तिनके तुरे जीन खुरगीर सब पवित है। जिनी गुरमुख सिख साध संत चढ़ जाती। तिनके कर्म धर्म कार्य सब पवित है। जो बोल है हर हर राम नाम हर साती। जिनके पोते पुन है

पिच्छै सुख नहीं, मर जम्मह वारु वार, तृष्णा कदे ना बुझई, दुबदा हुए खुआर, मुह काले तिना निंदका।

आएंगे। से हर हर नाम रते मन माही, जिन्ना मन चेते एक अरादया, तिन्ना एक सबिन दूजा को नाही। से पुरख हर सेम दे, जिन तुर मस्तक लेख लखाही, हर के गुण नित गाम दे, हर गुण गाए गुणी समझाही। वड्याई वड्डी गुरमुखा, गुरपूरै हर नाम समाही। सलोक महला तीजा, सतगुर की सेवा गाखड़ी, सिर तीजै आप गवाए। शब्द मरह फिर ना मरह, ता सेवा पवै सब थाए। पारस परसे है पारस हुए, सच रह लिवलाए। जिस पूर्व होए लिखिया, किस सतगुर मिले प्रभ आए। नानक गणतै सेवक ना मिले, जिस बख्शे सो पवै थाए। महला तीजा, महल कुमहल ना जाननी, मूर्ख अपने सुहाए।

परमात है अचिंत करे जिस दात। नानक गुरमुख हर नाम मन वसै, एहा सिद्ध एहा करमात पौड़ी। हम ढाडी हर प्रभ खसम के, नित गावह हर गुण क्षमता। हर कीर्तन करह हर जस सुनह, तिस कवला कंता। हर दाता सब जगत पिखारिया, मंगत जन जनता। हर देव हो दान दयाल होए, विच पाथर क्रिम

काली कांडी एक उत्तम पदवी इस जोग माहे गुरमुख हर कीरत फल पाई है जिनको हर लिख पाहे नानक गुर प्रसादी अन दिन भगत हर उच्चर है हर भगती माहे समाहे पौड़ी हर हर मेल साध जन संगत मुख बोली हर हर भली बाण हर गुण गावा हर नित चवा गुरमती हर रंग सदा मान हर जप जप औखद खाद्या सब रोग गवाते दुखा कान जिन्ना सास ग्रास ना विसरै

री जन उथारे तपियो सुत्या गई विहाई सतगुर का शब्द सुनना जागियो अंतर ना उपजियो चाओ शरीर जलो गुण बाहरा जो गुर कार ना कमाई जगत जलंदा डेठ मैं हम मैं दूजे पाई नानक गुर सरनाई उपरे सच मन शब्द त्याई।

करहु पापिष्ट हत्यारी। ओहे घर घर फिरह कसुद मन ज्यों तरखट नारी। वडभागी संगत मिले गुरमुख सवारी। हर मेलो हो सतगुर दया कर।

हर सेती मन रव रहया सच्चे रहे आसमाय। नानक हों बलिहारी तिनको जो चलन सतगुर पाए। महला तीजा बिन शब्द सुध ना होवे जे अनेक करे सिंगार। फिर की सार ना जाने दूजे पाए प्यार। साक सुत साक लखणी नानक नारी विच कुनार पौड़ी। हर हर अपनी दया कर हर बोली बैणी। हर नाम त्याई हर उच्चरा हर लाहा लैणी। जो जप दे हर हर दिन सरात तिन्हों कुरबैणी। जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा अरादिया तिन जन देखा नैणी। हों वारिया अपने गुरु को जिन मेरा हर सज्जन मिलिया सैण। सलोक महला चौथा हर दासन स्यों प्रीत है। हर दासन को मित्र हर दासन कै वस है। ज्यों जंती कै वस जंत हर के दास हर त्याईंदे। कर प्रीतम स्यों नेव किरपा कर कै सुनो प्रभ। सब जग मह वरसै मेह जो हर दासन की।

कार कराई सो हर जन नाम त्याईंदा हर हर जन एक समान जन नानक हर का दास है हर पैज रखो भगवान महला चौथा नानक प्रीत लाई तिन साचै तिस बिन रहन ना जाई सतगुर मिले ता पूरा पाई है हर रस रसन रसाई पौड़ी रैन दिन सप्रभात तू है ही गावना जी जंत सरबत नाउ तेरा त्यावना।

चाहे वे आप दुखी सुख कबहू ना पावे जन्म मरहे मर जाहे नानक बख्श लए प्रभ साचा जे गुर चरनी चित लाहे पौड़ी संत भगत परवान जो प्रभ पाया सेब चखण जंत जिन्नी हर त्याया अमृत नाम निदान भोजन खाया संत जना की धूर मस्तक लाया नानक पए पुनीत हर तीर्थ नहाया।

ऐ नाम उपजे किसना भुख सब जाय। नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाए। महला चौथा सतगुर पुरख जे मारिया प्रम प्रमया कर छोड़ गया। उस पिछे वजे पकड़ी मुंह काला आ गै पया। उस अरल बरल मुंह निकले नित झगू सुतदा मोआ। क्या होए किसे ही दह कीते जां तुर किरत उस।